प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव की हम उपासना कर रहे हैं। सभी मंदिरों में आप भगवान शिव के लिए जल अर्पण कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। भगवान सदाशिव के विषय में कहा कि वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलै स्वरीय कवाशम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम ब्रह्म विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाताकृतिम शंकरम। वंदना करने से ही जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की हम निरंतर वंदना करते हैं। विश्वोत भवस्थिति लयादि सुहेतुमेकम गौरी पतिम विदित तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयम विगत मायमचिंत्य रूपम बोधस्वरूप ममलम हि शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का अंत और कहीं नहीं है, जो माया के आश्रय होकर के भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचिंत और विमल बोधमय रूप भगवान शिव हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यो धत्ते निजमाय एव भुवना कारम विकारोज्झितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधौ। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग जिनकी कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, ऐसे भगवान सदाशिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। करेहूं सो जतन विवेक विचारी, परंतु सती ने परीक्षा लेने के लिए श्री सीता जी का ही वेश धारण किया, जिसमें शिव जी ने अपनी स्वाभिमानी और माता की दृढ़ निष्ठा पर रखी थी। अतः सीय बेहू सती जो कहीं ते ही अपराध संकर पर नहीं, क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी कि जो अब करहूँ सती सन प्रीति मिटे ही भगति पृथु होई अनीति। बल्कि शिवजी सती को सदा के लिए त्याग देने का चिंतन कर रहे थे, इससे उनके हृदय में अत्यंत संताप हो उठा। परम पुनीति न जाई ते ही किए प्रेम बढ़ पाऊं, प्रगट न तहत महू कुछ हृदय अधिक संता हूं। परंतु भागवत भक्त को भगवान की शरण की प्रतीक सुख दुख की अवस्था में आधार रहती है, और उन्हीं योग क्षेमम वाहाभ्यहम रूप विशद फलाने वाला प्रभु से प्रदान की हुई बुद्धि के द्वारा सदैव शरणागतों की रक्षा हुआ करती है। क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तमः भी प्रभु की ही प्रतिज्ञा है। अतएव जब भगवान शंकर ने ऐसे समय में प्रतिपतित ली जैसे तब शंकर प्रभु पद फिरहू नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहे तन सित ही भेट मोहि नाही, तब भगवान भक्त वत्सल ने उनकी बुद्धि में प्रेरणा की सदा के लिए त्याग की जरूरत नहीं है, केवल इस जन्म में सती का त्याग करना ठीक है, जिसमें उन्होंने सती का वेश धारण किया थे। अतः एव ऐसा ही संकल्प भगवान शिव ने किया, जिससे दोनों काम हो जाए, न तो सदा के लिए सती का त्याग करना पड़ा और न उसे शरीर से प्रति ही रखी गई। समस्त भक्तजनों को वैष्णव नाम तथा शंभु नाम भक्ति शिरोमणि भगवान शिव के इस रहस्य के यह उपदेश मिलता है कि जब कोई धर्म संकट आ पड़े तो सचैव हृदय से हरि स्मरण करने से ही उनके निर्वाहन की राह निकल आएगी। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गल

नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज वेनेसडे 12 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार सती माता उनके मन में ग्लानि पैदा हो गई, दुखी हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब भगवान राम ने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए।

0: तब उन्होंने पीछे की ओर देखा, वहाँ देख करके तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिस ओर देखती, माता सती जिस ओर देखती, उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। यानी सती माता जहाँ भी देखे वहाँ पर उनको श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी का दर्शन होती है और इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम सच्चिदानंद है, सर्वव्यापक है, परब्रह्म परमेश्वर है, जो सब जगह एक समान विराजमान है। वह तो मात्र लीला के रूप में यह वन में भटक रही है। सती जी ने ये बात समझ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आज इसको यहीं पर विराम दें। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम श्रद्धयानि समिद्यदे श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धा भगश मूर्धनि वचसा विदयामसि। ओम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से पंडित रामसुंदर शोभन का सादर प्रेम नमस्ते और सुप्रभातम। श्रावण मास के वेद चर्चा विषय में आज मैं श्रद्धा के महत्व पर कुछ विचार करने जा रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त के प्रथम मंत्र में श्रद्धा के गुण इस प्रकार गाया गया है। प्रिय श्रोतागण, विश्वास से ही सत्य को, वेद को, ईश्वर को जानना श्रद्धा है। श्रद्धा का होना ही ईश्वर की बनाई चीजों पर विश्वास करना है। भक्त की ईश्वर का विश्वास ही रक्षा करता है। गहरी भक्ति ही मुख्य रूप से विश्वास पर टिकी है। इसको करने वाला अधिकतर

उपासना में लग जाता है। श्रद्धा ही भक्ति भावना को जगाती है। जैसे वेद में कही गई श्रद्धा को माननीय है, तैतरीय उपनिषद भी श्रद्धा को अधिक मान्यता देती है। श्रद्धा के द्वारा ही भक्त अपने अंदर भक्ति की अग्नि को जगाता है। श्रद्धा ही से भक्त ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपने आप को छोड़ देता है, अर्थात सब प्रकार के सुख, कर्म, मान, धन, समझदारी और त्याग के मिलने पर भी श्रद्धा ही सबसे पहले है। श्रद्धा जानने का विषय है। तपस्वी अपनी वाणी में कहता है, श्रद्धा का धारण करने से अच्छा है। ऋग्वेद का वचन है, विद्वान यजमान प्राणायाम द्वारा श्रद्धा को अपनाता है और सभी भक्तगण अपने मन में उत्पन्न होने वाले इच्छा भाव को प्रेम और श्रद्धा से पान करते हैं। विश्वास करने वाला विशेष सुख पाता है। कश्यप पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यतीति। तैतरीय आरण्यक के ऋषि कहते हैं, जब भक्त श्रद्धा, सत्य नियम, त्याग और भक्ति का पालन करता है, तब उसे परम शांति मिलती है। उसका मन बलवान हो जाता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। जब भक्त अपनी भक्ति में लीन हो जाता है, तब परमात्मा उसके माता, पिता और गुरु बनकर उस पर कोई आँच आने नहीं देता है। श्रद्धा इते मघवन पारिये देवी देवी वाजी वाजी शाशति। सत्य को धारण करने से मन की ज्योति बढ़ती है। सामवेद के ऋषि का वचन है कि ज्ञान की ज्योति ही साधक को बलवान बनाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे अधिक बलवान है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मोगोल का सादर सप्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम अन्ति संतम न चाहत्यन्ति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद मंडल 10 सूक्त 8 मंत्र 32। अर्थात ईश्वर मनुष्य से इस प्रकार संबद्ध है कि वह मनुष्य से अलग नहीं हो सकता। मनुष्य के साथ परमात्मा का बंधन अटूट है। समीप्य के कारण वह मनुष्य को दृश्यमान नहीं हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच अटूट समीपता है। अतः मनुष्य को भान रहना चाहिए कि वह अकेला नहीं है, उसको परमात्मा का संरक्षण सदैव और सर्वत्र प्राप्त है। संकट के समय मनुष्य को सर्वशक्तिमान परमात्मा की वाणी चतुर वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। पवित्र वेदों के दिव्य ज्ञान का प्रकाश अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों को सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। पवित्र वेदों के रूप में ईश्वरीय दिव्य काव्य मनुष्य जाति की मौलिक अनंत और अमर धरोहर है। सत्य और असत्य का परीक्षण करने के लिए वेद ही एकमात्र विश्वसनीय प्राधिकरण और अचूक कसौटी है। ईश्वर संपूर्ण विश्व का शरण स्थान है। वह सभी मनुष्यों पशु पक्षियों का आश्रय है। ईश्वर संपूर्ण संसार का घोंसला समान शरण स्थान है। समस्त विश्व प्रलय के समय उसी में सूक्ष्म रूप में विलीन हो जाता है। पुनः सृजन के समय संपूर्ण विश्व विभिन्न स्थूल रूप में उसी ईश्वर से उद्भूत होता है और सभी प्राणियों के हृदयों में विद्यमान रहता है। उसकी उपस्थिति का वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इंद्रिय सुख को त्याग दिया है। केवल मेधावी विद्वान ही उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि वेद आगामी कई शताब्दियों तक विद्वत जनों को आकर्षित करते रहेंगे तथा हम सर्वदा स्वीकार करते हैं कि मानव मात्र के ग्रंथालय में इसका स्थान सर्वाधिक पुरातन है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम कदाचन स्थिरसी नेन्द्र सश्च सिदाशुषे उपोपेन्दु मघवन्न भूय ईनुते दानं देवस्य पृच्छते।
2: परमेश्वर कभी भी किसी के कर्मों को निष्फल नहीं करता।

के फलों को अवश्य प्रदान करता है। परमात्मा किसी निरपराध जीव को दंड नहीं देता, किंतु इस जन्म और पुनर्जन्म में प्रत्येक प्राणी उसकी न्याय व्यवस्था से कर्मानुसार फल का भागी बनता है। जीव जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। परमेश्वर ही कर्म फल का दाता है, वही सच्चा न्यायकारी है। परमेश्वर जैसा न्यायाधीश संसार में कोई नहीं है।

0: हे परमात्मन, हम आपकी कृपा के अभिलाषी हैं। आपकी अमृत वाणी वेद के द्वारा सबका कल्याण हो, यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा देवों की तृप्ति हो एवं सब जीवों का कल्याण हो। सत्य और प्रिय वाणी को स्वीकार करें। परमेश्वर हमारे यज्ञों और सत्कर्मों को सफलता की ओर बढ़ाएं। हम वीरता को प्राप्त कर श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहें। वाणी से वेद मंत्रों का उच्चारण, मन से परमात्मा का चिंतन और ऋत्विजों के सहयोग से यज्ञों का अनुष्ठान करते रहें। ऐसा करने से पुण्य की वृद्धि और संसार का कल्याण होता है।
1: ओम पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशु क्रिन्दन्तौ परियातु अर्णवनम् विश्वन्यो भुवना विशिष्टरितुरन्यो विदध्यञ्जयासे नवः।
0: धरती और चंद्रमा अंतरिक्ष में अपने अपने कक्ष में गतिशील रहते हैं, जैसे कि दो शिशु अपने आप में क्रीड़ा कर रहे हो। सभी ग्रह आगे पीछे ईश्वर की माया से सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड की केंद्र शक्ति सूर्य अपने प्रकाश को फैलाकर सबको ऊर्जा प्रदान करता है तथा सब भुवनों को देखता है। हर ऋतुओं में उसका प्रभाव अलग अलग होता है। चंद्रमा सोम तत्व फैलाता हुआ संसार को अमृत प्रदान कर पुष्ट करता है तथा प्रतिदिन नए रूप से प्रकट होता है तथा महासमुद्र को अपनी आकर्षण शक्ति से प्रभावित करता है। सूर्य का यथोचित ताप और चंद्रमा की अमृतमयी किरणें धरती में बसने वाले सभी प्राणियों के लिए औषधि के समान होती हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 12 अगस्त घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का।
2: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजी गई कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें एसबीएम, सैलरी और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल हैं। कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी। ये जांच मार्च 2024 में वालिदी फैत में एक निवासी के घर पर की गई। तलाशी से संबंधित दोनों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने के आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग

0: ने कलपोटरी में अपनी पहली बैठक लगाई जिसमें कार्य नीति पर चर्चा की गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व पर खुलासा दिया और विदेश में कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए उन लोगों को बचाने में जुटे हैं जो सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारतों और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 180 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल घिरे रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर, और जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ घरे के लिए पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू के कई हिस्से में बादल घने हो जाएंगे और जहां तहां कुछ बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में आज सुबह न जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन दिन के दौरान मौसम की स्थिति में सुधार आएगा। अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि आज रात 7:34 से सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि रात 11:59 पर खत्म होगा, लेकिन ये मॉरिशस में दिखाई नहीं देगा। आज के लिए सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: बुधवार 12 अगस्त एक नई शुरुआत के साथ हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला इस प्रोग्राम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़ चुके हैं और आप सभी जहां कहीं से भी हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नया दिन एक नए जीवन के समान होता है और जीवन में दृष्टिकोण जो है सदा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो जीवन में हमें सफलता की ओर ले जाते हैं और जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं वो सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भोर की बेला इस प्रोग्राम में आप जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और फिर श्रवण मास के उपलक्ष्य में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में सवेरे के 6:20 पर और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो आज बुधवार है तो आइए आज के इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम सनातन धारा से, जिसे हम सुनेंगे सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी, तो आइए उनको सुनते हैं।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय नाग पंचमी। नाग पंचमी जो 17 तारीख को आ रहा है, साल में एक ऐसा दिन आता है जहां पर हम सब लोग दोष का पूजन करते हैं, मंगल दोष, पितृ दोष, रोग नाश के लिए नाग पंचमी सबसे उत्तम दिन आता है, जहां पर नागों का पूजन होता है, जहां दोषों का पूजन होता है, जहां राहु काल, राहु केतु का प्रभाव जब भारी चलता है, जब मंगल दोष होता है, ये इन सभी दोषों का निवारण करने के लिए एक साल में एक दिन आता है जिसे हम सब लोग नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी के लिए विशेष विद्वानों को लेकर के, ब्राह्मण के लेकर के ही किया जाता है, जो इसके बारे में, इसके पूजा के खंडन एवं किस प्रकार से किया जाता है, करना चाहिए, ये आपको आपके गुरुजी सही माध्यम में बताएगा। नाग पंचमी हिंदुओं का एक विचित्र त्यौहार है। यह श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है, श्रावण मास के पंचमी जिथे कहा जाता है नाग पंचमी, अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग का अर्थ भी है, जिसे हम सब लोग सांप कहते हैं। नाग पंचमी को सर्पों की पूजा होती है, इसलिए विशेष पूजा किया जाता है वो पंचमी में। इस विषधर जीव को भी देवतुल्य समझा जाता है और इसे नाग देव कहा जाता है। शिव जी सर्प की माला पहनते हैं, विष्णु जी भगवान शेष पर शयन करते हैं, इसीलिए शेष भी एक नाग ही है। इसलिए नाग पंचमी दोष का पूजन करने वाला दिन होता है, सब प्रकार का दोष निवारण करने वाला दिन होता है। इसलिए शास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर से चरित्र बताया गया है। अगर आप सब लोग श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण करेंगे तो वहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाते हैं, क्योंकि शमिक ऋषि और शिंगी ऋषि का चरित्र आता है, जहाँ पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके आखेट खेलने के लिए गया और वहाँ पर भूख प्यास से बेचैन होकर के जल मांगने के लिए महर्षि के पास आए। जब महर्षि के पास आए तो महर्षि ध्यान लग्न थे और ध्यान लग्न में रहने के कारण राजा परीक्षित कहता है कि हे महर्षि, मुझे प्यास लगा है, मुझको पानी दे दो, पानी दे दो। लेकिन महर्षि ध्यान में थे, उसने श्रवण नहीं किया। तब राजा परीक्षित क्रोध में आकर के सोचता है कि मैं राजा हूँ और मैं पानी मांग रहा हूँ, मुझको पानी नहीं मिल रहा है। क्रोध में आकर के क्या देखता है कि उसके पास में एक मरा हुआ सर्प था। वो मरा हुआ सर्प उठा करके महर्षि के गले में डाल देते हैं। महर्षि के पुत्र को जब पता चलता है कि राजा ने मरा हुआ सर्प महर्षि उसके पिता के गले में डाल दिया है, तब महर्षि के पुत्र ने जल लेकर के शाप दिया कि हे राजन, आप इतने अहंकार, इतने क्रोधित हो गए, मान सम्मान नहीं करते, इसलिए जाइए आज से 7 दिन के बाद।

बाद तक्षक नाम सर्प आपको डसेगा। जब तक्षक नाम सर्प आपको डसेगा तो आपका मृत्यु निश्चित है। यही से श्रीमद् भागवत महापुराण का चरित्र प्रारंभ होता है। जब राजा परीक्षित को पता चलता है कि उसके मृत्यु निश्चित है, अब 7 दिन बाद तक्षक नाम सर्प उसको डसेगा, तब वहां पर सभी जितने जो मंत्री है सभी को बुला करके, अपने गुरु को बुला करके कहते, इसके उपाय बताइए क्या करना चाहिए। तब राजा परीक्षित अपने राज सिंहासन को छोड़ करके गंगा के तट पर चला जाता है और ऋषियों में सबसे उत्तम ऋषि वेदव्यास सुखदेव जी महाराज को बुलाया जाता है और वहाँ पर सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का चरित्र श्रवण करवाता है ताकि राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो। और वहाँ पर देवताओं ने कश्यप मुनि को भी बुला रखा था जिसे वो वैद था, अगर सांप दसेगा तुरंत वैद उसका उपचार कर लेगा। यह बहुत सुंदर चरित्र है और इस चरित्र को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म भी कहा जाता है, जिसे ये सभी लोग पहला दिन या दूसरा दिन में यह चरित्र आता है जो हम सभी लोग दोष मुक्त होते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन दोष का मुक्त होने का विधान बताया गया है, इसलिए उसका पूजा विधि भी अनेक रूप से कहा गया, ऐसे वेद में भी बहुत सुंदर से कहा गया है। नमो अस्तुते सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु मनेभ्यो रक्षिते ये देवे तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। कई पुराण में भी नाग का वर्णन है। अग्नि पुराण में नाग के 80 कुलों का उल्लेख है, उनमें 9 नाग प्रमुख है, इनके नाम के स्मरण का भी निर्देश है कि अगर आप कभी भी नाग देवता से किसी प्रकार से दोष से विमुक्त है तो इन मंत्रों का पूजन करने से या ध्यान करने से, इन मंत्र का उच्चारण करने से आपका दोष निर्वाह होगा। अनंत वासुकी शेष पद्मनाभम च कम्बलाम शंकपालम धृतराष्ट तक्षक कालयम तथा एतानि नव नामानि नागनाम्नां च महात्मनां सायं काल पठे नित्यं प्रातःकाले विशेते। इस प्रकार से नाग का एक चरित्र नहीं है, नागों का चरित्र में बहुत सुंदर सुंदर बात बताए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्या नाग का वर्णन है। भगवान शिव जी अपने गले में भी नाग धारण करते हैं क्योंकि उसके गले में विष है और विष के कारण नाग वहां पर बैठा हुआ है ताकि उसको कष्ट न हो। यह चरित्र भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन करने के लिए नागों से नमन किया गया था देवता और राक्षस में, ताकि किस प्रकार से समुद्र मंथन में समुद्र मंथन किया जाए, तब नागों को ला करके मथनी के रूप में नागों को लिया था और वह नाग के मथनी बना करके तब समुद्र मंथन किया गया था। तो इस प्रकार से नाग पूजा का विशेष महत्व बहुत बड़ा होता है और श्रावण मास के पंचमी शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि जो 17 तारीख को आ रहा है, जितने लोगों को दोष है, मंगल दोष राहु केतु का दोष है, जितने लोग बीमार है, सब प्रकार के कष्ट है, जितने लोग पीड़ित है, पितृ दोष आदि है, उन लोगों को विशेष ब्राह्मण को देख करके वो पूजन करें, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिसका पूजन करने से सब प्रकार के कष्ट दोष निवारण होता है। पूजा का विधान क्या है? अगर मंदिर में, मंदिर तट में, समुद्र के तट में अगर कोई नागदेव हो तो वहाँ पर पूजा करने का विधान बहुत सुंदर है। पंचोपचार, सबसे पहला पंचोपचार पूजन करें, नाग देव का आवाहन करने के बाद दूध से, दही से, मद से स्नान करने के बाद अगर पंचामृत मिल जाए तो पंचामृत से स्नान जरूर करें।

पंचामृत से स्नान करने के बाद दो पात्र में आपको लवा चढ़ाना है। नागदेव को लवा प्रिय है, इसलिए आपको दो पात्र में, क्योंकि नाग नागिन साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर दो पात्र में आपको लवा चढ़ाना है, दो पात्र में खीर चढ़ाना है, दो पात्र में दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद दिया दला करके आप सब लोगों को उसको हार सिंगार आदि करके अबीर कुमकुम सिंदूर आदि चढ़ा करके पूजन करते हैं और नाग से प्रार्थना करते हैं कि सब प्रकार के कष्ट निवारण करें, सब प्रकार के दोष निवारण करें। इसीलिए कहा गया नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अगर हम सब लोग देवी भागवत कथा श्रवण करते हैं तो वहाँ पर आस्तिक का चरित्र आता है, जहाँ पर राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय हुआ और सभी लोगों ने मिलकर के राजा जन्मजय से यही बताया कि आपके पिता को नागों ने डस रखा है। तब वहाँ पर सभी मंत्रियों ने कहा कि आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। तब राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया, इस प्रकार से यज्ञ किया कि जितने सर्प है वो आकर के उसमें जल करके भस्म हो जाए। तब आस्तिक मुनि आकर के राजा जन्मजय से प्रार्थना करता है, कहता है कि अगर आप इस यज्ञ को समाप्त नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद देवी चरित्र में ये भी आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, अब हम श्रवण मास में हैं और चलिए श्रवण मास के ही उपलक्ष्य में हम बढ़ेंगे इस विशेष कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य खेदू जी। तो चलिए बढ़ते हैं श्रवण मास के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम की ओर। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो आइए, अभी के लिए समय हुआ है इस विशेष कार्यक्रम का, मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में।

श्रावण मास के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का विशेष स्वागत है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 172वें सूक्त की

व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सूक्त का देवता उषा है एवं ऋषि संवर्त हैं। इस सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं। आइए भावार्थ पूर्वक मंत्रों को सुनते हैं।

हे उषाकाल, तू प्रभु के यशोगान के साथ हमें प्राप्त हो। उषाकाल में जागृत होकर हम प्रभु का उपासना करने वाले बने। उपासना से हमारा हृदय पवित्र होता है। इस पवित्र हृदय को प्राप्त करके हम वेद वाणियों का स्वाध्याय करते हुए हम उनसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं।

उषा काल में स्वाध्याय के द्वारा हम अपने बुद्धि इस प्रकार शुद्ध करें कि हम अपने जीवन में निवासक तत्वों को धारण करने वाले हों। उषा काल में जागृत होकर मनुष्य उत्तम दान वृत्तियों के द्वारा यजशील होता है।

मनुष्य अर्थात स्वाध्याय करते हुए हम उत्तम व श्रेष्ठ अन्नों का भरण करने वाले पुरुष के समान उत्तम दानशील होते हुए हम निश्चय से उत्तम संतान को धारण करते हैं। हे उषः, हम यजशील बनते हैं। ओम उषा उपस्तुवस्तमः संवर्तयति वर्तनी सुजातता। उषा अंधकार को दूर करती हैं। इसी प्रकार यह आध्यात्म मार्ग पर चलने वाला पुरुष उषा काल में स्वाध्याय करते हुए अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है। यह उषा रात्रियों के उत्तम विकास के द्वारा हमारे जीवन मार्ग को अच्छी तरह से परिवर्तित करने वाली होती है। हमारा जीवन का मार्ग अशुभ को समाप्त करके शुभ का ग्रहण करने वाला होता है। इस सूक्त के अंतर्गत उषा काल में जागने के लाभों का वर्णन आया है। रात्रि की समाप्ति एवं दिन की शुरुआत अथवा सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा गया है। उषा काल होते ही समस्त प्रकृति, पक्षी, पशु आदि जागृत हो जाते हैं। वेद आदि शास्त्रों में मनुष्य मात्र को भी इस पवित्र बेला में जागने का उपदेश दिया गया है। यह उषा काल एक अत्यंत पवित्र समय होता है। यह समय सोने के लिए नहीं होता है, अपितु जागृत हो करके प्रभु की उपासना करने का समय होता है, संध्या वंदना करने का समय होता है। संध्या को ब्रह्मयज्ञ भी कहा गया है। ऋषि दयानंद जी ब्रह्मयज्ञ के दो भेद मानते हैं, एक संध्या और दूसरा स्वाध्याय। उषा काल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ साथ स्वाध्याय करना भी आवश्यक होता है। स्वाध्याय का मुख्य दो अर्थ होता है। पहला अर्थ है वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरा स्व अर्थात अपने आप का अध्ययन करना। अतः सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके हम यह हमेशा विचार करें कि क्या हम वेद अनुकूल सब कर्म कर रहे हैं वा नहीं, अथवा क्या हम में कोई दोष है या नहीं। विचार पूर्वक हमें अपने गलत व नकारात्मक भावों को छोड़ देना चाहिए। उषाकालीन स्वाध्याय एवं उपासना हमें ज्ञानी एवं दोष रहित बनाता है। अतः ये दोनों क्रियाएं मनुष्य बुद्धि को पवित्र करने वाली होती हैं। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ही वसु अर्थात श्रेष्ठ धनों का स्वामी बनता है।

0: सुक्त के दूसरे मंत्र में वसव्या शब्द आया है। अभी हमने देखा कि वसु का अर्थ धन होता है। वसु का अर्थ उत्तम वसाने वाला अथवा वसाने योग्य कर्म भी होता है। अतः उषा काल हमारे विचारों को शुद्ध करने वाली होती है तथा हमारी बुद्धि में उत्तम विचारों को वसाने वाला होता है। उषा काल में जो जागता है वह हमेशा उत्तम बुद्धि वाला होता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल जग कर अपने व्यायाम आदि को करते हैं वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तथा उपासना आदि से आध्यात्मिक एवं बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। उषा काल हमें मखह अर्थात यजशील होने के लिए प्रेरित करता है। उषा काल हमें पवित्र बुद्धि प्रदान करके हमें यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है। यज्ञ का तात्पर्य देव पूजा, दान और संगठीकरण से है। विद्वानों का सत्कार करना, सुपात्रों को सुयोग्य वस्तुओं का दान करना तथा पारिवारिक व सामाजिक एकता ही यज्ञ का अर्थ होता है। अर्थात हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम कभी भी यज्ञ से अलग न हों, हमेशा परोपकारी बने। दान आदि श्रेष्ठ कर्म करके हमारा अन्न भी उत्तम बनता है। हम उदशेष का सेवन करते हुए हमारे संतानों को उत्तम बनाए। अतः यजामसी अर्थात ही उषा हम यजशील बनते हैं। बड़ों के पूजा अर्थात सत्कार, बराबर वालों से प्रेम पूर्वक संगतिकरण व सदा दान के वृत्ति वाले हम बने। सूक्त के अंतिम मंत्र में कहा गया कि जिस प्रकार उषा काल रात्रि के अंधेरे को समाप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार उषा काल में स्वाध्याय करते समय हम ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करते हैं। हम अविद्या एवं अज्ञानता से दूर रहते हैं। यास्क आचार्य जी निरुक्त में लिखते हैं उच्छतीति सत्याह, अर्थात उषा अंधेरे को निकालती हैं और यथार्थ का ग्रहण कराती हैं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: 6:30 बजे है, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग FCC द्वारा भेजी गई कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी, इनमें SBM, सैन लुई और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल। कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी, इन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोपों पर की जा रही पूछताछ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली आयोग ने पोर्टली में लगाई

0: ये अपनी पहली बैठक जिसमें मुख्य रूप से कार्य नीति पर चर्चा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज पर टिकी, जो फिलहाल 4.75% है। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर दिया खुलासा। और विदेश में कोलंबिया में भूकंप के बाद नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या अभी 181, लेकिन असल में इससे ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। कल 3 मामले सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर किए गए, जबकि 3 अन्य महत्वपूर्ण मामलों को आगे की जांच के लिए एफसीसी को वापस भेज दिया गया। इनमें एसबीएम, सेंट लुई और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल हैं। अधिकारी वाले विधिमा से बोले।
1: डीपीपी का मानना है कि 3 मामलों में जुटाए गए सबूत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें सजा मिलने की उचित संभावना है। पहला मामला लीलाराम डील से जुड़ा है, जिन पर मुख्य रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दूसरे मामले में राजाना दालिया, हरिदत्त रामनारायण और मनीष गुबीन भ्रष्टाचार के अपराधों से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। केनपुनुसामी पर भी आरोप के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। 3 मामलों को सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में दायर कर दिया गया है। दूसरी ओर डीपीपी 3 अन्य संवेदनशील मामलों एसबीएम, सेंट लुई और रिवॉर्ड मनी में और अधिक साक्ष्यों की मांग कर रहा है। स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जांच के लिए इन्हें एफसीसी को वापस भेज दिया गया है। डीपीपी कार्यालय ने आयोग से अनुरोध किया है कि अंतिम निर्णय के लिए फाइलों को दोबारा सौंपने से पहले इन जांचों में यथासंभव तेजी लाई जाए।
0: कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कोह मॉडल के निवासी 47 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ऋषि गनावरी और फ्लोरियाल के रहने वाले 47 वर्षीय पुलिस सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंदराम शामिल हैं। कल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने उनसे अंडर वार्निंग पूछताछ की। ये जांच मार्च 2024 में वाली डिपोट के एक निवासी के घर पर की गई तलाशी से संबंधित हैं। ये तलाशी स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स की एक टीम ने की थी। दोनों पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा थे। उनसे विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने के आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने कल मंगलवार को पोर्टवी में अपनी पहली बैठक लगाई। बैठक में कार्यनीति और उन विषयों पर चर्चा हुई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल का गठन और नियमित रूप से नगरपालिका चुनाव कराना शामिल हैं। आयोग इस संभावना पर भी विचार करेगा कि बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें तैयार करने वाली एक समिति बनाई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील कोर्ट और एक संवैधानिक डिवीजन गठित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। आयोग की अगली बैठक 18 अगस्त को लगाई जाएगी। विनोद बुलेल से शैली निर्बन ने बातचीत की। विवरण विधि मासिबोरन का।
2: On a discuté un peu de la stratégie à adopter pour les travaux de la commission. Il y a quand même quelque chose à discuter en priorité.
1: बैठक के दौरान विषयों पर चर्चा की गई।

जो पक्षपात के खिलाफ कदमों को मजबूत करता है। इसके अलावा एक आयोग की स्थापना शामिल है जिसमें पैरास्टेटल बॉडी के लिए एक अध्यक्ष का नामांकन होगा। नगर पालिका चुनावों को बिना स्थगित किए हुए चुनाव करने का प्रावधान हो, वैसे ही आम चुनावों के लिए होगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, एक विज्ञप्ति भेजी जाएगी। आम जनता को समझना

0: भी कहा कि वो मॉरिशस के लोगों की राय जानना चाहता है। जल्द ही एक कम्युनिके के माध्यम से जनता को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नज़रें नीतिगत ब्याज पर टिकी हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखुनी के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नज़र आ रही है। लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है। महंगाई अभी भी ऊंची बनी हुई है, जबकि आर्थिक विकास की संभावनाएं कमज़ोर हुई हैं। मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया। मनीषा दुखुनी का मानना है कि मौजूदा ब्याज दर पहले से ही आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल रही हैं। शैली नियाबन ने उनसे बात की, विवरण विधिमा से बोलन का।
1: Je pense que vu le taux d'inflation qui est toujours haut, il est fort probable que la décision va être plus une décision de maintenir.
2: मुझे लगता है कि जितना इन्फ्लेशन ऊंचा होगा तो उतना मौजूदा दर को बरकरार रखने का फैसला होगा। हमें ये भी मालूम है कि आर्थिक वृद्धि कम है, जो 2.8% से 3% है। शायद कई ऐसे एजेंटों का भी मानना है कि संभवतः भविष्य में लोअर इनकम होगा।
0: एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारों पर इसका प्रभाव। मनीषा दुखुनी के अनुसार लंबी अवधि के कर्ज, खासकर आवास से जुड़े ऋण, परिवारों को ब्याज दरों के स्तर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे में मासिक किस्तों में बढ़ोतरी का मतलब है कि अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध आय कम हो जाती है। परिवारों पर ये दबाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब महंगाई अभी भी ऊंची है और पिछले कुछ महीनों में कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ी है। एक बार फिर से उनको सुनते हैं, विवरण मनीषा बल्कि विधिमा से बोलन का।
1: En ce qui s'agit des ménages, on sait aussi à Maurice que le plus grand composant.
2: जहाँ तक मॉरिशस में घरों का सवाल है, हमें पता है कि लंबी अवधि तक लोन होता है घरों के निर्माण के लिए, जो हर महीने एक परिवार चुकाता है, और इसका असर उसके वेतन पर भी पड़ता है।
0: और जैसा कि कल से ही पता है, आत्मा शांतो ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। ये भूख हड़ताल 24 घंटे से कुछ अधिक समय तक चली। FTU ट्रेड यूनियन के वार्ताकार आत्मा शांतो के लिए स्थिति उस समय बदल गई जब उन्होंने श्रम मंत्री रेजाओ टीम और उन तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू करने से पहले शिकायतें की थीं। दोनों पक्षों ने उनकी मांगों के अनुरूप कदम उठाने का आश्वासन दिया। आत्मा शांतो के साथ अन्य ट्रेड यूनियन नेता भी मौजूद थे और उन सभी ने नियोक्ता की कड़ी आलोचना की।
2: FTU के अध्यक्ष ने भले ही अपनी हड़ताल का अध्याय बंद कर दिया हो, लेकिन आत्मा शांतो के लिए संघर्ष यहां समाप्त नहीं होता है।
3: La lutte n'est pas finie avec la grève de la faim. Bien sûr, nous pouvons continuer lutter pour qu'ils travaillent toujours sur l'intérêt primé.
2: क्योंकि मालिक यूनियनों के साथ बातचीत न करने के लिए टाल मटोल की रणनीतियों का सहारा लेते हैं।
4: Le problème c'est qu'il la loi beaucoup clause c'est correct mais qui patron s'est habillé dans seul avantage, il fait dealing tactics.
2: CTSP की जेन रागो ने नियोक्ताओं के अहंकार पर खेद जताया है।
4: Il y a beaucoup de patrons étrangers qui peuvent venir. Ils ont pas connu la loi Maurice et c'est nous une gamme en cas là, c'était là là. Bien avec une certaine arrogance pour dire nous, ben dit comme ça, ben nous tu peux suivre la loi, nous peux. Mais donne-nous un simple exemple. Camarade Santo fait une bizarre amène patron devant le IAT pour lui gagner access to worksite pour lui qu'a pas faire réunion. Et quand il gagne access to worksite, donne-lui un parking qui pas couvert en plein air, il dit "Mon donne 16." comment dire, il fait ce qu'il dit bizarre.

0: इसे पासा।
1: जीडब्ल्यूएफ के अश्विन गुडे के अनुसार ट्रेड यूनियने श्रमिकों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। ये ट्रेड यूनियन बिजनेस मोर्चस से अपने सदस्यों को निर्देश देने की मांग करती हैं ताकि कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके।
2: आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता, सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग सोच है। लेकिन आंकड़ों और भाषणों से परे मॉरिशस के युवा वास्तव में क्या चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उन्हें किन बातों की चिंता है और सबसे महत्वपूर्ण क्या वे अपना भविष्य यही मॉरिशस में बनते हुए देखते हैं। उनकी आवाज़, उनके सपनों और उनकी अपेक्षाओं को जानने के लिए जिन्हें येलाप्पा ने उनकी प्रतिक्रियाएं ली उनको सुनते हैं।
3: Moi, mon rêve, c'est plutôt devenir un mécatronics engineer. Envie de travailler avec bande machine, côté robotique.
4: Moi, personnellement, je pense à Koula pour venir professeur travel. Et aussi, je pense à Maurice. Nous, on a le prochain tour, toi qui parles de jeunes, mais je pense qu'il nous disait de continuer à persévérer et tout. Et que faire des efforts pour qu'il commence à nous rester avancés.
5: Alors, un jeune, moi, j'ai envie d'avoir un peu plus de monnaie pour que j'ai une certaine liberté dans mon avenir. Pour qu'après, je puisse construire un petit lac à essayer, un petit jardin, un petit ferme, un petit poumard à essayer. Et ce qui me va inspirer pour faire, c'est soit bateau croisé, soit steward de l'avenir.
6: Mon rêve, c'est de devenir un RETS. C'est pour ça que je pense à Koula, pour travailler dur, pour voyager le monde en entier.
7: Plutôt, mon vie, c'est mon parents fiers parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices sa haine. Pour l'instant, je vais trouver à Maurice, mais si je gagne l'opportunité à Déo, je vais prendre 100%. Et dans l'avenir, mais tout dépend de qui domaine nous allons aller. Côté accounting, Maurice est bien développé. Côté agriculture, là, je vais dire un peu improvement là. Mais côté digital phase, aussi social media et all, ça peut prendre grand l'ampleur à Maurice.
2: Ab ye khabar aaj 12 agast ko is saal ka ekmatra पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ये खगोलीय घटना शाम 7:34 पर शुरू होगी और रात 11:59 पर समाप्त होगी मॉरिशस के समय अनुसार। अतः ये सूर्य ग्रहण मॉरिशस और रोड्रिक्स में दिखाई नहीं देगा। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। विस्तार अशिता रघु के साथ।
8: आधिकारिक तौर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने पंचांग तथा प्रमाणित पंडितों और आचार्यों के उच्च परामर्श के बाद त्योहारों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन हेतु अपनी कटिबद्धता दोहराई है और जनता को आश्वस्त किया है कि रक्षाबंधन का उत्सव सुचारू रूप से मनाया जाएगा और किसी भी भ्रम का समाधान पूरी गंभीरता से किया गया है।
9: व्रत, त्योहार और सभी पूजा की तारीखें जो है काउंसिल ऑफ प्रीस्ट मॉरिशस जो है द्वारा तैयार की जाती है और फिर भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय से उनकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्हें तैयार की जाता है। रक्षाबंधन जो है फ्राइडे 28 अगस्त को हम सभी लोग मना रहे हैं।
8: महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस अवधि के ठीक बाद सूर्योदय होगा जो समय अमृत यानी शुभ माना जाता है, इसलिए रक्षाबंधन के उत्सव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
10: भद्रा एक अशुभ समय में आपको कह सकता हूँ, भद्रा हमारे शास्त्रों में और पंचांगों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भद्रा को हमें छोड़ना चाहिए। 27 को गुरुवार के दिन 27 को सुबह से ही भद्रा है और पूरा दिन भर भद्रा है। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटा पहले उसका सूतक शुरू होता है अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र के हिसाब से। तो इसलिए उस दिन पूर्णिमासी का जो व्रत है लोग व्रत करेंगे लेकिन पूर्णिमासी के चंद्रमा का पूजन नहीं करेंगे। चंद्रमा पर ग्रहण है मॉरिशस में सुबह 5:23-5:25 के आसपास थोड़ा सा दिखेगा, तो क्योंकि

0: सूर्योदय होने के बाद हमारा दिन जो शुरू होता है वो सूर्योदय होने से शुरू होता है, तब भी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि ग्रहण में और रक्षाबंधन किया जाता है।
1: इसी अवसर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन अगले 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे गंगा तालाब की डिवाइन म्यूजियम के निकट 5 मुखी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन भी कर रहा है।
2: विदेशी स्तर पर कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए उन लोगों को बचाने में जुटे हैं जो सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारतों और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 180 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश मौतें काली और पेरेरा शहरों में हुई। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप पश्चिमी कोलंबिया के सैकड़ों मील तक फैले विशाल क्षेत्र में महसूस किया गया। मंगलवार को भी भूकंप के बाद के नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 181 है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों से जुटाए गए आंकड़ों को मिलाकर ये संख्या इससे अधिक बताई जा रही है, संभवतः 240 से भी ज्यादा। राष्ट्रपति अबेलाडो डेला एस्पेरिया ने आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। मृतकों के अलावा लगभग 2,600 लोग घायल भी हुए हैं और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1,100 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 8,000 से अधिक घरों को नुकसान हुआ। सोमवार की रात से मंगलवार तक पेरेरा और काली जैसी शहरों में कई लोगों ने खुले में रात बिताई। कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए, जबकि अन्य लोग इमारतों और ढहने की आशंका के कारण बाहर रहे। पूरे देश में दर्जनों बड़ी इमारतें ढह गई हैं। मौसम की रिपोर्ट्स। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के समय अनुमान है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ घरे के लिए बादल घिराएंगे पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों पर, और थोड़ी बहुत पानी बरसने की संभावना है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। सुबह के वक्त दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। इस बीच दिन के दौरान मौसम में बल्कि समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि आज बुधवार 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण मॉरिशस में दिखाई नहीं देगा। मॉरिशस समयानुसार ये रात 7:34 पर शुरू होगा और रात 11:59 पर ख़त्म होगा। आज सूर्योदय हुआ 6:33 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर। खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग FCC द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी। इनमें SBM, सैलवी और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले भी शामिल। कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी। इन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद के दुरुपयोग करने के आरोपों पर की जा रही पूछताछ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने पोर्टी में लगाई गई पहली बैठक में मुख्य रूप से कार्यनीति पर चर्चा की।

0: मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज पर टिकी, जो फिलहाल 4.75% हैं। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने की इसकी पुष्टि। विदेश में कोलंबिया में भूकंप के बाद नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या अभी 181, लेकिन असल में इससे ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। 6:52 हो चुके हैं। ये बुलेटिन अब तक पहुंचाया जा रहा है कादेर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: डोमेन डे रोजाली डेपिने में 74 साल की 74-year-old श्रीमती चंद्रावली बंधु, श्रीमती चंद्रावली बंधु पैदाशिनाम पति जुमिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 इनके मकान डोमेन डे रोजाली डेपिने से उठाकर दाह संस्कार के लिए गहन रोजाली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पास 2 PM। केवल नगर बेलगीव में 53 साल की 53-year-old श्रीमती गीता डामरी, श्रीमती गीता डामरी पैदाइशी नाम दुखवा जो सीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। ये पहले कम्युनिटी सेंटर रोड केवल नगर बेलगीव रहती थी। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके बेटे भवेश डामरी के मकान केवल नगर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टू डेथ ऑफ पास 1 PM। बेहनौदे डे सेंट पियर स्ट्रीट वाली डिप्रेट में 86 साल की 86-year-old श्री छत्रपाल हुकुम, श्री छत्रपाल हुकुम जो मान मौशाफुई से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके मकान बेनौदे डे सेंट पियर स्ट्रीट वाली डिप्रेट से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बुगिले वाली डिप्रेट की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास 1 PM। नंबर 1 पोंट सेंट लुई पाई में 95 साल की 95-year-old श्रीमती परमावती तिलक, श्रीमती परमावती तिलक पैदाइशी नाम पाराहो की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनके मकान नंबर 1 पोंट सेंट लुई पाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए लेसालिन कासी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1 PM। ले उशे त्यागोज में 62 साल की 62-year-old श्री बसंत कुमार आलिया, श्री बसंत कुमार आलिया जो बाब से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:00 इनके मकान ले उशे त्यागोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। बुढ़न लेन अपरवेल में 75 साल के 75-year-old श्री राम सिंह चोईटू, श्री राम सिंह चोईटू की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनके मकान बुढ़न लेन अपरवेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए दाहोचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सत्यम शर्मा रघु लेन बल्कि बनारस क्लूनी में 69 साल के 69-year-old श्री देवानंद रघु, श्री देवानंद रघु जो राजन से जाने जाते थे और पहले आंख किलचुआ क्यूपिप में कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:00 इनके बेटे सत्यम शर्मा रघु के मकान बनान क्लूनी से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्लूनी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 10 AM। एवेन्यू राजकुमार लेन बेटो काठोबोन में 79 साल की 79-year-old श्रीमती चंद्रावती मेराई, श्रीमती चंद्रावती मेराई पैदाइशी नाम जियावुक जो लुलु से जानी जाती थी।

0: की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान राजकुमौली ने बेटो काटोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड मौदस्थलिया में 85 साल के 83 ईयर ओल्ड बल्कि 83 साल के 83 ईयर ओल्ड श्री महेंद्र सिंह भवानी पैक जो दामोदर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड मौदस्थलिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए मौदस्थलिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। टेम्पल रोड ट्वाबुचिक में 52 साल की 52 ईयर ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी करुणदास अचामा पैदाशी नाम मूलिया जो प्रिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी माँ श्रीमती शीला मूलिया के मकान टेम्पल रोड ट्वाबुचिक से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्रणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। पिलखा रोड सेबास्तोपुल में 61 साल के 61 ईयर ओल्ड श्री ऋषि कुमार गोपुल जो ऋषि से जाने जाते थे और फिलिंग टोटल सेबास्तोपुल के मालिक थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी गुरुवार 13 अगस्त को दिन के 10 बजे इनके भाई श्री हरिदत्त गोपुल के मकान पिलखा रोड सेबास्तोपुल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सेबास्तोपुल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। और नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन में 66 साल के 66 ईयर ओल्ड श्री विनोद कुमार बुलक जो विनोद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनके मकान नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9:30 AM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से विज्ञप्ति। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसके चलते सोमवार 10 अगस्त से खेतों में सब्जियों की सिंचाई, कार वॉश द्वारा पानी का प्रयोग, वाटर प्रेशर से घर आंगन गाड़ी की सफाई के लिए पानी का प्रयोग, पूल को नल के पानी से भरना वर्जित है। पुलिस इन सभी नियमों के पालन के लिए नजदीकी से नजर रख रहे हैं। CWA सभी से सहयोग की मांग कर रहे हैं और आपके समझ के लिए धन्यवाद देता है।
3: सुबह के ठीक 7 बजे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। यूरोप में चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के तीसरे क्वालिफाइंग राउंड के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे सबसे पहले सुनिए। UEFA चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में कल लेव्स्की ने खैरात को एवे जाकर 1-0 से परास्त किया। कुल मिलाकर लेव्स्की क्वालिफाइड हुआ 2-0 से। फिर बोडो ग्लिम्प्ट ने कल यूनियन SG को 3-2 से परास्त किया। पेनाल्टी शूटआउट के बाद ऑन एग्रीगेट एक्स्ट्रा टाइम के बाद 6-5 से बोडो ग्लिम्प्ट क्वालिफाइड हो गई। फिर साबा 4 AGF 0 साबा क्वालिफाइज। कोनो जालगिरिस 1 दिनामो जाग्रेब 2। जाग्रेब ने पहले राउंड में 6-0 से जीत हासिल की थी, सो वो क्वालिफाइड हैं। NEC 2 ओलंपियाकोस 1 रेड स्टार

A0, HBR Sheva 2, CLJ 2, Arat Armenia 0, Slovan 2, Nyalbi 0, Stumgraz की हार हुई, Stumgraz 0, Fenerbahce 1, सो Fenerbahce qualified हो गई है, जबकि Olympic de Lyon ने Sparta Prag को 3-0 से परास्त किया, ऐसे में 4-2 से कुल मिलाकर Olympic de Lyon आगे बढ़ पाई, कल के इस इन 3-0 में Maitland Niles का एक गोल रहा, Morton और Nouma के बाकी गोल, Lyon 3, Sparta Prag 0, Europa League के तीसरे qualifying round में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें आइबेरिया ने लाने को 2-1 से हराकर अपना क्वालिफिकेशन हासिल किया एक्स्ट्रा टाइम के बाद। फिर कॉन्फ्रेंस लीग में भी कल दो मैच खेले गए, अपोलों 2 ब्रान 4 और सीएसके 1948 1 पनाथिनाइकोस 2, पनाथिनाइकोस क्वालिफाइड हो गई एक्स्ट्रा टाइम के बाद। फ्रेंडलीज में कल यूवेंटुस ने पालेर्मो को 2-0 से परास्त किया, यिल्डीज और मिलिक का एक एक गोल यूवेंटुस के लिए। आज के मैचों में फ्रेंडलीज में ही आज रात 10 बजे आर्सेनल का मुकाबला कुमो से है, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगी लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध, मेसन माउथ नहीं खेल पाएगा, पिछले मैच में उसको चोट लगी थी, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड लीड्स यूनाइटेड इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, और आज रात 11 बजे रियल मैड्रिड एवे जाएगी डिपोर्टिवो के मैदान पे, ये फ्रेंडलीज आज रात खेले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला आज रात 11 बजे सुपर कप का सुपर फाइनल है पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच। पेरिस सेंट जर्मेन जो है वो यूरोपियन चैंपियंस लीग विजेता है, जबकि एस्टन विला ने यूरोपा लीग ट्रॉफी जीती थी। आज रात ये फाइनल सुपर कप का फाइनल रात 11 बजे बीजिंग में खेला जाएगा। मैच से पहले पेरिस सेंट जर्मेन ने प्री गेम सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की, इसलिए पारी के खिलाड़ियों को, पारी के पूरे स्क्वाड को एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा रूम दिया गया, किंतु एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि वे जीत गई। एस्टन विला ने पिछली बार 1983 में ये सुपर कप जीता था, जो टू लेगेड एक सुपर कप था, उसमें उसने बार्सिलोना को लुढ़काया था। क्या वो दूसरी बार ये सुपर कप जीत पाएगा, देखते रहिए और सुनते रहिए आज रात 11 बजे सुपर कप का फाइनल पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच। बात करें अब टेनिस की, स्पेन का 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी राफेल जोदार जोरदार तरीके से रातों रात सेंसेशन बनने जा रहा है। कल उसकी जीत हुई और यदि फिर उसकी जीत हुई तो वो आने वाले दिनों में टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 100 से निकलकर टॉप 10 में आकर 200 दिनों से कम समय में उसने ये पड़ाव पूरा किया, तो वो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। कल उसकी जीत हुई, अब जोदार का मुकाबला नाकाशिमा से होगा सेमीफाइनल में। कल के खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए, कल इगा स्वियातेक ने स्नाइडिया को 6-2 और 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में कदम रखा। ज्वितोलिना की भी जीत हुई 3-6, 6-0 और 6-3 से। नाकाशिमा ने दादेरी को हराया 6-2 और 6-3 से। जोदार की जीत हुई, उसने फ्रांस के गायल मोफिस को 7-6 और 6-3 से परास्त कर सेमीफाइनल में कदम रखा, और शेल्टन ने मेंसिक को 6-3 और 6-1 से परास्त किया। आज सुबह कोकोगाव का मुकाबला बेंसिच से है, ओसाका की हार हुई आज सुबह ही, एलेना रायबाकिना ने उसे 4-6, 7-6 और 6-4 से परास्त किया, और आज ही जोदार का मुकाबला नाकाशिमा से होगा। तो इतना सब कुछ टेनिस को लेकर। क्रिकेट में बता दें कि आजकल कई क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं, खासतौर पे आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच, फिर कुछ काउंटी मैचेस भी खेले जा रहे हैं। और बता दें कि शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच मेंस इंटरनेशनल टेस्ट मैच सीरीज का पहला मुकाबला होगा गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम में, श्रीलंका वर्सेस इंडिया। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:06 और 15 सेकंड हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 12 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:08 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीबी सैंपल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सैंपल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुद्रयाल, सैंपल धनी लेन नंबर 1, नंबर 2 और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 12 अगस्त को सुबह के 8:30 से सपहर के 4 के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही बेलतिया के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, बेलतिया के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक गांधी रोड, नेहरू रोड, एसएसआर रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 12 अगस्त को दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही वाकवा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर रॉयल रोड फिनिक्स यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर जो है रॉयल रूट फिनिक्स के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 13 अगस्त को दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही यहाँ रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कोस्टल रोड, जेरानियम रोड, टोपीज रोड, सियाशा, ग्रॉम्बे के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, ग्रॉम्बे के खासकर कोस्टल रोड, जेरानियम रोड, टोपीज रोड, सियाशा, ग्रॉम्बे, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 12 अगस्त को सुबह के 9 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सीबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 12 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:10, रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत किया जाता है। मैं हूँ सुमी और हमारी ओर से नमस्कार स्वीकार करें। चलिए सुबह का नजराना इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सवेरे के 9 तक आपके साथ साथ हम रहने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर बुधवार का दिन है और देखते ही देखते अगस्त महीने की 12 तक हम आ पहुँचे हैं। आजकल तो समय इतने जल्दी जल्दी बीतता है कि हम क्या कहें, है ना। तो चलिए, यहाँ पर समय को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर सकते हैं कि समय पर अपने हर एक कार्य को हम करें, समय का सम्मान करें और जो भी चीज़ हम जिंदगी से चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए परिश्रम करें और जो कुछ चाहते हैं वो आपको सरलता से फिर प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। और चलिए चिंतन की ओर बढ़ते हैं और इस चिंतन के साथ आज के सुबह का नजराना इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और चिंतन को हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।

0: है सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: ज्ञान तभी सार्थक बनता है जब वह केवल शब्दों तक सीमित न रहे। सीखी हुई अच्छी बातें जीवन में उतरें, तभी उनका वास्तविक मूल्य होता है।

चलिए, हर भोर हर सवेरा एक नया संदेश लेकर आते हैं और हमेशा संदेश जो होता है सकारात्मक होता है। संदेश जो होता है जीवन को प्रेरित करता है, जीवन में कुछ नया करने के लिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। तो आज के दिन के लिए आपने क्या सोच रखा है? क्या आप चाहते हैं अपने आज के इस दिन से, अपने इस जीवन से? क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं उसके लिए अगर हम लक्ष्य निर्धारित करें तो कुछ भी पाना असंभव नहीं होता है जीवन में। और अभी के लिए चलिए बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह सुबह का नजराना और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए। और 7:40 से हम शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस। आपके डेडिकेशंस के लिए फ़ोन कॉल्स मैसेजेस हमें सवेरे से मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 जो है आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार। 8:15 से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज खेल खेले हम। 8:30 आप परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। और फिर 8:50 पर हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी किरण जी। और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 9 आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम को। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम ज्ञान चक्र सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में। साथ ही में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11 होगा समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 12 विश्वा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम। 1 तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी आरसी। 2:15 गुजराती प्रोग्राम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। 4 मराठी भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे शिरीष विविधा। 5 खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारे की प्रस्तुति में। 5:15 से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस प्रोग्राम में। 6 समय होगा पूरा समाचार का। 6:30 हक्का भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड द्वारा। 7 तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी कलेवानी। 7:30 राजेंद्र की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे नितिन बापू से गीत गंगा। 8:10 पर रोशनी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम। 8:40 पर सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9 से 11 के बीच सुरेखा पेश करेगी भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम को। 11 सुनहरे पल इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे गिनीशा द्वारा। और 12 से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, यहाँ पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मन झूम उठता है और थोड़ा बहुत नाचने का मन भी करता है। होता है ऐसा होता है ना कि गानों पर जब हम ताल से ताल मिलाकर गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते गुनगुनाते जब किसी काम को करते हैं तो गाने सुनने का मज़ा भी बढ़ जाता है और साथ ही काम भी कैसे समाप्त हो जाता है गानों को सुनते सुनते पता ही नहीं चलता। तो चलिए, सवेरे सवेरे बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गानों को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला तराना बदलते रिश्ते फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, जैसे ज़िंदगी हर पल ढलती है, हर पल बदलती है, कभी कभार होता है ज़िंदगी के इस पड़ाव में कुछ रिश्ते भी बदल जाते हैं, कुछ अपने भी दूर हो जाते हैं, कभी कभार बेगाने हमारे अपने हो जाते हैं और कभी कभी अपने हमारे बेगाने हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तों में जो थोड़ी बहुत दूरियाँ आती है, अगर उसे समय के साथ हम कम नहीं करेंगे तो दूरियाँ समय के साथ बढ़ते जाती है। तो चलिए, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सभी रिश्तों में हमारे मिठास हो, अपनापन हो, और कहीं कहीं अगर कोई अनबन है तो उस अनबन को दूर करके हमारे हर एक रिश्ते को जो है हमें खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो ज़िंदगी की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। और चलिए, अभी के लिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं, और ये अगला तराना आप सभी के नाम हम करते हैं।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

चलिए वादा तो हम भी नहीं भूलते हैं, आपको पता है कि डेडिकेशंस का समय हो गया है, तो बिल्कुल समय पर डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जितने भी सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, जितने भी लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं या फिर जन्मदिन मना रहे हैं, और आजकल तो शादियों का सीज़न भी है, तो ऐसे में जितने भी लोग, कोई भी ऐसा खुशी का मौका है जिसे मना रहे हैं अपनों के साथ, आपके इन खुशियों में हम भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं खूबसूरत गानों के ज़रिए और आपके डेडिकेशंस के ज़रिए। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप हमें फ़ोन करते हैं, अपनी जो है डेडिकेशंस हम तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर हमारे चचा अंगिरा दुबलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी को जो है शुभ दिन कह रहे हैं। और चचा जी आपको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं इसके लिए। शिवरानी जी ग्रामपुआ से हमारा साथ दे रही है, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी जी बॉम्बू से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं, आप हमेशा फ़ोन करती है। ग्रोंगुप से सुनीता जी हमारे साथ हमेशा जुड़ती है, अगला गाना जाएगा आपके नाम और आपकी बहन विमला के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ फायजा जी हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें भी बड़ा अच्छा लगा। और चलिए यहाँ पर भूलिएगा नहीं, 4028085 नंबर हमारा आपके डेडिकेशंस के लिए। साथ ही मैसेजेस भी ढेर सारे हमें मिल रहे हैं, 5251700 पर।

और चलिए यहाँ पर डेडिकेशंस का सिलसिला इसे आगे ले जाते हैं। अगला जो मैसेज है वो आया है प्यारी सी सुबह में, प्यारी सी सुमी जी का स्वागत है। चले हम तो यहाँ पर आप सभी का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे साथ माला जी जुड़ी हुई है, और माला जी अगला गाना आपके नाम और सभी सुमारू फैमिली के नाम हम करते हैं। और यहाँ पर अगला मैसेज आया है अनीता जी की ओर से, जो मौदालबेह से हमारा साथ दे रही है, श्रवण मास को, श्रवण मास की सभी को मंगल कामनाएं दे रही है। और अगला तराना आपकी ओर से करुणा, अमृता, कविता और सभी दोस्तों के लिए होगा। और यहाँ पर डिजीना पोपिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है प्यारी बेटी, यहाँ पर देजीना हमारे साथ पोम्फिया से जुड़ी हुई है, और प्यारी बेटी रीनू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। रीनू आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मामा देजीना की ओर से। साथ में आपके हस्बैंड है मनीष, सिस्टर है विलासा, पापा आनंद, सभी सिसोका परिवार और सभी रुदि परिवारों की ओर से आपको बधाई। यहाँ पर इंदिरा लौटन जी सभी को नमस्ते कह रही है और सभी को शुभ दिन कह रही है। यहाँ पर यहाँ पर सूरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले से, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपके प्यार भरे साथ के लिए। बेटा अश्विन आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, अश्विन जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी मामा उषा की ओर से। साथ में यहाँ पर गाना जाएगा आपके नाम और ढेर सारी शुभकामनाएं अश्मित, अंजू, अनिल, अक्षिता, कविता, सभी कुंज बिहारी परिवार और सभी मोहन सिंह परिवारों की ओर से। और आज ही अलीना और अहिमान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप दोनों को जन्मदिन की बधाई आपकी नानी फूफू जैबून की ओर से, साथ में आपके मामा अनीशा, पापा अख्तर और सभी रसमली परिवारों की ओर से।

चलिए, हर खुशी हो वहाँ आप जहाँ भी रहे। और चलिए अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं। सुनीता जी इस समय दागोचिया से हमारा साथ दे रही है, कह रही प्यार भरे गीतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाना जाएगा सभी बिहारी परिवार के नाम जो इस समय दागोचिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय लक्ष्मण जी वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को जो है आज के नए दिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। साथ में गाना जाएगा उन मिसेज महंती शिवरतन के नाम जो कटरबोन से हमारे साथ जुड़ी है, और सभी सिगमन परिवारों के नाम जो इस समय वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं। बदलते रिश्ते का गाना जो चलाया आपको बहुत पसंद आया देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगला गाना आपके नाम हम करेंगे। और यहाँ पर शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही है कि अगला गाना हो जाए उनके सभी दोस्तों के लिए, खासकर उनकी बेटियाँ हैं अनुषा श्रवीना और पूरे परिवार के लिए। और इस समय विद्या जी यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है, कह रही है वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच विद्या जी। अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएँ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और यहाँ पर अगला गाना जाएगा विदिश के नाम जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विदिश आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पापा सचिन, मामा दीपा, भाई कृष्णव, रियांश, मामू रवीश, कुशल, मामी कुष्मा, दादी चंपा, नाना प्रकाश, नानी शकुंतला, अनीता जी की ओर से, और सभी सनाम परिवार, सभी परबोतिया परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ पर इस गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के समाचार की ओर, और मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में।

8 बजे बा पेश बा भोजपुरी समाचार। सब लोगन के नमस्ते। डीपीपी वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजल गल कई गो मामला में कार्रवाई शुरू कर दिले बा। तीन गो मामला सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर करल गल, जिकर में तीन गो अन्य महत्वपूर्ण मामला के आगे की जांच खातिर एफसीसी के वापस भेज देवल गल। डीपीपी अमनलेबा के तीन गो मामला में जुटावल गल सबूत अभियोजन शुरू करे खातिर पर्याप्त बाती। पहला मामला लीलराम रियाल से संबंधित है, जिनकर पर खास रूप से अपन पद के इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त करे के और धन शोधन के आरोप बा। दूसरा मामला में राजाना डालिया, हरिदत्त रामनारायण और मनीष गोविंद पर भ्रष्टाचार से जुड़ल अपराध के आरोप बा। कैन पुनुस्वामी पर भी आरोप बा कि उ अपन पद के दुरुपयोग कर ले रलन। तीन गो मामला के सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर करल गल बा। हो जे डीपीपी तीन गो दूसर संवेदनशील मामला एसबीएम सैन लुई और रिवॉर्ड मनी में और जस्टिस सबूत मंगले बाते। ये मामला के स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जांच खातिर एफसीसी के वापस भेज देवल गल। कथित भ्रष्टाचार के जांच के सिलसिला में काल दुगो पुलिसकर्मी के गिरफ्तार करल गल। इकर में कोहोमॉडल के निवासी 47 बरिस के पुलिस कांस्टेबल ऋषि गनावरी और फ्लोरियाल के रही होला 47 बरिस के पुलिस सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंदराम शामिल हवन। काल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ता

उलोक संगे एंड वार्निंग पूछताछ करलक। ये जांच मार्च 2024 में वाली डिप्रेट के एगो निवासी के घर पर करल गल तलाशी से संबंधित था। ये तलाशी स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट के स्पेशल इंटेलिजेंस सेल के एगो टीम कर ले रहल दोनों पुलिस कर्मी ये टीम के हिस्सा रहल। उ लोग से खास रूप से व्यक्तिगत लाभ खातिर अपन पद के दुरुपयोग करे के आरोप के संबंध में पूछताछ करल जानबा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपन काम शुरू कर दे लेबा। पूर्व जज विनोद बुलेल के अध्यक्षता होला यह आयोग काल मंगर के पोटली में अपन पहला बैठक लगेलक। एकर में कार्यनीति और उ विषय पर चर्चा करल गल जेकर पर प्राथमिकता के आधार पर काम करल जाए। एकर में मौलिक अधिकार के मजबूत करे के निजता और सूचना के अधिकार पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रपति के चुनाव खातिर एगो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल के गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराए के शामिल है। आयोग इस संभावना पर भी विचार करी कि बड़ा सार्वजनिक संस्था के प्रमुख के नियुक्ति खातिर सिफारिश तैयार करे होला एगो समिति बनावल जाए। एकर अलावा सुप्रीम कोर्ट के भीतर एगो अपील कोर्ट और एगो संवैधानिक विभाग गठित करे के प्रस्ताव पर भी विचार करल जाए। आयोग की आवत बैठक 18 अगस्त के लगावल जाए। आयोग ये भी बोलक कि ऊ मॉरिशस के लोगन के राय जाने खोजता जल्द ही एगो कम्युनिके के माध्यम से जनता के अपन सुझाव प्रस्तुत करे खातिर आमंत्रित करल जाए। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बैठक से कुछ घंटा अगते सब लोगन के नज़र नीतिगत ब्याज पर टिकल बा जिनकी फिलहाल 4.75% है। मई में 25 बेसिक पॉइंट के बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखोनी के अनुसार अब दर के मौजूदा स्तर पर बनाए रखे के संभावना सबसे अधिक नज़र आवत बा। बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF अब 2026 में मॉरिशस के वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहे के अनुमान लगेले बाती। खबर में आगे जैसे कि काल से पताबा आत्मा शांतु अपन भूख हड़ताल समाप्त कर देले हमन। ये भूख हड़ताल 24 घंटा से कुछ जस्ती समय तक चलल। FTU ट्रेड यूनियन के वार्ताकार आत्मा शांतु खातिर स्थिति उस समय बदल गल जब उस श्रम मंत्री रेजा उतिम और उ तीन गो कंपनी के प्रतिनिधि संगे मुलाकात करलन जिनकर खिलाफ वो अपन भूख हड़ताल शुरू करे से अक्ते शिकायत दर्ज कर ले रहलन। दोनों पक्ष उनकर मांग के अनुरूप कदम उठाए के आश्वासन दिले हवन। आज 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनावल जात बा। ई दिन युवा के आकांक्षा चुनौती और समाज में उनकर भूमिका के उभारेला। मॉरिशस में पढ़ाई रोजगार उद्यमिता सफलता हासिल करे के इच्छा और कबो कबो विदेश जाके अपन किस्मत आजमाए के चाहत के बीच युवा के पास भविष्य के लेके अपन एगो अलग ही सोच बाते। रक्षाबंधन 28 अगस्त तक के ही मनावल जाए। एगो प्रेस सम्मेलन बजी काल मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ई पर्व से जुड़ल भ्रांति पर स्पष्टीकरण दिलन। आज 12 अगस्त के ई बरिस खातिर एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण होई। ई घटना आज रात के 7:34 पर शुरू होई और रात 11:59 पर समाप्त होई। मॉरिशस और रोड्रिक्स में ई दिखाई नहीं देवी। यूरोप के कई गो क्षेत्र में ई देखल जा सकी। और कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगा के उलोगन के बचाए में लगल हवन से जिनकी सोमवार के आल शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारत और मलबा के नीचे फंस गल हवन जा। 180 से जस्ती लोगन के मौत की पुष्टि करल गल बाते। बकिर इस संख्या और जस्ती हो सकी 240 से भी जस्ती लोगन के मारे जाए के आशंका बाते और 200 से जस्ती लोग लापता।

0: हमला भी हवन जा 1100 से जस्ती लोग घायल होल हवन सा। हो जाके राष्ट्रपति अल्बेलाडो डेला इस्प्रिया आपातकाल की घोषणा कर ली हवन जा। इकड़ी संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शुक समाचार सुना जा। सोहन लेन घान पॉइंटो पीमा में 81 बरिस के कथवैन के श्री दुर्गा प्रसाद नौबत सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद नौबत सिंह जिनकरा लोग दुर्गा से जानत रलन जा और जिनकी अक्ति सुलिचित शुगर स्टेट में सियाडोर हेलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान सोहन लेन घान पॉइंटो पीमा से उठा के दाह संस्कार खातिर पॉइंटो बीच के शमशान भूमि ले जाल जाए। पेलघर रोड सेवास्तोपुल में 61 बरिस के स्वासोत्यनों के श्री ऋषि कुमार गोपुल, श्री ऋषि कुमार गोपुल जिनकरा लोग ऋषि से जानत रलन जा और जिनकी सेवास्तोपुल के फिलिंग टोटल के मालिक रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी काल बिफे के दिन के 10 बजे इनकर पिता श्री हरिदत्त गोपुल के मकान पेलघर रोड सेवास्तोपुल से उठा के दाह संस्कार खातिर सेवास्तोपुल के शमशान भूमि ले जाल जाए। टेम्पल रोड ट्वाबुचिक में 52 बरिस के सेकंडीजों के श्रीमती लक्ष्मी करुण दास अचामा, श्रीमती लक्ष्मी करुण दास अचामा पैदाइशी नाम मूलिया जिनकरा लोग प्रिया से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2:30 इनकर माँ श्रीमती शीला मूलिया के मकान टेम्पल रोड ट्वाबुचिक से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लेनमानियों के शमशान भूमि ले जल जाए। रॉयल रोड मौदस्थालिया में 83 बरिस के काथोवैटवाजों के श्री महेंद्र सिंह भवानी पैक, श्री महेंद्र सिंह भवानी पैक जिनका लोग दामोदर से जानित रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर मकान रॉयल रोड मौदस्थालिया से उठा के दाह संस्कार खातिर मौदस्थालिया के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। राजकुमौलिन बेटो काठोबोन में 79 बरिस के स्वासनदीजेवों के श्रीमती चंद्रावती मेराय, श्रीमती चंद्रावती मेराय पैदाइशी नाम जियाबुक जिनकरा लोग लोलो से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1:30 इनकर मकान आविनी राजकुमौलिन बेटो काठोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। बनान क्लिनी में 69 बरिस के स्वासौतनेवों के श्री देवानंद रघु, श्री देवानंद रघु जिनकरा लोग राजेंद्र से जानत रलंजा और जिनकी अक्ति आगकिलचिया क्यूपिप के कर्मचारी रहलन की मृत्यु हो गल बा। अर्थी जुन बाते आज दिन के 10 बजे इनकर बेटा सत्यम शर्मा रघु के मकान बनान क्लिनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाह संस्कार खातिर क्लिनी के शमशान भूमि ले जाल जाए। बुढ़न लेन अपवेल में 75 बरिस के श्वासन कैजों के श्री राम सिंह चोईटू, श्री राम सिंह चोईटू की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान बुढ़न लेन अपवेल से उठा के दाह संस्कार खातिर दाहुची के शमशान भूमि ले जाल जाए। लेओशे त्यागोज में 62 बरिस के श्वासन देजों के श्री वसंत कुमार आलिया, श्री वसंत कुमार आलिया जिनकरा लोग बाब से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान लेओशे त्यागोज से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौशाओं के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 1 पोंस सेंट लुई पाई में 95 बरिस के कथवा कैजों के श्रीमती परमावती तिलक, श्रीमती परमावती तिलक पैदाइश नाम पराहू की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान

0: नंबर एक पों सैलवी पाई से उठा के दाह संस्कार खातिर ले सालिन काशी के शमशान भूमि ले जाल जाए। बहनौदे दे सैं पियर स्ट्रीट वाली दे प्रेत में 86 बरिस के 86 के श्री छत्रपाल हुकुम जिनकरा लोग मान मौसमफुई से जाने तरलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी जोन बातें आज दिन के 1:30 इनकर मकान बेनौदे दे सैं पियर स्ट्रीट वाली दे प्रेत से उठा के दाह संस्कार खातिर सिपाही बोईले वाली दे प्रेत के शमशान भूमि ले जाल जाए। केवल नगर बेलगीव में 53 बरिस के सेकंड ख्वाजों के श्रीमती गीता डामरी पैदाइशी नाम दुखवा जिनकरा लोग सीता से जाने तरलन जा जिनकी अक्ति कम्युनिटी सेंटर रोड केवल नगर बेलगीव रह तरलन के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन की 1:08 इनकर बेटा भवेश डामरी के मकान केवल नगर बेलगीव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्वाजिलो ओलिविया के शमशान भूमि ले जाल जाए। डोमेन दे रोजाली देपिने में 74 बरिस के स्वासन कातुजों के श्रीमती चंद्रावली बंधू पैदाशी नाम पति जिनकरा लोग मीला से जाने तरलन जा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2:30 इनकर मकान डोमेन दे रोजाली देपिने से उठा के दाह संस्कार खातिर ग्रांड रोजाली के शमशान भूमि ले जाल जाए। इडिसेलेन कोंगोमा में 60 बरिस के स्वासौतों के श्री सत्यानंद गोकुल जिनकरा लोग बिजयानंद से जाने तरलन जा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11:00 इनकर पत्नी श्रीमती चंद्रावती गोकुल के मकान इडिसेलेन कोंगोमा से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआमाशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन में 66 बरिस के श्वासन सीजों के श्री विनोद कुमार बुलक जिनकरा लोग विनोद से जाने तरलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज फजर के 9:00 इनकर मकान नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। दशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने की दिली हमदर्दी बाते।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और दूसरे घंटे की शुरुआत करते हैं इस छोटे से क्विज के साथ। खेल खेले हम, हमें पता है इस छोटे से सेगमेंट का आप सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज है 12 अगस्त, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा एक बहुत ही विशेष दिन को मनाता है और ये दिन जो है शिक्षा रोज़गार और जिनके लिए ये दिन मनाया जाता है उनके लिए शिक्षा रोज़गार और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही में जो है ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बेशक आप हमें फ़ोन करके बताएं कि आज कौन सा ऐसा विशेष दिन मनाया जा रहा है। इन्हें हम अपने देश का भविष्य भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर पहले फोन कॉल की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार, देखते हैं लाइन पर कौन है।
1: नमस्कार सुमित जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम कौन है?
1: मैं उमा हूँ, रुसबेल से। कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमा जी, बताइए जवाब क्या है?
1: इंटरनेशनल यूथ डे।
0: ओके, कुछ कहना चाहेंगी इस विशेष दिन को लेकर?
1: कल मैंने सुना था टीवी में, अभी न्यूज में, तो याद आया। मैं कहूँगी ये मेहनत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी भविष्य आप ही के हाथ में है, अच्छा रास्ता चूज कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी और इस छोटे से क्विज में आपने साथ दिया। उमा जी आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे। बहुत धन्यवाद, चलिए नमस्कार आपको, शुभ दिन। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को पहली बार के लिए साल 2000 में मनाया गया था। और चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, कौन है लाइन पर? चलिए यहाँ पर लाइन कट गई, कोई बात नहीं, अगले श्रोता से मिलते हैं हम। नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते सुमित जी।
0: जी नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: आज इंटरनेशनल यूथ डे है।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्ति जी, और बताइए आज के इस दिन को लेकर आप कुछ जोड़ना चाहेंगी?
2: क्या कहेंगे, युवकों को शुभ दिन कहेंगे। और अच्छे अच्छे विचार लेकर, नई नई चीजें लेकर आएंगे।
0: ओके जी
2: जी, ओके,
0: धन्यवाद
2: आपको।
0: ओके, और चलिए यहाँ पर आज बहुत ही एक विशेष दिन मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर वर्ष काफ़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और ये दिन जो है कहीं ना कहीं हमारे देश समाज के भविष्य से जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्कार सुमित जी।
0: नमस्ते जी, कौन है?
3: मैं हूँ वसंती।
0: कैसी है वसंती जी?
3: मैं ठीक हूँ सुमित जी, और आप?
0: बिल्कुल ठीक है, और बताइए क्या है जवाब?
3: यस, इंटरनेशनल यूथ डे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद वसंती जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे?
3: शुभकामनाएं
0: जी,
3: और उन लोगों के, भगवान से मैं प्रे करती हूँ उन लोगों के आशीर्वाद मिले, आगे बढ़ें अपना जिंदगी में।
0: बहुत धन्यवाद, चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्कार।
4: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है, कौन है?
4: मैं हूँ जनपद बुंटे फाकुआ का।
0: भाई जनपद जी, बताइए क्या है जवाब आपके पास?
4: मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ आपको, एक बच्ची एक खिलौना से खेल रहा है
0: जी,
4: तो उससे छीन कर और वो बच्चा रो रहा है, ये क्या क्या मतलब है? वो बच्चे के खिलौना छीन के अच्छा बात है वो ना? नहीं, ये आपसे जानता हूँ, शुभ दिन आपसे, आपका उम्र जो है मैं जानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बहुत बहुत बीमार हूँ, तो देखो क्या कर सकते हो आप ये बच्चे के लिए, उसका खिलौना नहीं लुटा रहे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत भाई दनपत जी, आप ऐसे आपकी बात को हम उतने ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन आप, हम प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्विज रखा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक जवाब हमें मिला है दीपा जी की ओर से, जो कौतरेल से हमारे साथ जुड़ी है और कह रही है कि उनका जवाब है इंटरनेशनल यूथ डे। और चलिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से क्विज में आप लोगों ने भाग लिया। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष जो है

18 अगस्त को इसे मनाया जाता है। पहली बार के लिए साल 2000 में इसे मनाया गया था और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है युवाओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना और वैश्विक स्तर पर जो है इसके बारे में चर्चा करना। युवाओं की समस्या जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, समाज के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज के दिन इस बात पर काफ़ी सारी जो है चर्चाएं की जाती है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है और युवाओं को उनके अधिकारों और उनके जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक कराना होता है। तो चलिए, जितने श्रोताओं ने इस छोटे से क्विज में भाग लिया इसके लिए धन्यवाद। इस छोटे से गीत को आप सबके नाम हम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

0: चलिए, जीवन में आशा होती है तो हर मुश्किल जो है दूर हो जाती है। सवेरे के 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम परिवार नियोजन की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भगन, तो आइए उनको सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को

मनाया जाता है और इस साल का विषय है डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी कि अलग अलग संदर्भ में समान आकांक्षाएं। यूनाइटेड नेशन ने 3 उप विषय का उल्लेख किया है जो कि ग्लोबल सॉलिडारिटी, साझा चुनौतियां और युवा इनोवेशंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और युवाओं का विकास सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पार्टनरशिप और अवसरों व संसाधनों तक समान पहुंच के महत्व पर जोर देती है ताकि हर जगह युवा तरक्की कर सकें। अलग अलग देशों के युवा शिक्षा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल संवेश और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपस में जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ये सब थीम युवाओं के अपने अनुभवों के आधार पर बातचीत और सामूहिक समाधान खोजने को बढ़ावा देती है। युवा स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यावहारिक और रचनात्मक समाधान विकसित कर रही है। जलवायु कार्रवाई और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर समुदाय आधारित पहलों और सामाजिक इनोवेशन तक युवा सीमित संसाधनों के बावजूद नैतिक का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब थीम उनके योगदान का सम्मान करती है और साथ ही सहयोग और ज्ञान साझा करती है, अवसरों को बढ़ावा देती है। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होता है, लेकिन जब यही युवा अपने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर आगे बढ़ते हैं तो देश में बहुत परेशानी होती है। मॉरिशस में लगभग 25% जनता युवा है, यानी कि 25 साल के नीचे। आवश्यक है कि आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति का भागीदार बनाना, उनमें अच्छा संस्कार देना, उचित शिक्षा एवं उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, हिंसा इत्यादि से बचाना है। आज के युवा वर्ग को अपने विद्यार्थी जीवन के समय का सदुपयोग आवश्यक है। विद्यालय को मस्ती का पाठशाला समझकर समय गंवाने वाले युवा स्वयं अपने साथ अन्याय करते हैं, जिसकी भारी कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है। और हमारे युवा वर्ग को वृद्ध लोगों से बहुत सारे अनुभव सीखने को मिल सकता है। जहां युवा वर्ग एनर्जी से भरपूर है, वही वृद्ध वर्ग अनुभव से भरपूर है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मोज़ेन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज के बारे में। कई सालों से हमने मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की तरफ से ये निरीक्षण किया है कि आज के बच्चे और युवा ज़्यादातर मोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। COVID-19 के दौरान हम कंप्रेहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे स्कूलों में, और उसी दौरान बहुत सारे साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन के मामले रिपोर्ट किए गए थे, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि युवाओं और किशोरों में गर्भावस्था के मामले बढ़ रहे हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV/AIDS के मामले भी बढ़ रहे हैं। कुछ युवा मादक द्रव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका उन पे गलत असर होता है। इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए हमने एक नया प्रोजेक्ट लिखा था जो कि यूरोपियन यूनियन ने फंड किया, जिसका नाम है ई सेक्सुअल हेल्थ फॉर जेन ज़ेड। इस प्रोजेक्ट में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव में हमने कहा था कि हम एक नया चैटबॉट का निर्माण करेंगे जो कि बच्चों और युवाओं को यौवन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि उनके लिए बहुत लाभदायी होगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में हम कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करेंगे, और तीसरे ऑब्जेक्टिव में हमने ये कहा था कि एक यू फ्रेंडली सर्विस का निर्माण करेंगे। इसी संदर्भ में 9 जुलाई 2026 को हमने एक नया सेंटर का निर्माण किया था जो कि स्थित है फर्स्ट फ्लोर इकाइस बिल्डिंग फॉर फारों पोर्टविस, और इसका नाम है मोज़ेन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। इसका लॉन्चिंग करने के लिए बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आए थे,
यूनाइटेड नेशन के अनुसार हमें युवाओं को

उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इसी संदर्भ में मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन एक नया सेंटर का निर्माण किया है जिसका नाम है मोज़ेन यू फ्रेंडली सर्विसेज। मोज़ेन यू फ्रेंडली सर्विसेज में बच्चों और युवाओं

इन्फेक्शन टेस्टिंग, चौथा है पीयर एजुकेशन और ग्रुप सपोर्ट, और पांचवा है डिजिटल एक्सेस जेनजी चैटबॉट के माध्यम से। मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज का उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे ये उद्देश्य हैं कि युवाओं और किशोरों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य प्रदान करना। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने दो ज़रूरी सेवा को आपके लिए लाए हैं। पहला है युवाओं के लिए एक सेंटर जहां उनको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में कई सेवाएं मिलेंगी, और दूसरा है जेनजी चैटबॉट जिसका इस्तेमाल से बच्चों और युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में कई ज़रूरी जानकारी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि गर्भावस्था, यौवन विकास, यौन शोषण ऑनलाइन, सेक्सुअल अब्यूज़, मादक द्रव्य का गलत इस्तेमाल, HIV/AIDS और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास, परिवार और प्यार, गर्भ निरोधक तरीके और उसके लाभ और हानि और अन्य चीज़। जेनजी चैटबॉट का इस्तेमाल बहुत आसान है। युवा को किशोर या किशोर को बस जेनजी मॉरिशस यानी कि JENZEE Mauritius.com वेबसाइट में जाना है और उसको चैटबॉट मिलेगा। और अगर उसको यौवन यानी कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न है तो वो उस चैटबॉट से पूछ सकता है, उसे जवाब मिलेगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो उस में फ़ोन नंबर है जहाँ पे वो संपर्क कर पाएगा। वो चैटबॉट इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोल लैंग्वेज में है और उसमें कॉलमिंग म्यूज़िक भी है, और ये चैट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है और कोई भी उसे जज नहीं करेगा कि वो किस तरह के सवाल पूछ रहा है। जब समस्या गंभीर है तो उस बच्चे को एक फ़ोन नंबर मिलेगा जहां से वे संपर्क कर पाएगा और एक अफसर उसकी सहायता के लिए उपलब्ध होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी बच्चे या युवक को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में जानकारी चाहिए तो वो JENZEE Mauritius.com चैटबॉट में जा सकता है जहाँ वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टाइप करेगा और उसको वो चैटबॉट जानकारी देगा। और अधिक जानकारी के लिए चैटबॉट उसको हर बार पूछेगा और अंत में उसको एक फ़ोन नंबर की पर्ची भी देगा अगर समस्या गंभीर है। इस तरह उस युवक को आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज में आपको कई सेवा मिलेंगी और आप हमारे सेंटर से संपर्क बना सकते हैं या आप वहां आ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप सब प्रिकॉशंस ले अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे ताकि आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जैसे कि ध्यान रखें कि आप और आपके पार्टनर 18 साल के उम्र से ज़्यादा के हैं किसी भी यौन संबंध बनाने से पहले। दूसरा, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV/AIDS के बारे में जाने और उससे बचने का तरीका जाने। तीसरा, आप एक कंडोम का सही इस्तेमाल करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV/AIDS और अनचाही गर्भावस्था से बचने के लिए। चौथा, आप रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहें अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो। और पाँचवा, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती यौन संबंध करने का प्रेशर डाले तो उसे यौन शोषण कहते हैं और आप इसको रिपोर्ट करें। आप अपने पार्टनर से वफादार रहें, ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स ना बनाएं क्योंकि इससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य या यौन स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य या सस्पिशियस दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, क्योंकि कभी कभी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान रखें कि असुरक्षित यौन संबंध से 72 घंटे पहले आपको डॉक्टर के एडवाइस से आपातकालीन गर्भ निरोधक लेना चाहिए गर्भावस्था से बचने के लिए, और 72 घंटे से पहले ही आपको पेप यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मेडिकेशन लेनी चाहिए डॉक्टर के एडवाइस से,
ताकि आप HIV AIDS से बच सके। मॉरिशस

0: फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन में अन्य सेवा उपलब्ध हैं, जैसे कि मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के क्लिनिक में मामोग्राफी एकोग्राफी सेवा उपलब्ध है, ईसीजी, बोन टेस्टिंग और अन्य ब्लड टेस्ट। आप इस फ़ोन नंबर में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 2114101। हमारा अगला सर्विस है ड्रॉप इन सेंटर, जहां हम बच्चों की सहायता करते हैं जो बच्चे यौन शोषण, किशोरी गर्भावस्था या बाल वेश्यावृत्ति के शिकार हैं। हम उनको मनोवैज्ञानिक, मेडिकल और रिहैबिलिटेशन सेवा प्रदान करते हैं। ड्रॉप इन सेंटर स्थित है मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन, लारी दे फोर्ज, पोर्ट लुइस, और आप हमें इस फ़ोन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 2089233। और मोज एंड यू फ्रेंडली सर्विस से संपर्क बनाने के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 2186283। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।
1: तो श्रोताओ, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार नियोजन मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में।
2: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए, साथ चलने से ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आसान हो जाता है और साथ चलने से समय भी आसानी से कट जाता है और बहुत सारी यादें हम बनाते हैं। अभी के लिए 8:50 होने को चले हैं और अब बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हम चर्चा करब उ धरोहर के जेके डॉक्यूमेंटरी हेरिटेज यानी जानदार विरासत मानल जाला। धरोहर के गिनती में मोन्यूमेंट, सित और परंपरा, यादगार के सिवाय और एगो चीज आवेला और वह दस्तावेज, आर्काइव्स या पुस्तकालय के पुराना डॉक्यूमेंट, कागज पत्तर। आप लोग भी अपन घर में अपन पूर्वज या फिर बड़ा आदमी लोग के दस्तावेज, जमीन के पुराना कागजात संभाल के रखे ला जा, तो ई जानला कि वो भी धरोहर में गिनाला। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज सोच कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण बा। ई जान के तोहरा अचरज हो कि हमने के पूर्वज लोग के कागजात और उ लोग के फोटो की जो कलेक्शन MGI और मॉरिशस के नेशनल आर्काइव्स और 1934 से 1910 तक जो पुराना अखबार के कलेक्शन बा, वो एकदम मूल्यवान अनोखा धरोहर मानल जाला और इके साल 2015 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करा गल बा। ई मॉरिशस जैसन छोटा टापू देश खातिर बहुत बड़ा बात है। MGI में 2055 वॉल्यूम के दस्तावेज बा और इमें वो सब जहाज के रिकॉर्ड बा जिनमें गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस आ रहा जा और सब रजिस्टर भी बाटे। 65 वॉल्यूम में खाली पूर्वज लोग के सकब्जा बले 175,000 फोटो बा, कुल मिला के 365,000 तस्वीर हमने के जो पूर्वज लोग बा उ लोग के खातिर बा, लेकिन अब खाली 2/3 भाग बचल बा। और भारतीय गिरमिटिया से जुड़ल दस्तावेज जितना बा वो MGI के आर्काइव्स में रखा गया बा। मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स में 5,000 वॉल्यूम बा जिनमें प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के रजिस्टर भी शामिल बा। इही में पूर्वज लोग के नाम दर्ज करल जात रहल जब उ लोग आप्रवासी घाट पर उतरल तरलन जा, तब कितने रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के फैसला, नोटिया के कागजात जिनमें देखबा कि कैसे जमीन किनल जात रहल, बेचल जात रहल और केकर द्वारा और केकर से ये सब कारोबार हुए, ये सब जानकारी कोहो मॉडल के नेशनल आर्काइव्स में बा। नेशनल आर्काइव्स ये सब दस्तावेज के डिजिटाइज कर ले जाता और फिर नेशनल लाइब्रेरी में 2000 पुराना अखबार बा जोन ला सेंटिनल न्यूज़ पेपर कंपनी, पोर्ट लुई म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और महात्मा गांधी संस्थान के पुस्तकालय दान कर ले हवन सा। ये सब पुराना अखबार भी डॉक्यूमेंटरी और लिविंग हेरिटेज में गिनाला। यूनेस्को

1992 से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर स्थापित कर लेबा। ये मकसद से कि दुनिया के विभिन्न इलाका में सब सदस्य देश अपन अपन ऐतिहासिक कागजात के संरक्षण करियन सा। ये डॉक्यूमेंटरी हेरिटेज कहाला। कई दशक से युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, लापरवाही, लूट, चोरी, गैर कानूनी व्यापार, सही जगह की कमी और पैसा के कमी के वजह से दुनिया के कितने मूल्यवान कागजात हमेशा खातिर गुम हो गए बा, कितने के बर्बाद हो के खतरा बा। लेकिन खुशी के बाद बा कि कबो कबो गुम कागजात फिर से मिल जाला और ऐसन में खुशी दुगुना तिगुना बढ़ जाला। आज के कार्यक्रम में हमने के दस्तावेज पुराना कागज पत्थर पर इतना ही। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

0: तो चलिए अभी हम सुन रहे थे हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, उनको हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का भी जो हमेशा हमारे हर एक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं। आज सवेरे से भी आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब बारी है एक भोजपुरी गीत की और जिसके साथ आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है सुबह का नजराना समाप्त होने को चला। 9 बजे जो है आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी। तो चलिए हमारे आपकी मुलाकात दोबारा होगी दिन के 10 बजे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
2: छन छन छन छन न न

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं करुणा जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते करुणा जी।
2: नमस्कार रत्ना जी, सभी को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 चर्चित मामलों में डीपीपी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इनमें रिवॉर्ड मनी मामला शामिल है, जिसमें पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लीलराम डियाल संलग्न हैं। इस ताकपाउटी मामला जिसमें पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिन के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जा रहा है। और तीसरा मामला इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ कैन पुनुस्वामी के खिलाफ हैं, जिन पर कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त करने का आरोप है। डीपीपी का मानना है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोष सिद्धि की उचित संभावना मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने कल मंगलवार को पोर्टली में अपनी पहली बैठक लगाई और कार्यनीति तथा उन विषयों पर चर्चा की गई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल का गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराना शामिल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नज़रें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हुई हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखनी के का मानना है कि अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है। बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% का रहने का अनुमान लगाया है। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता

0: सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के बाप के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग ही सोच है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इसकी पुष्टि की। सम्मेलन के दौरान इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण भी दिया गया और विदेश में कोलंबिया में भूकंप पश्चात नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या अभी 181 बताई गई, लेकिन मृतकों की संख्या इससे अधिक होने की आशंका है। संभवतः 200 से भी अधिक देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लगभग 2600 लोग घायल रहे हैं और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। 1100 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 8000 से अधिक घरों को नुकसान हुआ है। मलबों में फंसे लोगों की खोज के लिए राहत कर्मी समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेडियो मॉर्शस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज बुधवार का दिन है, 12 अगस्त तारीख है और मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पर हम सेहत को लेकर बातें करते हैं। और जैसे आए दिन हम कई सारी ऐसी समस्याओं के बारे में बात कर चुके हैं, पर आज की जो चर्चा है आज का जो शीर्षक है वो महिलाओं की समस्याओं को लेकर है। बिल्कुल, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो आज के आधुनिक समय में बहुत सारी महिलाओं के साथ, महिलाओं को लेकर ये समस्याएं उत्पन्न होती है। और आज के इस शीर्षक को हम बताते चले कि आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। और आज हमारी जो मेहमान है वो एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर आशिका सलिक जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन पर। तो पहले तो हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे डॉक्टर जी से कि डॉक्टर जी, ये जो है पेल्विक फ्लोर, ये क्या होता है और ये कैसे होता है?
1: सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आशिका सलिक, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं स्टूडियो में आई हूँ पेल्विक फ्लोर आज के चर्चा के कार्यक्रम में पेल्विक फ्लोर के बारे में बात करने के लिए। और पेल्विक फ्लोर एक बहुत ब्रॉड टर्म है और वो हमारे शरीर के नीचे जो हिस्सा है वो इसके लाइक बेस है, वो इसके इसमें मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और वो लिगामेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, तो यूट्रस हैं जिसे क्रियोल में हम लाकास बाबा कहते हैं, ब्लाडर हैं और वो रेक्टम है जो फीसेस को के द्वारा हम एक्सक्रीट करते हैं और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो इस बॉडी के हिस्से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, तो इसके समस्या क्या होता है कि मसल्स और लिगामेंट्स वो ढीले पड़ जाते हैं और वीक हो जाते हैं। इसके कई वजह हैं जो हम कार्यक्रम के द्वारा
0: दौरान हम जानेंगे। तो वैसे पेल्विक डिसफंक्शन जो है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन जो है, उसके लक्षण हमें कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या क्या हैं उसके?
1: ओके, सो लक्षण जो होते हैं ज़्यादातर वो वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, और उससे लेस कॉमन एंड द मोर कॉमन। सो पहले होता है यूरिन लीक। तो ये जब शुरू होता है तो महिला उसको पता नहीं चलता कि ये हो रहा है मेरे साथ, तो और क्वांटिटी के द्वारा ज़्यादातर कम होता है और ज़्यादा होता है। तो यूरिन लीक इज़ द फर्स्ट सिम्टम। एंड देन जब आप कैसे पता चलेगा, तो आपको You cannot hold your pee.
0: So यानी जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को एक छींक आती है या खांसी होती है और उस टाइम पर उनका पेशाब

0: लीक हो जाता है, तो क्या ये भी एक पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन का ही लक्षण है?
1: यस, ये हो सकता है और ये हम इसे स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं।
0: अच्छा, और लगभग ये कौन सी उम्र की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है?
1: ये उम्र ज़्यादातर ओल्डर वीमेन में होता है, पर वीमेन हु हैव गिवन चाइल्ड बर्थ मेनी टाइम्स उस कैटेगरी के
0: महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। यानी डिलीवरी के बाद होने ये चांसेस है कि काफ़ी टाइम के बाद जैसे उनके जो स्नायु हैं या उनके जो मसल्स हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, उसके कारण ये होता है। तो डॉक्टर जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हो कि पेशाब लीक होना कई बार होता है ना, कि कुछ महिलाएँ जब खांसती हैं तो पेशाब लीक हो जाता है, तो क्या ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है या तुरंत उन्हें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है?
1: तो ये समस्या एक इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। तो पहला चीज़ टेस्ट करना चाहिए अगर इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है अगर बैक्टीरिया वगैरह वे, तो इसके बाद अगर टेस्ट हुआ और इन्फेक्शन नहीं है तो फिर वो लाइक ब्लड डायरी कहते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स शी गोज टू पी एंड व्हाट्स द,
0: बहुत टाइम उनको पेशाब जाने की एक जैसे उनको फीलिंग होती है कि बहुत बार उनको पीपी जाना पड़ रहा है।
1: तो इसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन या नहीं।
0: तो डॉक्टर जी, ये सिर्फ केवल वो महिलाओं में पाया जाता है जिनको बेबी हो चुका है या यंग लड़कियों में भी ये समस्या हो सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, यंग लेडी जो जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ और जिनके दूसरी वजह है लाइक कफ, क्रॉनिक कंस्टिपेशन, सो उम्र इज नॉट रियली ए फैक्टर।
0: या ऐसा भी हो सकता है कि मेनोपोज के बाद ये समस्या होनी ही है, या ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि मसल्स वीक हो जाते हैं या मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, तो कई बार बढ़ती उम्र के साथ लेट्स से 50 वर्ष की जो लेडीज़ होती हैं उनमें मसल्स कमज़ोर होना या ढीले पड़ जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो क्या उनमें भी ये प्रोसेस या हम कह सकते हैं कि ये डिसफंक्शन नेचुरल है?
1: So it's on a case-to-case basis. Not all women. सभी औरतें different तरीके से उनका body behave करता है। तो ज़्यादातर menopausal ladies, उनके estrogen levels drop होते हैं। तो estrogen drop करने से pelvic floor ढीले
0: पड़ने के chances हैं।
1: तो some women, so depending on the lifestyle, जीवन शैली
0: जैसे उनका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ये होता है या बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो तो होता है?
1: सेडेंटरी अगर वो व्यक्ति ओबेस होता है, ओवरवेट होता है, तभी ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है। बट कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो सारी उम्र उसने बहुत ज़्यादा
0: बहुत वजन उठाया है, बहुत भारी भरकम काम किया है।
1: एक्जैक्टली, तो ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे कि उम्र बढ़ती है तो वो ये नॉर्मल चीज़
0: ये मतलब उनको हो सकता है कि बिकॉज उनके पास इतना नॉलेज नहीं है और ये उनको लगता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ठीक है चलो थोड़ा सा पेशाब लीक हो जाता है, ये नॉर्मल सोचकर उन लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो क्या डॉक्टर जी ये केवल महिलाओं में होता है पेल्विक फ्लोर या फिर पुरुषों में भी ये एक समस्या है?
1: सो पेल्विक फ्लोर इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द, जैसे कि मैंने बताया जो शरीर के
0: निचला हिस्सा है।
1: हाँ, तो पेल्विक फ्लोर पुरुष में भी होता है लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होता है, उनके पास यूट्रस वूम्ब नहीं है, उनके पास वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक नहीं है, तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो इसीलिए उनके

0: ये रेयर प्रॉब्लम है,
1: मतलब उनमें उतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू महिलाओं में. महिलाओं में जैसे कहा कि बच्चादानी होती है, यूट्रस होता है, और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरह से बना हुआ है, नेचुरल प्रोसेस है, और जब एक महिला बहुत बार बच्चे को जन्म देती है तो कहीं ना कहीं उनका जो अंदर का शरीर है वो कहीं ना कहीं उनका उनके जो मसल्स है वो ढीले पड़ जाते हैं एक समय के बाद, एक उम्र के बाद. और इसी कारण कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर एक छोटी सी छींक या एक थोड़ी सी खांसी के कारण उनका पेशाब लीक होता है, और कई सारी महिलाओं को लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये इसे अनदेखा कर देते हैं. पर देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर ने हमें समझाया कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन यहीं से शुरू होता है कि ढीले हो जाने के कारण ऐसा होता है, कई बार इन्फेक्शन के कारण भी ये समस्या बढ़ सकती है. चलिए जानते हैं डॉक्टर से अभी थोड़ी ही देर में कि अगर ये समस्या बढ़ने लगे तो कौन सी दूसरी समस्याएं इससे कनेक्टेड हो सकती हैं. एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर आशिका हैं, जो कि एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं और

0: साथ ही साथ एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो आज हमारे साथ बात कर रही हैं, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन पर और इसके लक्षणों के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो चलिए एक बार फिर जानते हैं कि और क्या लक्षण हो सकते हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन से, डॉक्टर आशिका के साथ।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे वो जो यूरिन लीक्स होते हैं, ज़्यादातर यूरिन लीक्स एसोसिएटेड हैं ब्लैडर प्रॉब्लम्स आल्सो। सो एक टर्मिनोलॉजी होता है सिस्टसील, या ये क्या होता है जो पेशाब करने के ऑर्गन है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और दूसरी ऑर्गन जो वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो यूटरस होता है वो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है बॉडी पार्ट्स के उससे नीचे भी। तो बहुत सारे महिलाएं हैं जो जिनको समझ नहीं होता है तो क्यों ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ। तो एक बहुत मेन लक्षण होता है पेन, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है कि एक स्वेलिंग बल्ज हो रहा है, ये मोस्टली ये एक जैसे मैं बता रही थी वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ द पेल्विक फ्लोर की समस्या। तो ये वो जो इशू होता है तो महिला तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिन करना चाहिए और पता लगना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है,
0: इसका मतलब ट्रीटमेंट कराना, exactly. समय पर ट्रीटमेंट कराना
1: और सर्जरी कराना
0: पड़ता है। तो डॉक्टर जी, जैसे आप बता रहे हो कई सारी महिलाओं को ये समस्या है कि मान लीजिए एक बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में जो ढीलापन आ जाता है, तो उनका जो यूट्रस है वो भी जैसे पेशाब की जगह से यानी वजाइना से नीचे की तरफ उतरना शुरू होता है, और ये मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। तो क्या ऐसी महिलाओं को भी हम कहेंगे कि उनको तुरंत से जल्द डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि बहुत महिलाएं इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वेरी सेंसिटिव टॉपिक होता है और महिलाएं को नहीं पता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। ये वो एज के
0: हिसाब से, मतलब वो सोचती हैं कि उम्र है तो ये सब होता है,
1: exactly.
0: वो उनको लगता है ये सारा कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो ये उनको नजर exactly. उनको अनदेखा नहीं करना है ये। हाँ. तुरंत जैसे आप बता रहे हो कि बल्ज आउट होता है, लोअर अबडोमिन में आपको पेन रहता है, पेल्विक एरिया में आपको पेन, पेल्विक एरिया में बताते चलो हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो पेल्विक एरिया आपके दो जांघों के बीच की जगह है जिसे पेल्विक एरिया कहा जाता है, वहाँ पर महिलाओं को बहुत दर्द रहता है जिसके कारण ये एक पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है, और इसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल देर ना करें, आपको जल्द से जल्द एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर, क्या ये हॉर्मोन चेंजेस के वजह से भी हो सकता है?
1: हाँ, एक लिमिट है हार्मोन की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं, तो इसके वजह से ये मसल्स जो हैं पेल्विक फ्लोर के ढीले पड़ते हैं, तो इसी वजह से ये ढीलापन की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, अगर लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं वो अटेंशन नहीं पे करते हैं, तो आपको आपके बॉडी को लिसन ज़रूरी है।
0: तो डॉक्टर जी, क्या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाती है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सर पर वज़न ढोती हैं या फिर बहुत ज़्यादा वज़नदार काम करती हैं, बहुत वज़न उठाने वाला जो काम होता है वो करती हैं, तो ये उनके हेल्थ को कहीं ना कहीं असर करता है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की ओर, उनको मतलब हो सकता है कि लेट एज में यानी लेट 50s के बाद उनको ये होने की

0: समस्या हो सकती है।
1: हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका अर्ली प्रिकॉशन किसी तरह से लिया जा सके? क्योंकि मान लीजिए अगर एक महिला वज़न उठाने वाला काम करती है, तो क्या उसे कोई ऐसा भी दवाई या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में?
1: हाँ, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो फिर वो एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग होता है, योगा के पोजेस होते हैं जो हमें इंकल्केट करना चाहिए एवरी डे लाइफ में। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन हो जो इंट्रा एब्डोमेन के प्रेशर को बढ़ाते हैं, या फॉर एग्जांपल एक क्रॉनिक कंस्टिपेशन, तो इससे इस समस्या को
0: रोका जा सकता है। तो क्या डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है कि बार बार अगर किसी महिला को यूट्रस का इन्फेक्शन हो रहा है या सर्जरी करनी पड़ रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी सर्जरी या यूट्रस इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण भी ये पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है?
1: इन सम कंडीशंस यस, क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन होने पर, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर, वो जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं वो हाइपर फंक्शन करते हैं। तो इसीलिए ये इसके वजह से लीक्स होते हैं। तो ज़्यादातर ब्लैडर मसल्स और मोक एक्टिव, सो इसीलिए ये कंडीशन के वजह से पेल्विक फ्लो का एक जो कंपोनेंट होता है जो है ब्लड यूरिन लीक्स, सो ये हो सकता है।
0: और क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से? क्योंकि यहाँ पर आए दिन देखा गया है, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं और यहाँ पर जैसे ही बड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण उनको डायरिया जैसी एक समस्या रहती है। तो क्या ये भी पेल्विक डिसफंक्शन को आगे बढ़ा सकता है?
1: ये क्वाइट रेयर है, पर ये कंडीशन एग्जिस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं द ब्रेन गट एक्सिस। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस से आपका एब्डोमेन गर्डेड होता है, तो फिर टेंस्ड होता है, और ये रिपरकशन होता है पेल्विक फ्लो में। तो ये ज़्यादा गैस्ट्रिक, so if you don't treat the gastritis, it will surely affect the pelvic floor, but magar ye ek rare condition hai. Zyadatar hame dikhai nahi deta hai kyunki ये एक कॉमन चीज़ नहीं है।
0: तो क्या डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि पेल्विक फ्लो डिसफंक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उसको ध्यान ना दें, तो क्या ये आगे चलकर कोई बहुत बड़ी बीमारी दे सकता है? जैसे मतलब हम आजकल देखा गया है कि कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी तक जैसे रिसर्च चल रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन भी किसी और बीमारी को मतलब लिंक हो सकता है?
1: दूसरे थिंग जो होते हैं वो फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो फिर आपको कंट्रोल नहीं होता है फीसेस पास करने के लिए, सो एक कंडीशन दूसरा कंडीशन को लीड करता है। लेकिन क्योंकि यूट्रस बाहर होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, इससे इन्फेक्शंस होता है, और इन्फेक्शंस असेंडिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है जिस शरीर के इनसाइड जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए आप दूसरे प्रॉब्लम का
0: क्या ये सर्वाइकल कैंसर को लीड कर सकता है?
1: नॉट रियली, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का कोज है दूसरे वजह से, बट द सर्विक्स इज अफेक्टेड यस, बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड, सो इट हैज सम कंडीशंस दैट विल हैपन,
0: यानी उसको इन्फेक्शन लगने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर आज हमारे साथ डॉक्टर आशिका हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन पर हम बात कर रहे हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन को लगकर भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पेल्विक फंक्शन को लीड करती हैं। तो अगर किसी भी महिला को ये समस्या है, और बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में कई सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो भाग लेते हैं, और बिल्कुल एक घर में महिलाओं को जो होती हैं समस्याएं, उसके लिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर फैमिली मेंबर्स भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी एक समस्या जहाँ पर महिला खुलकर बात नहीं कर पाती, अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं पर बता नहीं सकती है, वहाँ पर पुरुष भी

उनकी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और जल्द से जल्द एक डॉक्टर को या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है, बेझिझक अपना नाम बिना बताए आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 402-8085 हमारा नंबर है। और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में इस वक्त हमें सहयोग मिल रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ है कादिया, साथ ही साथ उरुसा हमारे साथ बनी हुई है प्रोडक्शन असिस्टेंट, और हमारी प्रोड्यूसर है रत्नमाला मंगरू जी। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस और आप देख पा रहे हैं MBC के तीसरे चैनल पर भी। तो चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आज हम बात कर रहे हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऐसी समस्याओं का सामना आए दिन करती रहती हैं, और पेशाब लीक होना ये बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें संकेत मिलता है कि तुरंत हमें एक डॉक्टर की जांच की आवश्यकता है। चलिए, जब जांच की बात छेड़ ही दी है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, इसकी जाँच कैसे होती है, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर आशिका से, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। वो एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं और एक ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो डॉक्टर आशिका, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन जो है, इसकी जांच, इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है।
1: ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो जो महिला है जिसका वो इससे सफ़र कर रही है, वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गेट एग्जामिन, तो फर्स्ट थिंग उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन पेशेंट के द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री का प्रोलैप्स होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिग्री का प्रोलैप्स के द्वारा,
0: ना कितना असर है हुआ है, उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट को शुरू किया जाता है।
1: एग्जैक्टली, अगर माइल्ड होता है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर तो फिर सर्जरी का ज़रूरत होता है। और जब हम सर्जरी के बात करते हैं तो जब इस उम्र के महिलाओं को ज़्यादातर यूट्रस का ओगान जो होता है वो उसे रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ करते हैं एनीमोर, तो उसे अगर थर्ड डिग्री प्रोलैप्स होता है तो रिमूव करने से उस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है इसके बाद, तो वो महिला फिर से
0: नॉर्मल जीवन जी सकती है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो डॉक्टर जी, जैसे ट्रीटमेंट जब की जाती है उसका, सर्जरी किस लेवल पर आती है? मतलब बहुत ज़्यादा अगर केस मतलब ख़राब हो जाए, क्या एक बिना सर्जरी के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। सो वी हैव लाइक वी कॉल इट लाइक रिंग पेसरीज, जो एक रिंग होता है तो जो हम इंसर्ट करते हैं सो दैट इट जस्ट लिफ्ट्स अप द यूट्रस, तो ये इसके वजह से अगर महिला बेटर फील करता है, और हाँ, अगर महिला ज़्यादा ओल्ड एज है या उससे दूसरी बीमारी है, शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडीशन, सो ऑपरेशन करना मुश्किल है, तो ये कंसर्वेटिव मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट। सो इट्स ऑन ए केस टू केस। और अगर महिला बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम को झेल रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रॉप हो रहा है, तो वो उन महिलाओं के लिए सर्जरी इज़ द रेडिकल ट्रीटमेंट।
0: जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय से ये प्रॉब्लम झेली जा रही है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन कंडीशन ख़राब हो चुकी है, तब जाकर उसको सर्जरी के लिए ऑप्ट किया जाता है।
1: Exactly.
0: तो डॉक्टर जी, जैसे ये ट्रीटमेंट के दौरान जैसे आप बता रही हैं ये रिंग बिठाना, क्या ये पेनफुल होता है?
1: तो पेनफुल और अनकंफर्टेबल, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो डालेंगे शरीर के नीचे पार्ट में, बट ये ज़्यादा बेटर है रहने के लिए रादर दैन लिविंग विद द बल्ज। सो ये एक
0: क्या ये परमानेंटली रहता है, यानी ये परमानेंटली बिठाना पड़ता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है?
1: ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, क्योंकि चेंज करना पड़ता है थ्री वीकली, फोर वीकली, और महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्टेड नहीं हो, तो ये एक तरीका होता है।

0: और ऑल्सो दूसरे तरीके होते हैं, वो इंजेक्शंस होते हैं जो हम डायरेक्टली मसल्स के सुब्लाडर मसल्स के स्ट्रेट डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं और जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो मसल्स हाइपर फंक्शन करते हैं तो इसीलिए ये लीक्स होते हैं. तो हम केमिकल्स लाइक लाइक इंजेक्शंस देते हैं स्ट्रेट इन द ब्लडर मसल सो दैट ये प्रॉब्लम लाइक
1: क्या ये टाइटन करता है मसल्स को?
0: नो नॉट रियली. सो बेसिकली इट्स जस्ट टू रिलैक्स, क्योंकि मसल्स हाइपर फंक्शन होते हैं तो इसीलिए वो जो लीक्स होते हैं तो ये काम करते हैं लाइक टू काउंटर द इफेक्ट.
1: ओके, तो मान लीजिए अगर कोई महिला 35 या 40 की एज की है और वर्किंग लेडी है, तो क्या उसके नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी सकती है ये ट्रीटमेंट के बाद, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी?
0: नॉर्मल जैसे कि था पहले मे बी नो, बट स्टिल इट विल इम्प्रूव. एंड क्योंकि कुछ औरतें हमेशा एक पैंटी लाइनर पहनना चाहिए,
1: हाँ,
0: क्योंकि वो लीक्स होते हैं, तो एटलीस्ट दे विल दे, ये जरूरी नहीं है.
1: और अगर मान लीजिए किसी 35 40 इयर्स की जो लेडी है, वो उनको पेल्विक डिसफंक्शन हुआ है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, उन्होंने ये ट्रीटमेंट करा लिया है और अब वो फ्यूचर प्लान में, मतलब उनको बेबी प्लान करना है अगर दोबारा से उनको, या मे बी वो उनके एक या बेबी एक बेबी है या दो बेबी है, उनको और एक बेबी प्लान करना है, तो क्या उनको आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान?
0: अगर सिर्फ ब्लैडर का प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो डिलीवरी का मोड ऑफ डिलीवरी चेंज होता है उसको एब्सोल्युटली शी विल गो फॉर ए सी सेक्शन, नॉट नॉर्मल डिलीवरी.
1: और जिन्होंने मतलब ये जो ट्रीटमेंट आप जिस तरह से समझा रही हैं कि ये रिंग बिठाया गया है, क्या उनको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी सकती हैं, या एक जैसे कहते हैं ना कि उनको अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी?
0: समस्या हो सकती है क्योंकि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर वो जो महिलाएँ ये पहनते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं.
1: ओके, मतलब वो थोड़ा एक कम हो जाता है उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है इसको लेकर. तो जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे महिलाओं को जब ये समस्या होती है तो व्यायाम के दौरान भी इसको टाइटन किया जा सकता है, ये एक प्री प्रिकॉशन, जैसे आप कहते हैं कि समस्या ना हो इसके लिए, तो जैसे इस पर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि एक्सरसाइज करना, क्या ये एक डेली रूटीन में शामिल करना आवश्यक हो जाता है ताकि कोई महिला को आगे चलकर पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन जैसी समस्या ना हो?
0: हाँ, तो एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पहले तरीके हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए. तो हम वो जो महिला जिनके ज़रूरत है हम उसे फिजियोथेरापिस्ट के यहाँ भेजते हैं, सो दैट दे नो हाउ टू डू व्हाट वी कॉल द कीगल्स एक्सरसाइजेस, कीगल फोर्स एक्सरसाइजेस. सो ये पेल्विक फ्लोर के मसल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, तो दिन में बार बार करना चाहिए. और फिर जो लाइक ए प्रिवेंशन, अगर आपका प्रॉब्लम लाइक अगर आपको आप विश चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तो योगा एंड स्ट्रेचिंग, योगा देर आर डिफरेंट पोजेस दैट विल
1: वो थोड़ा हेल्प करता है उनको टाइटन करने के लिए. उनके जो मसल्स हैं एक्सटर्नल मसल्स के साथ इंटरनल मसल्स को टाइटन किया जाता है व्यायाम के साथ. और बिल्कुल एक सर्टिफाइड या एक जो आपके पास जो भी इंस्ट्रक्टर हैं आप उनके पास जाए, जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे आप मदद लें, उनसे आप गाइडेंस लें. और जैसे डॉक्टर जी बता रही हैं कि बिल्कुल फिजियोथेरापिस्ट के पास भी आप जाकर बहुत सारी ऐसी गाइडेंस ले सकते हैं जिसके द्वारा वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे कि आपके जो अंदरूनी मसल्स हैं वो भी टाइटन रहें. क्योंकि जैसे हमारा शरीर, बाह्य शरीर जो है, एक्सटर्नल बॉडी जो है, एक समय के साथ ढीला होने लगता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर का शरीर भी ढीला होता है, लेकिन उसे व्यायाम के साथ हम ज़रूर ऑनगोइंग रख सकते हैं, टाइटन रख सकते हैं. बिल्कुल इसी के साथ लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में. अगर कोई सवाल है तो बेझिझक आप हमारे इस कॉल इस शो में कॉल

0: आज की चर्चा।
1: चलिए गीत को यहाँ रोकते हैं। यहाँ पर हमारे एक श्रोता हैं जो आ पहुंचे हैं एक सवाल को लेकर। आइए सुनते हैं क्या सवाल है उनके पास। हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते, मैं इसी बारे में आपसे बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: समस्या से
1: बिल्कुल।
2: ये मैं ये कुछ कम थी, ये 2 साल तक
1: हाँ
2: ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये जब थोड़ा बहुत बीमार हो जाती हूँ तो इफेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं 300 तक।
1: हाँ
2: लेकिन ये हॉस्पिटल्स ये देख रहे हैं और ये समस्या है कि जब वो ये कहते हैं ये यूरिन का प्रॉब्लम होता है
1: जी,
2: तो जब ये मेरा ये जब ट्रीटमेंट आ रहे हैं डॉक्टर के बारे में
1: जी,
2: तो वहाँ जब एग्जामिनिंग करते हैं तो उसे नहीं दिखता है।
1: अच्छा हाँ,
2: ये यूरिन थोड़ा रह जाता है और थोड़ा निकलता है तो इसी तरह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है।
1: ओके,
2: तो इसी भी बारे में आपसे बात कर रही हूँ। ये रिंग का भी मैंने इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। और ये कहते हैं ओटोरिस लावेसी और ये कैसे कहते हैं लकास बाबा भी उतर रहे हैं ये दोनों
1: जी।
2: जब ये जब ज्यादा होता है तब लौटता है, नहीं तो नहीं।
1: ओके बहन जी, मैं जान सकती हूँ आपकी उम्र कितनी है?
2: 54।
1: आइए जानते हैं डॉक्टर आशिका, इन्होंने ये दोनों ट्राई कर चुका है, उन्होंने ट्रीटमेंट ली है, उन्होंने रिंग भी बिठाया है और उनका यूट्रस जो है वो लगातार नीचे उतर रहा है, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगी?
3: मैं समझती हूँ, तो नमस्ते मैडम, तो मैं समझती हूँ कि ये प्रॉब्लम उनके फॉलोअप हैं, तो डॉक्टर भी एग्जामिन कर रहे हैं और उसे लाइक कैसे तो
1: हाँ हाँ बताइए उनको उनको आप बताइए, मैं अगर अगर इंग्लिश में आप बता सकते हैं तो। हाँ
3: तो मैंने समझा नहीं क्या प्रॉब्लम
1: उनको, उन्होंने रिंग भी बिठाई है उनको। यूरिनस का जैसे यूरिन जब निकलता है बार बार तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है।

0: है और उनका यूट्रस भी नीचे उतर रहा है। हालांकि उन्होंने ये जो रिंग बिठाने की जो प्रतिक्रिया है आपने बताई, ट्रीटमेंट है, वो भी उन्होंने की है, लेकिन हर बार वो फॉलोअप करते रहते हैं, हर बार वो जाते हैं अपना। हाँ,
1: तो मेरे ये सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी के लिए कैंडिडेट हो, क्योंकि रिंग के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं
0: हो पा रहा है।
1: अच्छा। और ज़्यादातर इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद then surgery is the
0: last option। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको अब सर्जरी करवाना ही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है, क्योंकि अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सर्जरी के द्वारा ही फाइनल मतलब ट्रीट किया जाए।
1: हाँ, और डिग्री के डिपेंडिंग, तो डिपेंड्स ऑन
0: कितना इन्फेक्शन, कितना परसेंटेज इन्फेक्शन फैल चुका है, मतलब
1: नो द प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस।
0: ओके, मतलब कितना प्रोलैप्स हुआ है इस पर निर्भर करता है। और बेशक अगर आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहे तो आप प्रोग्राम के बाद हमसे फिर संपर्क कीजिए, हम आपको डॉक्टर का नंबर दे सकते हैं जिसके द्वारा आप डॉक्टर को डायरेक्टली कॉल करके आप अपना प्लान कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से एक बार आप दिखाना चाहें तो। तो जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर आशिका सालिक जुड़ी हुई हैं, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और साथ ही साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे। तो डॉक्टर जी, जाते जाते ये जो कह सकते हैं कि कई बार हम कहते हैं ना कि पेशाब लीक होना ये बुढ़ापे की निशानी है, और आज का ये कार्यक्रम हमने इसी पर आधारित रखा, तो आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: तो ये बुढ़ापे की निशानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मिडिल एज के औरतें को होता है, नॉट ओनली द एल्डर एज। और एज इज़ जस्ट ए नंबर। तो एक बहुत सो एक 50 साल की व्यक्ति है जो शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, और ये वो सब एक्सेट्रा दीज प्रॉब्लम्स। और एक 25 साल के व्यक्ति हैं जो फिट एंड हेल्दी हैं, जिसके
0: पर उनको भी ये समस्या है।
1: नहीं, वो सो दिस इज़ लाइक द एज फैक्टर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। और ऑल्सो ये प्रॉब्लम बढ़ती उम्र से के द्वारा होता है ज़रूर, लेकिन ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं हो।
0: बिल्कुल, जैसे हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हमारी जीवन शैली को ध्यान रखना है, हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे डाइट का ख्याल रखना है, व्यायाम करना है, और साथ ही साथ अगर ये समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ना कि वेट करें कि समस्या और भी ख़राब हो जाए या फिर हाथ से निकलने लगे, तब जाकर आप जाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेनफुल हो सकता है। तो थी आज का ये प्रोग्राम पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन पर आधारित। आज हमारे साथ डॉक्टर आशिका जुड़ी और कादिया जी हमारे साथ टेक्निक पर रहे, प्रोडक्शन असिस्टेंट रही उरूसा, और साथ ही साथ हमारे साथ रत्नमाला मंगरू जी जुड़ी रही इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए। और जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, आपने सुना और समझा और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपको। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम उपस्थित रहेंगे, भूलिएगा नहीं। इस कार्यक्रम को दोबारा आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और इसी के साथ एक शुभ दिन की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: 10 a.m. चलिए विकी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ करुणा जी. नमस्कार आपको.
2: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार. सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन चर्चित मामलों में डीपीपी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. इनमें रिवॉर्ड मनी मामला शामिल है, जिसमें पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लीलराम दियाल संलग्न है. इस तक पहुंची मामला में, जिसमें पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिन के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जा रहा है. और तीसरा मामला इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ केन पुनुसामी के खिलाफ हैं, जिन पर कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त करने का आरोप है. डीपीपी का मानना है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषी सिद्धि की उचित संभावना मौजूद है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नज़रें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी है, जो फिलहाल 4.75% है. मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखोनी के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है. लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है. बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया है. खगोल की बात करें तो आज 12 अगस्त 2026 को वर्ष का एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और दिन के समय कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाएगा. लेकिन मॉरिशस और रोड्रिग्स में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. स्थानीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 7:34 से रात 11:59 तक होगा. ये पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, जिसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के कुछ क्षेत्र शामिल हैं. एशिया में लगातार तूफानों का कहर देखा जा रहा है. चीन, जापान और फिलीपींस लगातार तीन तूफानों की चपेट में रहे हैं. डॉल्फिन, चानहोम और पेलू ने क्षेत्र में एक साथ दस्तक दी है. चीन में डॉल्फिन तूफान का असर जारी है. कमजोर होकर आगे बढ़ रहा ये तूफान आज बीजिंग में मूसलाधार बारिश ला सकता है. वहीं जापान में ट्रॉपिकल स्टॉर्म चानहोम का कहर है. टोक्यो समेत कांटो क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद तूफान कमजोर पड़ा है. फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से कम 26 लोगों की मौत हुई है. मानसून और लगातार आए तूफानों ने वहां मुश्किलें बढ़ाई हैं. प्रशांत महासागर में ट्रॉपिकल तूफान पेलू आगे बढ़ रहा है. फिलीपींस के पूर्वी तट से दूर

0: होकर एशिया से दूर जा रहा है। वहीं जापान के दक्षिण में नया तूफान नांका बना है, इसके उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। नंबर 9 गुटबासें काठरबोन में 70 साल के 70-year-old श्री असन देव रानू, जो देव से जाने जाते थे और पहले सैडल कॉलेज के प्रोफेसर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल और दौत एलियनसन्स गुटवायाल बोबासें से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाएं ओही बल्कि सैंपियर बॉम्बू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। आवेनी कनारी गुडलैंड में 46 साल के 46-year-old जनाब अहमद फयाज हाईसू जो फयाज से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेगम अमीरा हाईसू के मकान अविनिका नागी गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टू डेथ 1:30 PM। अविनी क्रेसखेल मोचिदा में 76 साल की 76-year-old रोशनारा बीबी कोडाबुकस पैदाइश नाम इलाही जो फाजिला से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2:00 बजे इनके बेटे परवेज कोडाबुकस के मकान अवेनी खेसखेल मोचिदा से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कोडेमास्का का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे 2:00 PM। और सोहन लेन ग्राउंड पॉइंट पीमो में 81 साल के 81-year-old श्री दुर्गा प्रसाद नौबत सिंह जो दुर्गा से जाने जाते थे और पहले सोलिट्यूड शुगर स्टेट में सियाडा काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 बजे के मकान सोहन लेन ग्राउंड पॉइंट पीमो से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉइंट बीच की स्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डे 2:00 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: बुधवार 12 अगस्त घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:07 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुन लीजिए। फोबाच रोड यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहक फोबाच रोड गामा सिविक स्क्वेयर डील CWA फोबाच यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 12 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से ही यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और ये जो कटौती है चलेगी दोपहर के 3:30 बजे तक ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से। और साथ ही कौशालो यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर भी आज बुधवार 12 अगस्त को सुबह के 9:30 बजे से ही यहां पर जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और कार्य संपन्न होते ही दोपहर के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो इन सभी जगहों पर जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ जरूरी विज्ञप्तियां CEB की ओर से।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: बुधवार 12 अगस्त घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:09 रेडियो मॉरिशस पर भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम

लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। और चलिए आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम ज्ञान चक्र, और साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी। श्रोताओं, कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, अगर समस्या देते हैं तो वही ईश्वर हमें समस्या का समाधान भी देते हैं। ईश्वर जीवन में हमें जो भी कुछ देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अकारण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है हमें विश्वास रखना चाहिए कि अच्छाई के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। तो चलिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

0: कार्यक्रम की ओर ज्ञान चक्र। और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में, और कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सकलानी जी। तो आइए उनको हम सुनते हैं।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ज्ञान चक्र के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव के तत्व को और किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उसके विषय में, और ऋषियों ने कहा है कि पहले सद्गुरु को पा करके भक्तिभाव से युक्त होकर के शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि जो मल हैं वो शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार और युक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिवस्वरूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र भगवान शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वो जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। श्रोताओं, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तुओं को पाकर के हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर के क्रोध या शोक नहीं करता, तथा सुख और दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वो ज्ञानवान कहलाता है। शुभम लब्ध्वा न हृष्येत, कुप्ये लब्ध्वा वशुभम नहीं, द्वंद्वेषु समता तस्य ज्ञानवान अनुचत्ते हि सः। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपने और अपनी जो है और पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग करके अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। श्रोताओं, प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग होता है, और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार हैं उसे सदा भगवान शिव का ही भजन करते रहना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर के भगवान शिव का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर के जीव इस संसार बंधन से छूट जाता है। आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिराभिस्ततम् हरिचराचर रूपमेतत् सर्वांतरात्मनिलय प्रतिरूप रूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोष्टमूर्ते इत्यष्टमूर्तिभिरिभाभिरबन्ध बंधु युक्तः करो सिखलु विश्वजनीन मूर्ते एतत्ततम सुविततम प्रणतपे प्रणीत सर्वार्थ स्वार्थ परमार्थ ततो नमस्मि। ऐसे भगवान शंकर जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, शरणागत वत्सल और भक्त वत्सलांतरु, और ऐसे बट

0: वृक्ष ही ठहरे हैं, ऐसे भगवान शिव की आप श्रावण मास में उपासना कर रहे हैं, भगवान शिव आपका कल्याण करे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

श्रोताओं, यहाँ पर अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम में अब समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम विनय अंजलि की ओर, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति।

0: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। यह कार्यक्रम सेवा में प्रस्तुत है, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं एक बहुत मधुर गान से, आप रसास्वादन करें।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद अब आप संदेश सुनेंगे। संदेश प्रस्तुत करने के उपस्थित हैं श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला सिरतन जी। हम उनका अभिवादन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आज किसी एक मंत्र का पाठ करें और उस पर अपने विचार दें। पंडिता प्रेमिला सिरतन जी।
1: ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ब्रह्म

चले आनंद लोक महान। वेद ज्ञान के हित कहूँ सरस वचन अति श्रेष्ठ। वेद ज्ञान सब ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ और ज्येष्ठ। सम्माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं, हम अपने सुख के लिए ब्रह्म ज्ञानी बनने की कामना भगवान से करते हैं। ब्रह्मचर्य बनकर महान आत्मा जैसे वेद को जानने वाले बनना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर वेद की सुंदर वाणी के लिए तप कर दीक्षा पाते हैं। ईश्वर की ज्ञाता बनकर वेद की आध्यात्मिक शिक्षा से नियमानुसार चरित्र निर्माण कर संपन्न और सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए वेद भगवान से हमारी पुकार है कि अपनी वाणी से हमें महान आनंद लोक में ले चलने की कृपा कीजिए, जहां हमारे आत्मबल के संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को निखार सकें, मेरी भुजाएं मझधारों को तार सकें, जीवन में तूफानों से लड़ सकें, ताप संपीड़न से छुड़ा सकें, अपने पुरुषार्थ से सही दिशा तय कर सकें, रेत में तपता जल की मिठास मिल सके। हे प्रभु, कांटों से लड़ सकने की महत्ता की चाह है, जिसका पुरुषार्थ गुप्त रहे और आदर्श युक्त रहे। श्रोताओं, हम जीवित रहकर श्रम से सही जीवन तो जी सकें। ज्ञान पाना हमारा काम है। ज्ञान को न जल, न वायु, न मृत्यु, न आयु मिटा सकता। सदा वे ज्ञान उन्हीं से निकलता और अंत में उन्हीं में समा जाता है, जिसमें परमात्मा शांत आवाज का अति श्रेष्ठतम वचन है, जो सबका हित करता, जिसमें सुखों का साज है, जो ब्रह्मचर्य जीवन का सहज पुरुषार्थ है, जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ और सर्वोत्तम है, जैसे सरती अति जो संसार में नदी की तरह सरसाती है, जैसे यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। सर्वोत्पादक प्रभु से ब्रह्म ज्ञानी सुख के लिए वेदेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जगदीश्वर से नियम और व्रत के तप से दीक्षा पाने की कामना करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करने के लिए धारणावती बुद्धि मेधा के लिए हमारी विनय है, जिससे सभी संपन्न समृद्ध तो रहें और चारों ओर से सुख तो प्राप्त कर सकें। वेद की वाणी ब्रह्म ज्ञानी ही सरसाते और तालाब की तरह एक मर्यादित स्थान पर स्थिर कर रखते हैं, क्योंकि शैशव अवस्था से युवा, गृहस्थ, कार्य धंधे, नौकरी, वानप्रस्थी, वृद्धावस्था तक हमें सत्य ज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता, जिससे सभी का हित सुख, व्यवहारिक मर्यादा, शांति के लिए तप कर दीक्षा पाते और मानवता के उच्च पद पाने के लिए सभी अवस्था में ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए तपस्या करते, अनादि अविश्वासी ज्ञान के प्रचार प्रसार करते, स्वयं को समायोजित कर महावीर एवं महारथी बन यज्ञ से आनंद को महान बनाते, सर्वजन हिताय महान आनंद लोक में वेद मंत्र द्वारा जाने के लिए प्रभु से याचना करते कि हे प्रभु, ब्रह्म तप की दीक्षा

नियम व्रत की शिक्षा से हम अपने व्यवहार, इंद्रियों, विचार, आचार, आहार पर नियंत्रण कर सकें। मर्यादा पालन कर नियमों का उल्लंघन न करें। अनुशासित ब्रह्मचारी जैसे अग्नि की ताप से तप कर आनंद तो पा सकें। हम मंत्र के दिव्य ब्रह्म ज्ञान के सुख के वरदान की याचना करते हैं। इसलिए दुनियादारी, दुकानदारी और हेरा फेरी की दलदल से बचे रहना चाहते। आपके कृपा से वेद के सत्य मार्ग पर तपते हुए ब्रह्मानंद के दिव्य ज्ञान से भरपूर रहना चाहते, जो सत्य हितकारी कर्म के संकल्प का अति महान कर्तव्य योग युक्त होकर संपन्न तो कर सकें। योगी अच्छे बुरे प्रभाव से परे रहते। हमें तो ब्रह्मानंद सर्वप्रिय है, तो हमें संतुष्ट रखता, मान अपमान के प्रभाव से बचाता। हार जीत, सफलता असफलता, मानसिक शक्ति हमें दिशाहीन न कर भटकने से बचाता। यह वरदान वेद माता का है, जो हमें अपने साथ देकर आनंद लोक में पहुंचाती है। इसलिए हम ब्रह्मविदों से लाभ उठाते कि जो वेदवाणी की इच्छा अनुसार होता, वही जिसे हम शांत संतुलित जीवन जी सकें। परमात्मा चिंतन कर हर आत्मा अपना रास्ता तय करे। जैसे ब्रह्म माँ तत्र नयतु ब्रह्म दधातु में, हे ब्रह्म हमें वहाँ ले चलिए जहाँ वेद के अतिश्रेष्ठ उत्तम सर्वोच्च वचन से सबका हित हो सकें, जिसे विघ्न समस्या परिस्थिति से हम पार पा सकें, जहाँ शिकायत की गुंजाइश न होवे, हमें सभी निर्दोष दिखाई दे, सभी को परम आनंद प्राप्त होवे। आपके चिंतन में ब्रह्मवीत ब्रह्म की ओर ब्रह्म ज्ञान के लिए ले जाने की कृपा चाहते हैं। स्वार्थ इच्छा कामना त्याग कर अलौकिकता से भरपूर करे, वही तो वेदवाणी है। परमात्मा की शिक्षा सभी के लिए कल्याणकारी है। हमें कर्ता एवं दृष्टा दोनों बनना है। वेद की विद्या एवं समय की जिम्मेदारी निभाते हुए निमित भाव से कार्य करते रहना है। आप अपना कर्तव्य वेद वचन के ज्ञान हित और श्रेष्ठता से पूर्ण करते हैं। उमंग उत्साह से भरा अलौकिक जीवन आनंद से भरा रहता, जिससे मुख पर सफलता का गर्व होता, आँखों में अद्भुत खुमारी होती, मस्तक पर दिव्यता का तेज होता, व्यवहार में सरलता, जीवन आशीर्वाद के वरदान से भरपूर मुस्कुराता चेहरा होता। इसलिए अंत में ब्रह्मणे स्वाहा कहा गया कि हे मनुष्य, सुआहा स्वर्गिक सुख पाने के लिए ब्रह्मज्ञानी बन। वेद मार्ग का कौन सा धन है जो देने से न घटता, देने से बढ़ता है? वह धन की अपनी विशेषता अवश्य होती, गुणों की, शक्तियों का, श्रेष्ठम संकल्पों का, वेद विद्या के ज्ञान युक्त वाणी का धन है, जिससे हम जितना बांटते उतने बढ़ते। इसलिए सुंदर वाणी ही स्वाहा है, जो हमें समृद्ध और संपन्न तो करती है। ब्रह्म ज्ञान ही सब ज्ञानों में उत्तम, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, जिससे हम अपने धर्म को पहचानते हैं, कर्म को शिक्षक, आचरण को उपदेश, बोल का सभी का सहयोग बनाते, जो हमें प्राप्त हैं औरों को बांटते हैं, परोपकार के लिए स्वार्थ रहित आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए हृदय की विशालता की कृपा चाहते। श्रोताओं, परोपकार की भावना से सत्य ब्रह्म ज्ञान से संतुष्ट कर सकते हैं। वैदिक ब्रह्मवाणी की भलाई से किसी की बुराई न होकर सुख मिलते हैं। श्रेष्ठ कर्म भाग्य स्वरूप सामने आकर अपार समृद्धि उपलब्ध करवाते हैं। वेदवाणी के सदुपयोग से अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती रहती हैं। देने वाले ही देव बनते, जो जीवन को सार्थक अनुभव कर परोपकार के सद्गुण धारण कराते हैं, जो हमारे लिए सच्चा धर्म, संकल्पित व्रत, सर्वोच्च विचार, दिव्य वाणी होती, जो जीवन का सार होता,
श्रोताओं, सत्य प्रिय वाणी हमारे लिए काम धेनु है, जिससे मनोरथ पूर्ण होते

कीर्ति देकर दुष्कृत बुराई नाश करती है। इस समुन्नत वाणी में संस्कार भरा है जो शांति प्रदान करती, जिसके अति श्रेष्ठ वचन में उत्तम श्रेष्ठ ज्येष्ठ ज्ञान भरा है, जो मधुर पवित्र कल्याण हित कर लक्ष्मी का वास कराती, जिसको प्यार दुलार संस्कार से ऊंचा भाग्य बनता, प्रभु प्रीत जुड़ा रहता।

0: शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, अभी आपने पंडिता प्रेमिला श्रीतन जी को सुना। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। अंत में आप एक और भजन सुनेंगे। जाते जाते हम धन्यवाद करते हैं श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी को। टेक्नीशियन के रूप में उन्होंने सहायता की और आपने सुना। आभार। फिर मिलेंगे। नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और श्रोताओं, धन्यवाद की बात करें, एक कृतज्ञ हृदय की बात करें, तो जीवन में ये होना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभार जीवन में हम अपना ध्यान उन बातों पर या उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो हमें जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ है, और जीवन भर हम जो है अफसोस करते रहते हैं, अपने आप को भला बुरा कहते रहते हैं, या जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें उन बातों पर भी जो है ध्यान देना चाहिए जो हमें जीवन में प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा के कारण, हमारे माता पिता के परिश्रम के कारण, हमारे अपनों के जो है कारण। कभी कभार हम सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिला है, लेकिन जो हमें मिला है वो भी अपने आप में कुछ कम नहीं है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी मेबक के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। मेबक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई दे ला बुलोंजरी, रुई दे मोरिस बाजो, रुई दे लापास, रुई दे अग्रित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 13 अगस्त को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही बेलतिया के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, बेलतिया के खासकर गांधी रोड, नेहरू रोड, एसएसआर रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 12 अगस्त को दोपहर के एक बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही कौंजियाप के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, कौंजियाप के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसलमा सवाना, मौसलमा ENL, NHDC, सिटे सियाशा, शापेल रोड, शिवाला रोड, मॉस्क रोड, करामत रोड, रॉयल रोड, कौंजियाप, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 13 अगस्त को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।

तो श्रोताओं, भक्तिधारा इस कार्यक्रम का जो है समापन करते हैं इस आरती के साथ, और फिर 11 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपके साथ करुणा जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन आजकल मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और गहरा करने के भारत के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अपनी यात्रा के दौरान एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन मॉरिशस सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण तथा सैन्य सहयोग सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने मंगलवार को पोर्टवी में अपनी पहली बैठक लगाई, जिसमें कार्य नीति और उन विषयों पर चर्चा की गई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराना शामिल है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता, सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग सोच है। विदेश में जिम्बाब्वे के लेक करिबा में एक यात्री नौका के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक 77 लोगों को बचा लिया गया जिन्होंने झील के एक छोटे से द्वीप पर शरण ली। बचाव और तलाश अभियान जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन उस पर कम से कम 119 लोग सवार थी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। एडिसिलिन कुंगुमा में 60 साल के 60-year-old श्री सत्यानंद गोकुल, जो विद्यानंद से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे यानी कि इसी समय उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती गोकुल के मकान एडिसिलिन कुंगुमा से उठाई जा रही है और दाह संस्कार के लिए बुआ मौसों की स्मशान भूमि ले जाई जा रही है। नंबर 113 सितिला ख्रिमो सैपिया में 73 साल की 73-year-old श्री एलाना अपाडू जो दास से जाने जाती थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे इनके मकान नंबर 113 सितिला ख्रिमो सैपिया से उठाकर दास संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टान सैपिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM।

0: Bahanuline Notre Dame mein unahattar saal ki 69 year old श्री लिखराज हरबंस जो रमेश से जाने जाती थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विंती हरबंस के मकान भानुलेन नोत्रडाम से उठाकर दाह संस्कार के लिए नोत्रडाम की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। और अविनिका नागी गुडलैंड में 46 साल के 46 year old जनाब अहमद फयाज हरसू जो फयाज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेगम अमीरा हरसू के मकान अविनिका नागी गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाएगा। फिनरल टुडे 2:30 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शम्मे फरोजा

आलम-ए-शौक में रक्सां मेरा पर होता, काश मैं गुंबद-ए-खज़रा का कबूतर होता। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़्ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल अहज़ाब की तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी बांदियां जो अल्लाह ने तुमको कुफार से बतौर माल गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे, यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और बांदियों के

बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है। यह इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मोमिनों, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो।

जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें तो उन्होंने बोहतान का और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा है।

अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन, वो भी फिटकारे हुए, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है, और तुम अल्लाह की आदत में तगय्युर और तबद्दुल न पाओगे।

जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे काश हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते, और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर।

मोमिनो, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया, तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे।

मोमिनो अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा।

0: हमने बारे अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और इंसान ने उसको उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम बड़ा जाहिल है। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल अहज़ाब की तिलावत। पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब्बुल आलमीन की ज़ात आली शान है। ये किताबें

बेन कयामत तक आने वालों के लिए जरिया हिदायत और राह निजात है। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए।

मोहतरम सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:29 हो चुके हैं। बुध का दिन है, अगस्त के 12 तारीख है और इस्लामी साल के

0: दूसरे महीने माह सफ़र की आज 28 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। अब आप समाअत फरमाएंगे हर बुध की तरह ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन वल आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले तेरा खाएं तेरे ग़ुलामों से उलझें है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अज़ीम है कि हमारे ऊपर रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद जलवगर हो चुका है और पूरी शान व शौकत के साथ रबीउन नूर शरीफ हमारे ऊपर साया फिगन है और पूरी आबोताब के साथ हमें आपको मुनव्वर व मुजल्ला कर रहा है। आके करीम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम दाई मनाबदा जिनकी तशरीफ़ आवरी से कायनात को मुनव्वर किया गया और जिनकी तख्लीक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को जिनकी तख्लीक की बुनियाद पर और जिनकी वजह से सारी कायनात को सजाया। वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम की तख्लीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादत हुजूर की बेसत मुबारका ये ऐसे पहलू और ऐसे उनवानात हैं और कायनात का ऐसा उनवान है कि जितना आदमी चाहे बोले बोलता जाए लेकिन ये उनवान का इख्तिताम नहीं होता है इसलिए कि इसी उनवान से सारे उनवान फूटते हैं और इसी रौनक से सारी रौनकें हैं और इसी चमन से सारी बहारें हैं और इसी कायनात में इस हस्ती की जलवागरी से तमाम रानाइयाँ और तमाम बरकत और समरात और तमाम चीज़ें जो चमन महक रहे हैं और जो गुंचे चटक रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं और जो ये आबशार के नगमे हैं ये चांद की चांदनियां हैं ये सूरज की रोशनियां हैं ये दिन के उजाले हैं रात के अंधेरे हैं ये गर्दिशो लैलो नहार है ये इंसान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं ये खुशियां ये सारी चीज़ें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की तख्लीक और हुजूर की बेसत की बुनियाद पर हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व

खुदावंदी में अर्ज किया, बारी ताला ये कौन सी जात है कि जो तेरे नाम के साथ, जिसका नाम कुनिंदा है अर्श के पायों पर, और मैंने सारी कायनात को देखा तो हर जगह इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मुबारक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहि सलाम को जन्नत से निकाले जाने के बाद जब उनकी तौबा कबूल फरमाई, फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैह, और जिन्होंने अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु व तस्लीम के नाम मुबारक का वसीला

बारगाह में तोबा की और इस्तिगासा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने तुम्हारी खता को माफ़ कर दिया है। قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। जब ये उनको पैगाम और मुजदा मिला और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ी फरमा दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहु अम्मा नवालू ने इरशाद फरमाया, तुमने मेरे महबूब का वसीला दिया है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सबसे ज़्यादा अजीम तर मेरी बारगाह में है, सबसे ज़्यादा महबूब है? तो अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारी ताला जब तूने जन्नत में मेरे जिस्म में रूह को डाला और मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा तो अर्शे इलाही के पायों पर इसी मोहम्मद का नाम था। जब तूने मेरे लिए आसमान के दरवाजे खोले तो मैंने कोई जगह आसमान पर ऐसी नहीं पाई जहां इनका नाम मौजूद ना था। मैंने फिर उसके बाद लोह को देखा, वहां भी इनका नाम था। मैंने कुर्सी को देखा, वहां भी इनका नाम था। मैंने जन्नत को देखा, उसमें भी इनका नाम था। मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, वहां भी हर पत्ते पर इनका नाम था। मैंने जन्नत के दरियाओं को देखा और उसमें बने हुए कटोरों को देखा, उस पर भी इसका नाम था। मैंने जन्नत के महलात के दरवाजों को देखा, हर दरवाजे पर इन्हीं का नाम था। मैंने उसके अंदर पर्दों को देखा, उन पर्दों पर भी इन्हीं का नाम था। मैंने फरिश्तों की पेशानियों को देखा, उनकी पेशानियों पर इनका नाम था। मैंने हूर गिलमान की आंखों को देखा, उनकी आंखों की पुतलियों पर इन्हीं का नाम था। तो मैं समझ गया कि जिसका नाम तेरे नाम के बाद में है तो सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अली सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब आता, हाँ आदम, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अगर ये ना होते तो मैं ना जन्नत को पैदा करता, ना दोजख को पैदा करता, ना मैं फरिश्तों को पैदा करता, ना जिब्राइल और मीकाईल और इस्फील को पैदा करता, ना मैं अरशो कुर्सी को पैदा करता, ना मैं तुम्हें पैदा करता। ये सारी चीजें जो मैंने पैदा की हैं अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पैदा फरमाई हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसाबी वबारक वसल्लम, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से और वह उनके मुंतकिल हुआ हज़रत महव्वा तक पहुँचा, उसके बाद हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम तक, उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता चलता चलता हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ हज़रत हाजरा तक पहुँचा, और उनसे मुंतकिल होकर के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चलता रहा और चलते चलते हजरत अदनान तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? हजरत अदनान तक, और उनसे जब ये आगे बढ़ा तो मात तक पहुंचा, और उनसे जब ये आगे बढ़ा तो नजार तक पहुंचा, और उनसे जब ये आगे बढ़ा तो मुदिर तक पहुंचा, उनसे जब ये आगे बढ़ा तो इलियास तक पहुंचा, और उनसे आगे बढ़ा तो मुदरिता तक पहुंचा, उनसे आगे बढ़ा तो खुजैमा तक पहुंचा, उनसे आगे बढ़ा तो किनाना तक पहुंचा, उनसे जब ये आगे बढ़ा तो नदर तक पहुंचा, उनसे जब ये नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ा तो मालिक तक पहुंचा, और उनसे जब ये नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ा तो फहर तक पहुंचा, और जब उनसे ये नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ा तो गालिब तक पहुंचा, उनसे जब ये नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ा तो लुई तक पहुंचा, और उनसे ये नूर मुस्तफ़ा जब आगे बढ़ा तो काब तक पहुँचा, फिर मुर्रा तक पहुँचा, उनसे आगे बढ़ा तो किलाब तक पहुँचा, उनसे आगे बढ़ा तो कुस्सा तक पहुँचा, उनसे आगे बढ़ा तो अब्दे मनाफ तक पहुँचा, हाशिम तक पहुँचा, और उनसे आगे बढ़ा तो अब्दुलमुतलिब तक पहुँचा, और फिर अब्दुलमुतलिब से हज़रत अब्दुल्ला तक पहुंचा, और अब्दुल्ला से आमिना के पेट में आया, और आमिना के पेट से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में अपना नसब जो बयान फरमाया वो इसी तरह बयान फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुस्सा और बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजामा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार और बिन आद बिन अदनान, और इससे आगे भी ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहि सलाम तक पहुँचता है, और ये पाकीज़ा इतना सिलसिला है कि आद हज़रत आमिना खातून से लेकर माहव्वा तक और हज़रत अब्दुल्ला से लेकर हज़रत आदम अलैहि सलाम तक जिन जिन बापों की पुश्तों में होता हुआ और जिन जिन माओं के पेट से होता हुआ ये नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँचा और हज़रत आमिना खातून तक पहुँचा, सब के सब
मोमिन थे, मुवाहिद थे, अक्सर उसमें नबी भी हुए और जो नबी नहीं हुए उसमें अक्सर सब मुवाहिद थे और सब हक पर कायम थे। और कभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर के लिए शख्सियात का जो एहतिमाम फरमाया इस दर्जे का।

0: इहतमाम फरमाया, कमाल का दर्जा है कि आदम से लेके अब्दुल्ला तक, हव्वा से लेके आमिना तक कोई भी काफिर मुशरिक नहीं हुआ, बल्कि सब के सब अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक के लिए अहतमाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आप सबको हुजूर के नूर की बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़े सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा खादी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए। एक ऐलान, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट इस साल दिसंबर में अपने इम्तहानात का इनेकाद कर रहा है। जो उम्मीदवारान इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरख्वास्त है कि फॉर्म भरकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5 सितंबर 2026 तक, पीर से जुम्मा 3 बजे से शाम के 5 बजे तक और सनीचर सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट प्लानवेयर पोर्ट लुइस या अपने मुतालिका असातिज़ा के पास। और जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ यूँ हैं: बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पास या NID, गुज़िश्ता पास किए गए इम्तिहानात के नतायज या रिजल्ट्स।

तेरे दरबार का मंगता हूँ मदीने वाले, भरते झोली आलम नशरा के सीने वाले। मुझको सरकारे मदीना ही अता करते हैं, मेरे गम ख्वार हैं रहमत के खजीने वाले। हश्र के पुल से वो बेखौफ गुजर जाएंगे, जामे कौसर तेरे हाथ से पीने वाले। कितने खुशबख्त नसीबों के सिकंदर हैं वो लोग, इश्क़े सरकार में मरने और जीने वाले। कोई ख़तरा नहीं तूफ़ान की तुगयानी का, कैसे डूबेंगे मोहम्मद के सफीने वाले।

मौजूद सामीन, इसी के साथ आइए समाअत फरमाइए एक पैगाम सुरैया हाजरा यास्मीन और निज़ार काठोबोन से, मरहूमा नाजिया अशरफी पीवे जिनका कल इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा वो भाइयों उवैस अनस शफीक, बहनों हुदा सुमैया शमामा और वालिद कारी अशरफी के लिए भी दुआओं की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक पीरे और अशरफी फैमिली को सब्रे जमील अता फरमाए। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। पाक है हमारा रब जो दिलों का हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें रुसवा नहीं करता। करीम इतना है कि नेकी के इरादे पर सवाब देता है, मगर गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक देकर फिर उसे सवाब में बदल देता है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा कसरत से तौबा की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सकाल बीट्स,
2: सकाल बीट्स।
1: संगीत प्रेमी श्रोतियानो नमस्कार, सुस्वागतम। स्वरतरंग कार्यक्रम में आप अपने स्वागत सु तरसिको में आशा करते कि आप ठीक आहत मजे तहत एंड चुनी करी तहत ऑन MBC रेडियो। तरसिको कार्यक्रम सुरुवात झालेला आहे एका अप्रतिम गणेश गाण्या सहित। तर ऐकूया अनुराधा पौडवाल यांच्या सुमधुर आवाजात गजानना श्री गणराया।

तारी आंखों ना इशारा जाने शित गंगा नी धारा, मारी नदियों पामे किनारा तारी हाजरी मात्र थी।

आपकी पसंद। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। आपको फ़ोन करना है 1-402-808-5402-8085 और मैसेजेस भेज सकते हैं 1-525-1700-5। चलिए, आज का पहला गाना आप सभी लोगों के नाम जो साथ जुड़ चुकी है।

0: चलिए प्यारे दोस्तों, आज की पहली फरमाइश हम सुनने जा रहे हैं फिल्म मैं सुंदर हूँ से लिया गया, 1971 में रिलीज़ हुई, और ये गाना खासकर इंदिरा जी के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम मेबर्ग।
1: ये आसमान है, जमीन थोड़ी जो तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रहे हो। देखो, अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। जैसे अपन नीचे जमीन पर राशन के लिए लाइन लगाते ना, वैसे लाइन लगाओ। शाबाश, राशन राशन जैसे चावल मांगते।

0: अम्मा
1: क्या?
0: ये तो बता,
1: ओए फीते मुंह,
0: तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है? सच सच बता, प्रभु से ना छुपा।

0: जोरू, सबके नाम।
1: प्रभु ये, अरे हटो ना बीच में से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर गोद में और दिसंबर पेट में।
2: अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे,
3: क्या करूं भगवान, क्या करूं, ये सब तो आप ही की देन है, क्या करूं।

0: रूप तेरा मस्ताना, पास मेरे ना आना, भूल कोई फिर से ना खिल जाए। ए रूप तेरा मस्ताना, पास मेरे ना आना, भूल कोई फिर से ना खिल जाए।
1: क्या हुआ?
2: फूल नहीं खिलना चाहिए बाहर।
1: अच्छा, प्रभु, इस बढ़ती हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचें? आप ब्रह्मा जी से कहिए ना, कुछ दिनों के लिए बच्चों की पैदाइश बंद कर दें।
3: ये कैसे हो सकता है भक्त?
1: तो फिर एक काम करिए प्रभु।
3: वो क्या?
1: प्रभु, इससे आबादी भी कम हो जाएगी, बच्चा बजाय 9 महीने के 18 महीने में पैदा हो। क्यों रोती है?
2: 18 महीने? अरे हम औरतों का हाल क्या होगा? ये बोझ तुम मर्द क्यों नहीं लेते?
1: नको, ये दर्द मेरे को नको। प्रभु आप ही कुछ बताइए।
3: देखो भक्त,

0: महादेव की सृष्टि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मनुष्य को अनंत शक्ति का वरदान दिया है। यदि मनुष्य सोच समझकर अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करे तो उसे सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी।
1: प्राप्त? प्रभु मैं कुछ समझा नहीं।
0: नहीं समझे बालक? अच्छा अब तुम अभी समझ जाओगे। सोहम

चलिए प्यारे दोस्तों, 2:43 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर अगला गाना महबूबा, जी हाँ महबूब की मेहंदी, क्या बात है, 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म है। और ये गाना हम सुनेंगे लता जी और हेमलता की आवाज़ों में, तो उनको हम सुनते हैं। और ये गाना खास कर जाएगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो हमें सुन रही है, खास कर शिमला जो रहती है बेलरोज, गाना उनके लिए, उनकी भतीजी देवयांशी और नेशा के नाम।

चले दोस्तों, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगला गाना सुदेवी जी के लिए जो रहती है वाकवा और इस समय सुन रही है, गाना खास कर दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालेंगा के अनुषा, किरण, याशना, नीरज, रामरतन परिवार, कुआबू परिवार और रघुबर परिवार के।

2:52 हुए हैं। चलिए भजरंगी भाईजान फिल्म से लिया गया ये अगला गाना सुनते हैं अदनान सामी की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा ऐशान के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम रोजिल। गाना जाएगा उनके लिए और उनकी शोहर और उनकी बेगम।

चलिए प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत कवाली के साथ हम भरेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की। और साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलो हर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: लेकर देश विदेश की खबरें स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। कम बारिश की वजह से कृषि उद्योग में पानी की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू किए गए। सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सिर्फ सब्जी की खेती करने वाले खेतीहरों को अधिकार हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार सिंचाई करने के लिए उनके खेतों में जल आपूर्ति की जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फागे के अफसर जल संसाधन के संचालन और खेतीहरों की मदद करने के लिए तैनात हैं। मॉरिशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरिशस दौरे का ये मकसद है। पिछली 31 मई को वे इस पद के लिए नियुक्त हुए और मॉरिशस उनका पहला विदेशी मिशन है। मॉरिशस और सेशल के रिश्ते एक नए चरण में प्रवेश कर गए हैं।

0: हैं। मुर्शस में सेशल के पहले उच्चायुक्त निकोला जेगोप्रिया ने आज स्टेट हाउस रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र पेश किया। दोनों देश विभिन्न सेक्टरों में अपने संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखते हैं, खासतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में। ड्रग ट्रैफिकिंग तथा हिंद महासागर में अवैध ट्रैफिकिंग के खिलाफ संघर्ष करने पर खास जोर दिया जाएगा। विदेश में यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की, तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया। अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो ये तादाद सन 2030 तक करीब 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी। उन यूनेस्को का कहना है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता मुल्क है जहां लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और आला तालीम पाने का हक नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। नंबर 50 नंबर 50 एवेन्यू डुआयें कैथ्रोबोन में 62 साल के 62 years old श्री सतीश तोमू, जो सतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर नंबर 50 नंबर 50 एवेन्यू डुआयें कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन में 39 साल के 39 years old श्री रविसन चिदंबरम, जो आरुनन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और CWA के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3:30 बजे इनके घर विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। प्लान मान्यों में 72 साल के 72 years old श्री त्रिलोक सिंह रामभरत, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी साबिता देवी रामभरत के घर प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 PM। सिवराज रोड नवीन मिल्ट्रियोले में 32 साल के 32 years old श्री विवेक रामसरन, जो आवी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी माँ प्रीति रामसरन के घर सिवराज रोड नवीन मिल्ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 12:10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

3:06 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। चलिए बहुत ही प्यारा गाना, अगला गाना हम चलाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें हमारा फ़ोन नंबर है 4028085402808। मैसेजेस आप कर सकते हैं 5217005। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हमें आपका इंतज़ार है और अगला गाना जो है विश्वानी डुमन के लिए, जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम वाक्वा, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और गाना जाएगा आपके लिए बहन इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए।

आपकी पसंद। तीन बजकर 14 मिनट हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे लता जी की आवाज़ में, और गाना खासकर इंदिरा जी के लिए जो हमें सुन रही हैं इस समय, और साथ में गाना वो मांग रही है बेटी अविनाश और बेटी रेखा, और वो ये रहते हैं गौगब। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि लोग यहाँ पर हैं दो चार बात करने के लिए, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो दिल से करें और दूसरों की फिक्र छोड़ो। अमर प्रेम का ये खूबसूरत गीत खासकर शाइलन के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, फ्रॉम क्यूपिप, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। गाना उनके लिए और उनकी मंगेतर प्रीति, जी हाँ प्रीति, आपके नाम जाता है ये अगला गाना।

आपकी पसंद। तीन बजकर 24 मिनट हुए हैं और यहाँ पर सरिता जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम काठोबोन, वो कहती है कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, यानी काठोबोन में बारिश हो रही है। हाँ जी, काफ़ी जगहों पर अभी बारिश हो रही है और गाना हम चलाएंगे खासकर आप लोग, आपके लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और जो लोग घर पर हैं इस समय चाय पी रहे हैं। तो चलिए हमारी तरफ से भी दो सिप मार दीजिए

आपकी पसंद। चलिए अगला गाना दोस्तों तकदीर फिल्म से लिया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये गाना खास कर हम चलाएंगे बंधु परिवार के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ट्रियोली।

आपकी पसंद। तीन बजकर 37 मिनट दोस्तों, और यहाँ पर हम चलाएंगे गाना खासकर सरिता जी के लिए, और वो हमें सुन रही है फ्रॉम गुडलैंड्स। चलिए, उदित नारायण का ये खूबसूरत गाना परदेसी बाबू फिल्म से लिया गया। ये तो सच है कि कुछ खोना है कुछ पाना है जिंदगी में।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए अगला गीत साधना के लिए जो रहती है रिविया दिखे और गाना खास कर वो मांग रही है अपने परिवार के लिए। पति देवानंद, बेटे नितेश, कुशाल, करण, बेटियां जो हैं अनुषा, मानसा, संहिता, नाती और नातिन, जिया, तेजल, गौरव, किरियान और सबसे छोटा गोपाल, तशवीक जो रहते हैं यूनियन पार्क लाहौजा, मौद आलबे और दुबई में, और सभी जीवन फैमिली जो रहते हैं रिविया दे क्रियोल। और यहाँ पर साथ में गाना हम चलाएंगे शंभु विना शंभु के लिए। जी हाँ, आज उनकी बहन और जीजाजी की शादी की सालगिरह है। नालिनी और ईश्वरलाल रामजीवन जो रहते हैं थो बेश ट्रियोले, तो शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, शादी की सालगिरह मुबारक हो आपको। तो चलिए गाना हो जाए, आंधी फिल्म से लिया गया। और साथ में गाना जाएगा ज्योति जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम यूनियन पार्क, गाना प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा के लिए।

0: दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है।

चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद आ गए। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत गज़ल के साथ हम इस ये कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और साथ में ये गज़ल हम डेडिकेट कर रहे हैं अरशाद के लिए जो रहते हैं मेबर्ग और साथ दे रहे हैं और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो गज़ल पसंद करते हैं। और हमारी मुलाकात होगी शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में, जुड़े रहिए। ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम मिसेस धर्मिया के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आज के इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालगोबिन बासेनु, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आज कंपोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कंपोस्ट करने के बहुत तरीके हैं, पर आज के इस प्रोग्राम में सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी। कंपोस्ट किस चीज को कहते हैं? तो जब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जो हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं सर कर एक खाद बनती है जो ऑर्गेनिक पदार्थ न्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स से भरा हुआ है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को फल और सब्जियों को उगाने में काम आती है। आर्थिक विकास से हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आई है जिसे हम बहुत खरीदारी करते हैं और दुर्भाग्यवश ऐसे बदलाव से बहुत सी वेस्ट मटेरियल हर रोजाना पैदा होता है। हर एक मॉरिशन लगभग 400 kg वेस्ट हर साल पैदा करते हैं और इससे हर साल मॉरिशस में लगभग 500,000 tons की घरेलू कचरा पैदा होता है। सरकार को बहुत ज्यादा लगते हैं इन कचरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कचरे उठाने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जगह लगते हैं, व्यवस्था लगते हैं और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। यहाँ वहाँ पड़े हुए कचरे ना सिर्फ लैंडस्केप को खराब करते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट पे भी जरूर भारी पड़ता है। तो इसके लिए कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है। सभी घरों में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, वो एक अच्छी नेचुरल रिसोर्स होता है। इन बायोडिग्रेडेबल कचरों को हम कंपोस्टिंग के द्वारा रिसाइकल करके कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट एक ऐसी पदार्थ है जो कचरों की डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जहाँ पर मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े द्वारा से बनती है। इन जीव जंतु को बहुत सारे

हवा और गर्मी चाहिए अपने पूरे लाभ दिखाने के लिए। अंत में एक अच्छी खाद मिलती है जो नेचुरल, इकोलॉजिक और ऑर्गेनिक भी है, जिसे हम कृषि विकास में उपयोग कर सकते हैं, जिसे मिट्टी के स्ट्रक्चर, उसके फर्टिलिटी और पानी रखने की क्षमता को बढ़ाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, पर हर एक तरीके एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि अपने आंगन में भी कर सकते हैं, छोटे आकार में या चाहे तो बड़े कमर्शियल आकार में भी आप कर सकते हैं। अपने यहाँ कंपोस्ट बनाने के लिए आप अपने जगह ठीक तरीके से ही चुनें। कौन सी सिस्टम में अपने कचरे को डालना है, कौन सी मटेरियल को चुनना है, कैसे चुनना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। कंपोस्ट बनाने के लिए एक गुप्त जगह जो एक्सेसिबल भी हो, थोड़ा छांव में हो, ही ठीक होता है। आप अपने कंपोस्ट बिन प्लास्टिक के ले सकते हैं, लकड़ी से या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स से भी आप बना सकते हैं। प्लास्टिक का बिन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी है और ज्यादा दिनों तक भी चल सकती है। आप इकोनिकल शेप कंपोस्ट भी अपना सकते हैं, जिसे आप अपने कचरे आसानी से ऊपर से ही डाल सकते हैं। इनके एक ढक्कन नीचे की तरफ भी होते हैं, जहां से आप तैयार हुए खाद को आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छे तरह ढके हुए कंपोस्ट बिन गर्मी को अंदर बढ़ाता है और चूहे से आपका कंपोस्ट को भी बचाता है। कचरे को चुनने के बाद कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल है जिन्हें हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा जिनमें सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों की पत्ती, मुरझाए और खराब हुए फल या फिर सब्जी, अंडे के छिलके, कॉफ़ी का वेस्ट जिसे हम कॉफ़ी ग्राउंड्स कहते हैं, कागज़ के फिल्टर, चाय की पत्तियाँ, चाय के वेस्ट और जो हर्बल चाय जिसे हम चिजान भी कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घर के कचरे भी होते हैं, जैसे कि कर्टन, बिना छिपा हुआ कागज़, लकड़ी का जो डस्ट होता है जिसे हम सोडस्ट कहते हैं। आप बगीचे के कचरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हैं सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, हरे पत्ते जिसे हम टी ट्रिमिंग कहते हैं, कटी हुई घास हम गाजों भी कहते हैं, और जो डालियाँ भी हम डाल सकते हैं, और जो भी फल आपके पेड़ से गिरे हुए हैं वो भी आप डाल सकते हैं। दूसरे और कुछ ऐसी सामान हैं जिन्हें कंपोस्टर में नहीं डालनी चाहिए, वो हैं प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की जो भी वस्तु होते हैं, प्लास्टिक का धातु जो डिब्बे होते हैं, बोतल, टूटे हुए कांच, तेल या फिर जो भी ग्रीसी पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बना होता है, और बचे हुए मांस मछली के भोजन नहीं डालते हैं। बचा हुआ खाना, डायपर्स, वाइप्स, सिगरेट के टुकड़े भी नहीं डालते हैं। सिंथेटिक कपड़े, घरेलू पशुओं के एक्सक्रीमेंट जैसे कि बिल्ली और कुत्ते होते हैं, उनके एक्सक्रीमेंट नहीं डालते हैं। न्यूज़पेपर और जो भी मास्क इस्तेमाल किया जा चुका है उसे नहीं डालते हैं। जो भी लकड़ी, ट्रीटेड वुड जैसे हम करते हैं, और घास जिनमें बीज लग चुके हैं, हम उसे नहीं डालते हैं कंपोस्टर में। हम ऑर्गेनिक कचरे को उनकी पानी की मात्रा जिसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं, उसके आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होते हैं हरी वस्तुएं जैसी रसोई का कचरा, कटी हुई घास, इनमें आमतौर पर बहुत अधिक नाइट्रोजन और पानी होता है। ऐसे वस्तुएं बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं, डिकम्पोजिशन के दौरान एक पानी छूटती हैं और बहुत बदबू भी आ सकती हैं। और दूसरी ओर है सूखी हुई ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे लकड़ी की डालियाँ, सूखी पत्तियाँ, कागज़, कॉटन, जो कार्बन से भरपूर और पानी की मात्रा में बहुत कम होती हैं, और इसीलिए इस प्रकार के सामग्री को डिकम्पोज होने में थोड़ा अधिक समय लगता है।
डिकम्पोजिशन की प्रोसेस पानी और

हवा की उपस्थिति में माइक्रोब्स द्वारा स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो एक सफल कंपोस्ट पाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न प्रकार के कचरे को एक साथ मिलाएं, हरा कचरा, सूखा कचरा, कार्बन और नम कचरा अलग अलग आकारों में। सुझाव दिया जाता है कि 2/3 सूखी सामग्री के साथ आप 1/3 हरी सामग्री मिलाएं। ये सब अच्छे डिकम्पोजिशन के लिए आवश्यक हैं। कचरे को चुनने के बाद जो कचरा आकार में बड़ा और सख्त होता है उसे डिकम्पोजिशन को बेहतर बनाने के लिए काटना या पीसना चाहिए। इसके साथ प्रिय श्रोताओं, मैं आज का प्रशासन समाप्त करती हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप फागे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ते फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

शाम के 5:17 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं इस समय अंताक्षरी प्रोग्राम। जी हाँ, जहाँ हम आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं, हम गाना भी गाते हैं। हम आज का जो विषय है हम आपको दे देते हैं। विषय है, आपको गाना होगा एक नया और एक पुराना। जी हाँ, और नंबर है 4028085402808585। हमें आप लोगों का इंतज़ार है दोस्तों। और जब हम आपसे कह रहे हैं एक नया एक पुराना, तो आप बेझिझक इस नंबर पर डायल कीजिए। हमें

0: 5:22 हुए हैं दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि आज रोशन जी नहीं है, सिर्फ उषा जी है। जी हाँ, इसलिए हम लाइव टिकटॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं ऑन रेडियो रेडियो मॉरिशस। और यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट कॉलर आज के लिए और उनको हम सुनते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, आपका नाम?
1: नमस्ते, नमस्ते।
0: सुदेवी जी कहाँ से?
1: मुखा से, कैसे हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुदेवी जी बताइए, आप क्या सुनाना चाहती हैं? एक आपको सुनाना है, एक नया और एक पुराना गाना।

0: चचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना रहा, ये सफर है अब मुश्किल आने जो है तूफान। चचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना रहा।
1: चलिए, तो ये एक पुराना गाना और नया गाना सुनाइए
0: जी, मेरी आवाज कुछ ठीक नहीं है।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गाइए।
0: ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर याद रखना हाँ जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए।
1: ओके, जीना सिर्फ है आपके लिए। चलिए सुदेवी जी, बहुत धन्यवाद आपको, मिलती है बहुत जल्द। बाय बाय, शुभ रात्रि आपको।
0: थैंक यू।

0: जीना सिर्फ मेरे लिए यरका याग्निका और साथ में है बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन हमें अपनी प्यारी आवाज़ सुनाने आई है। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते बहन
0: जी नमस्ते बोलिए।
1: हाँ
0: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
1: हम ठीक
0: हैं। आप तो तारा जी है ना?
1: हाँ
0: तारा जी कैसी हैं?
1: नमस्ते।
0: हाँ वो भी आपको सुन रहे हैं। तो आप हमें सुनाइए पहला गाना, नया या पुराना?
1: अमिताभ बच्चन का गाना। तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में मैं घर से

0: बड़ी बरसात में पी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो।
1: भरी बरसात में पी लेने दो। चलिए, जब बरसात की बात होती है तो बस फागाता कारिसोमो है जीरोमो कद्दू
0: पका दे रहा
1: पका देली और लिसू।
0: मसाला में पका दे ली।
1: बढ़िया बढ़िया। चलो सुनाइए दूसरा गाना। एक
0: नया
1: अभी तो ये गाना जो आपने गाया बरसात के मौसम, तो पुराना गाना थोड़ी है, ये 90s का गाना है। अब पुराना गाना सुनाइए।
0: पुराना गाना, तुझे देखा तो ये जान।

0: ओके, हम कहाँ जाएंगे अंताक्षरी?
1: कहाँ
0: प्रोग्राम के बिना हम कहाँ जाएंगे, है?
1: जाएंगे,
0: थैंक यू सो मच तारा जी, मिलते हैं बहुत जल्द. आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय.
1: बाय बाय.
0: वैसे जब बारिश होती है हमेशा इस गाने को हमें सुनना है, सुनना पसंद है. क्यों? उसका जो धुन है अलग ही है, अलग मूड में हमें डाल देते हैं, है ना? कुमार सानू और रूप कुमार राठौर.

0: बरसात के मौसम में और आप लोग घर पर है इस समय हमें सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर हम देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते इर्शाद जी।
0: नमस्ते आपको, आप तो श्यामा जी हैं।
1: श्यामा विल में से हूँ।
0: चलिए, विषय है, दो गाने आपको गाने होंगे, एक नया और एक पुराना।
1: हाँ, तो मैं पुराना गाना जो आज राजा महाकुमार का बर्फी है आज बर्फी, तो उसके एक गाना गाऊंगी उस पर।
0: चलिए शुरू कीजिए।
1: है नहीं से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना।
0: ओके श्यामा जी, दूसरा गाना सुनाइए, एक नया गाना।
1: किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, पढ़ा है मेरी जान तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है।
0: ओके, आपके चेहरे अभी पे आपके चेहरे पर क्या लिखा है हम बता नहीं सकते, लेकिन आवाज़ जो है ना एकदम बढ़िया है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपके। धन्यवाद श्यामा जी, मिलते हैं बहुत जल्द। शुभ शाम आपको।
1: Okay.

0: हमें टुकड़ों में नहीं जीना है, यहाँ पर कौन आया है? हेलो,
1: उषा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन?
1: विजय हूँ मैं, क्लावित से।
0: ओ विनय जी, कैसे हैं आप?
1: विजय विजय विजय
0: विजय,
1: विजय
0: विजय
1: नंदन,
0: बंधन फ्रॉम क्लावित। हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है? आप कैसे हैं?
0: हम तो बिल्कुल ठीक है।
1: अच्छा, रोशन भाई भी नमस्ते बोलते हैं।
0: हाँ जी, वो आपको सुन रहे हैं। तो आपको गाने होंगे, दो गाने, एक नया और एक पुराना।
1: अरे पुराना, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज्य।

0: तू जिंदाबाद। अच्छा बोला,
1: बहुत बढ़िया। और आप सुना, आपको सुनाना है एक नया गाना।
0: तुझे मिलने का इरादा है, प्यार का वादा है और

0: जमाना देखे यार ओ मेरे प्यार।
1: तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है
0: और एक वादा है
1: जानम। चलिए ये वादा करो कि आप वापस आएंगे अगले प्रोग्राम में। अभी के लिए बहुत धन्यवाद आपको, शुभ संध्या आपको, बाय।

0: मुझे
1: उनको बिन पिए नहीं रहा जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कौन अपनी सुरीली आवाज़ सुनाने आए। हेलो
2: हेलो, नमस्ते उषा जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप मीनाक्षी हैं?
2: जी हाँ।
1: कैसी है मीनाक्षी जी?
2: मैं ठीक हूँ।
1: हाँ, बढ़िया। और मीनाक्षी जी सुनाइए पहला गाना।
2: हाँ, एक पुराने गीत। आप हमेशा मुझे बोलती है ना पुराने गीत।
1: हाँ, आप तो 90s के गाने गाते रहते हैं। हम इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ चलो, हमेशा वर्सटाइल होना चाहिए, कभी पुराना कभी नया।
2: हाँ जी
1: जी
2: चलो, तो पुराने ही।

0: बस
1: बस क्योंकि अब तो अंतर आएंगे।
0: चलिए कंग्रेचुलेशन, मेहनत के लिए एक बहुत बहुत
1: जी
0: बधाई हो आपको। चलिए सुनाइए नया गाना।
1: ओके तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरे चाहतों के, सपने तेरे चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
0: बहुत ही प्यारा गाना और आपकी आवाज हाँ। बहुत ही प्यारी है मीनाक्षी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग और शुभ शाम आपको। बाय बाय।
1: जी बाय बाय आपको भी।
0: जी हाँ, मीनाक्षी जी ने जो गीत गाया है अभी, ये है फिल्म खजाना से लिया गया लता जी की प्यारी आवाज़ में।

0: तुम संग नैन मिला के बस हम हार गए सजना, और यहाँ पर हम देखते हैं कौन जीतने आया है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: जी नमस्ते, आपका नाम?
1: जी मैं देवी हूँ।
0: कैसी हैं देवी?

0: विजी ठीक
1: ठीक
0: है, ये ठीक क्यों ठीक नहीं है है ना। कोई बात नहीं, आप हमें सुनाइए पहला गाना।
1: हाँ तो पहला गाना है आशा भोसले जी की आवाज में,
0: चलो सुनाइए।

0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
1: और एक 90s का है।
0: चलो सुनाइए।
1: खुश रहने को जरूरी क्या है बोलो यार, खुश रहने को जरूरी क्या है बोलो यार, खुशी तो मिलती है जब मिले किसी का प्यार। थैंक यू वेरी मच।
0: खुश रहने की ज़रूरी है, और क्यों है? क्योंकि हमें हमेशा खुश रहना है, दूसरों को खुश रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, और साथ में रेडियो के साथ गुनगुनाना है, जुड़ना है। थैंक यू सो मच जी, बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं बहुत जल्द।
1: शुभ संध्या,
0: शुभ संध्या आपको।

0: बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते उदय भाई, कैसे
1: हैं? भाई को भी नमस्ते।
0: हाँ जी वो आपको सुन रही
1: हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: वो आपको सुन रही हैं। माता जी से मुलाकात हुई
0: उद्यान
1: में। हाँ वो कहते हैं सुनती हैं हमको।
0: अच्छा हाँ तो सर जरूर नमस्ते प्रणाम उनको। वो हमको सुन रहे हैं जी। हाँ बेशक। और उदय भाई आपको सुनाना है दो गीत, दो गाने। कौन से गाने
1: तैयारी की है? ऐसे सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं,

0: ऐसे बहुत बढ़िया
1: कुछ
0: मीरों के कहीं तुम जानम कहीं ना कहीं जानम हमको मिलेगा। चलिए सुनाइए दूसरा गाना, पुराना गाना।
1: थीम है लव इन टोक्यो, थोड़ा सा शमी कपूर के स्टाइल में, लेकिन जो मुखर्जी सुना गया था। जापान लव इन टोक्यो ले गए दिल गुड़िया जापान की, ले गए दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया। जापान लव इन टोक्यो,
0: लव इन अंताक्षरी। धन्यवाद आपको उधय भाई, मिलते हैं बहुत जल्द। शुभ शाम आपको, बाय बाय।

0: जी हाँ, कल का हर सपना हमें बहुत ही प्यारा लगे और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आपको, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। सुनाइए पहला
1: और
0: गाना।
1: जी सुन रहे थे, नमस्ते।
0: हाँ, वो भी
1: को
0: सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं।
1: हाँ,
0: सुनाइए पहला गाना
1: पुराना।
0: ओके।
1: अपनी

0: चलिए, दूसरा गाना एक पुराना गाना, एक नया गाना।
1: राजेश खन्ना जी पर गा सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा।
0: हमसे पहले जल जाएगा, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है। और शोभा जी बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद आपको भी। शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको।
1: बाय बाय।

0: मेरे यार एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ साजन फिल्म से लिया गया ये गाना। और यहाँ पर देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: नमस्कार उषा बहन
0: जी, नमस्कार
1: तो
0: आपको।
1: हरीश
0: जी
1: सलाम भाई रोशन के लिए,
0: हाँ
1: अगर
0: जी
1: वो सुन रहा हो तो।
0: बिल्कुल वो आपको सुन रहे हैं। सुनाइए हमको
1: या
0: एक गाना, आज पहला गाना
1: थोड़ा सा पे ग्रिपे ग्रिपे है, जो जो
0: थोड़ा सा
1: आवाज
0: ग्रिपे
1: सीखी आ
0: ग्रिपे।
1: रही है नहीं तो
0: इट्स
1: देवानंद
0: ओके।
1: टेक्सर होने के नाते एक पुराना गाना गाऊंगा, तीन देवियों।
0: तीन देवियां, चलिए सुनाइए।
1: भूत मिया कोई हकीकत को हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
0: वेरी गुड। दिख नहीं रहे कि आपकी आपके आपके आपका गला ठीक नहीं है।
1: थोड़ा देने मुझे है
0: थोड़ा नहीं,
1: देने मुझे
0: नाक बंद,
1: गुड
0: कोई
1: गुड
0: बात नहीं, हिमेश रेशमिया का गाना गा लो, इट्स ओके। चलिए
1: तो
0: सुनाइए।
1: मैंने चूज किया है अंकल सुजास। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सुधार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो।
0: जी
1: ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सुधार, फिर भी कितनी सुंदर हो, उषा जी कितनी सुंदर हो।
0: हमें पता था कि
1: जय
0: आप ऐसा
1: जिंदगी
0: कुछ,
1: as usual।
0: हाँ जी ऐसा कुछ करने वाले हैं।
1: थैंक
0: बहुत
1: यू
0: धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर
1: बाय।
0: हरीश, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।

0: जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब आपको सुनते हैं, आप प्यार बरसाते हैं हम पर और हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे और बढ़ें और कुछ करें आप लोगों के लिए। बिल्कुल हम करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो उषा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं लक्ष्मी बाबू से।
0: हाँ जी लक्ष्मी जी, बोलिए, आप कैसी हैं?
1: ठीक हूँ उषा जी, आप ठीक है ना?
0: हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: हाँ,
0: सुनाइए पहला गाना।
1: पहला गाना जब अभी बारिश हो रहा है ना तो बहुत फिसला फिसला
0: फिसला फिसला। ओके।
1: मैं गाना गा रही हूँ। आज रब जाए तो हमें न उठाए, हमें जो उठाया तो खुद बिसर जाइयो, आज रप और दूसरा है, मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते आपका प्रोग्राम के बिना।
0: अंताक्षरी प्रोग्राम के बिना। समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, ऐसे ही आप हमेशा हंसती मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। शुभ संध्या आपको भी।
1: अभी चलना नहीं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सावधानी से चलो। बाय
1: बाय।
0: आखिरी कॉलर हम लेंगे। हेलो,
2: नमस्कार। नमस्कार उषा जी, मैं सुबीर हूँ।
0: सुबीर साहब, कैसे हैं आप?
2: थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं है।
0: थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा
2: मौसम का असर है।
0: मौसम का असर हम समझ सकते हैं। जी हाँ, तो फिर भी आपने फोन किया, इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं।
2: विषय कुछ ऐसा है तो गाना पड़ेगा।
0: शुरू कीजिए।
2: अच्छा, मैं रब ने बना दी जोड़ी का गाना गाऊं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही मेरा सुकून,

0: में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सदके सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
1: आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि आपको सुनाना है दूसरा गाना, एक पुराना गाना.
0: दूसरा गाना तो मैं गाऊं, किशोर कुमार का ही है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई।
1: चलिए, बहुत
0: ओके, धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको सुबीर जी. मिलते
0: सर
1: हैं
0: जी,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: जल्द.
0: ओके
1: आप अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.
0: ठीक है, ओके, थैंक यू, और थैंक यू।

चलिए इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ, सुनील शेट्टी नज़र आए थे इस फिल्म में, मोहरा फिल्म में, और यहाँ पर ये गाना हम चला रहे हैं क्योंकि कल उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया था। इसी गीत के साथ मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात होगी जी हाँ आज RN Free पर 6:30 से 9 बजे तक नई सोच और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। अभी के लिए 6 बजे आप सुन पाएंगे समाचार। चलिए इस गीत को आप लोग एंजॉय कीजिए और इसके साथ गुनगुनाइए।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार, आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सब्जी के खेतीहरों को खेतों में सिंचाई करने के लिए हफ्ते में तीन बार पानी मिल रहा है, फागे के अफसर उनकी मदद करने के लिए तैनात। की रेट को 4.75% पर बरकरार, केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज की बैठक एक नाजुक दौर में की गई क्योंकि वृद्धि के खतरे हैं। फौजल आवाल की तीर्थ यात्रा, गणेश चतुर्थी और वेंकटेश्वरा पूजा की तैयारियों के संदर्भ में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक लगी। डॉक्टर नवीन राम गुराम ने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात और उनके प्रस्ताव सुने। मॉरीशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरीशस दौरे का ये मकसद है। और यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की, तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया। नमस्कार और आदाब, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले आपको बता दें कि की रेट को 4.75% पर बरकरार रखा गया। केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज की बैठक एक नाजुक दौर में की गई क्योंकि वृद्धि के खतरे हैं। मध्य पूर्व में तनाव की वजह से ऊर्जा क्षेत्र पर भी असर है। इस साल बैंक ऑफ मॉरीशस आर्थिक वृद्धि के लिए 2.8% का अनुमान लगा रहा है। फौजल आवाल की तीर्थ यात्रा, गणेश चतुर्थी और वेंकटेश्वरा पूजा की तैयारियों के संदर्भ में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक लगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके प्रस्ताव सुने। अवसर पर CWA, CB और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान सबसे जिम्मेदारी और अनुशासन बरतने की मांग की तथा उन्होंने कहा कि अच्छे संचालन और सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: L'objectif ici, c'est garantir que ces trois fêtes religieuses-là déroulent en toute sérénité et en toute sécurité. Nous pouvons assurer aussi qu'il y a un approvisionnement de l'eau malgré la sécheresse qui peut appeler nous là et l'électricité. Et nous pouvons assurer aussi qu'il y a un service médical

0: sur place avec ben l'ambulance, 24 le 24. Et aussi présence la police. L'essentiel, ce qu'ils m'ont dit là, c'est discipline, sens de responsabilité. Par exemple, pas être ben serviette papier, ben bouteille plastique, ben sac plastique. Et là, ben bin, ce qui peut donner pas. Ça sert ça ben bin là. Mais surtout, ce sens de responsabilité là.
1: मॉरिशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरिशस दौरे का ये मकसद है। पिछली 31 मई को वे इस पद के लिए नियुक्त हुए और मॉरिशस उनका पहला विदेशी मिशन है। सागाउनु गीता सुनारान।
2: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य नेशनल कोस्ट गार्ड के साथ सहयोग को और मजबूत करना है। इसमें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हमें आशा है कि मॉरिशस के इस दौरे से दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत होगी, शुरू किए गए कार्यों में तेजी आएगी और अन्य नए क्षेत्र शामिल होंगे। सहयोग की नई संभावनाओं की उम्मीद करते हैं जो दोनों देशों और उनकी जनता के हित में हो।
3: एंड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज फॉर पार्टनरशिप दैट विल डू गुड सर्विस टू बोथ आवर नेशंस एंड आवर पीपल्स।
2: भारतीय नौसेना प्रमुख मॉरिशस सरकार को एक साइट स्कैन सोनार सिस्टम और नए अपडेट किए गए समुद्री नक्शे सौंपेंगे। इन उपकरणों से मॉरिशस की समुद्री सर्वेक्षण क्षमता और समुद्री यातायात की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये दौरा मॉरिशस में पिछले भारतीय नौसेना प्रमुख की यात्रा के 11 साल बाद हो रहा है।
1: कम बारिश की वजह से कृषि उद्योग में पानी की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू किए गए। सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सिर्फ सब्जी की खेती करने वाले खेतीहरों को अधिकार हैं, लेकिन हफ्ते में 3 बार सिंचाई के लिए उनके खेतों में जलापूर्ति की जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फागे के अफसर जल संसाधन के संचालन और खेतीहरों की मदद करने के लिए तैनात हैं। किशन सिचिया, गीता सुनारान।
2: कड़ी धूप में बिस्वादत रोज की तरह सोलिच्यूड में अपने खेतों में काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन और कुछ घंटों के लिए ही सिंचाई का पानी मिल रहा है। उनके लिए आने वाले कुछ महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 5 दिन पानी मिलता था, अब 3 दिन मिलेगा, ये काफी नहीं है। अक्टूबर नवंबर में गर्मी होगी, जमीन तैयार हो चुकी है, सीजन के चले जाने के बाद हम तरबूज नहीं रोप सकेंगे। टापू के इस उत्तरी इलाके में करीब 100 किसान हैं जो सब्जियों की खेती के लिए मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं। बिसुंदत नमा कहते हैं, ड्रिपिंग के अलावा और कोई समाधान नहीं है। हमें खेती कम करनी होगी क्योंकि कम पानी मिलेगा, पैदावार 50% से घटेगी। यहाँ बारिश का पानी जमा करना काफी मुश्किल है और आसपास जल स्रोत न होने से समस्या और गंभीर हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए फागे के अधिकारी किसानों को उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सलाह दे रहे हैं। फागे खेतों में कम पानी इस्तेमाल करने के टेक्निकों का सुझाव दे रही हैं। इसके उपनिदेशक अखिल आनंद जी गुलुब कहते हैं, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ड्रिपिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पर्याप्त पानी इस्तेमाल करती हैं, जड़ के पास इन्हें लगाते हैं। बारिश का पानी जमा करने के लिए एक स्कीम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। खेतीहर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 50% ग्रांट मिलता है। ये प्रणाली बिठाने के लिए जमीन में अन्य पदार्थ डाल सकते हैं जो जड़ों के पास पानी रहने देते हैं।
4: 50% ग्रांट vous êtes monde de système de captage. Nous on a aussi ben les autres produits qui nous capable mettre dans la terre et ça produit là les gouttes de l'eau près que racine là, comme ça le fréquence d'arrosage aussi au capable espacer l'eau plus grand l'étang.
2: सूखे के इस दौर में खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए प्रभावी सिंचाई और पानी का जिम्मेदारी से

0: इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: 1000 परिवार अब औपचारिक रूप से सौर्य पैनल्स के मालिक बन गए हैं। सीबी के प्रोग्राम के इन लाभार्थियों को आज बैन में अपने डीड्स मिले। कुछ परिवारों के यहाँ करीब 10 सालों से ये पैनल्स लगाए गए हैं, जिनसे हर महीना वो अपने बिजली बिल पर बचत कर पाते हैं। मुशर्रफ में सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए अधिकारियों के लक्ष्यों में शामिल ये एक कदम है। अनाबेल वुल्बिया, गीता सुनारान।
0: लगभग 1000 परिवार अब आधिकारिक रूप से सीबी द्वारा लगाए गए सोलर पैनलों के मालिक बन गए हैं। कुछ परिवारों के घरों में ये सोलर पैनल करीब 10 साल से लगे हुए हैं। इन सोलर पैनलों की मदद से उन्हें हर महीने बिजली के बिल में बचत होती है। आज इन ग्राहकों को सीबी की ओर से अपने सोलर पैनलों के मालिक होने का प्रमाण पत्र मिला। फिलहाल मॉरिशस में करीब 12,000 लोग सोलर पैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संख्या सीबी के नेटवर्क से जुड़े 4,00,000 से ज्यादा ग्राहकों की तुलना में अभी भी काफी कम है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 2029 तक सोलर पैनलों की संख्या बढ़ाकर 80,000 करना है। सीबी के अनुमान के अनुसार जब सोलर पैनलों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो लाभार्थियों को बिजली के बिल में हर महीने 580 रुपए तक की बचत हो सकती है। 1000 लाभार्थियों को इन सोलर पैनलों के मालिकों को प्रमाण पत्र देना 2026-2027 के बजट में घोषित उपायों का हिस्सा है।
1: जन उपयोग और ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन को सुनते हैं।
2: Fin donne à sa banque du monde là qui panne les autres la case, un premier batch de 1000 autres agreements, autres papiers qui deviennent propriétaires de ça. Ça veut dire que du monde qui est dans salle sur la case, d'abord son bill courant pour baisser parce que tout courant qu'il peut produire, il peut tirer ça sur son bill. Et une madame, il dit à là, son bill maintenant 13 roupies. Peut-être son bill, c'est 1100 roupies, 1200 roupies, 800 roupies, il y a une vie 13 roupies. Le président Trump dit la guerre est commencée, prix l'a monté. Là, il dit à la guerre, de droit d'homose pour ouvert, prix l'a baissé. Alors, il fait que ce qui se passe, c'est que CIB fait une augmentation de 15% qui nous fait pour permettre à CIB à monter sa banque là. Il n'y a pas d'actualité, augmentation de CIB encore, mais seulement, nous devons faire tout.
1: कल फैसला सुनाया गया। इक्विडियापॉक मामले में करप्शन के लिए मनीष गोबिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। डीपीपी दफ्तर ने औपचारिक रूप से सुप्रीम अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के सामने उन पर इल्जाम दर्ज किया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पोका के तहत पुराने अटॉर्नी जनरल के साथ साथ पुराने पीपीएस राजा नादालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स के पूर्व चेयरमैन हरिदत्त रामनारायण पर मुकदमा चलाया जाएगा। अन्य खबरों में मॉरिशस और सेशल्स के रिश्ते एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। मॉरिशस में सेशल के पहले उच्चायुक्त निकोला जेगोप्रिया ने आज स्टेट हाउस कैजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र पेश किया। दोनों मुल्क कई सेक्टरों में अपने रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में। हिंद महासागर में गैर कानूनी तस्करी के खिलाफ संघर्ष करने पर खास तवज्जो देने पर भी बात की गई। कोयल सीतल अशिता रघु।
3: निकोला जेगोप्रिया मॉरिशस में सेशल्स के पहले उच्चायुक्त हैं। स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा पर जोर दिया। सहयोग के कई क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, खासकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। मॉरिशस में सेशल्स के उच्चायुक्त ने कहा, द्विपक्षीय संबंधों के वास्ते एक जॉइंट कमीशन है। हम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मुख्यतः समुद्री सुरक्षा पर ज्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच विकास की बहुत संभावनाएं हैं, जिससे हिंद महासागर में गैर कानूनी तस्करी को रोका जा सके। सेशल्स की सेशल्स कोस्ट गार्ड्स की सहायता से हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर मॉरिशस के साथ भी सहयोग करेंगे, जिससे मॉरिशस भी हिंद महासागर को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बना सके, जहाँ ड्रग तस्करी इत्यादि न हो। ये नई नियुक्ति दोनों द्विपक्षीय देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करना है।
1: ग्रेट ब्रिटेन में ग्लूकोमा के इलाज में महारत रखने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर पैट्रिक और सिंथिया यूवाई उमान मोशन डायस्पोरा का वो हिस्सा हैं जो अपनी जन्मभूमि के मरीजों को अपनी सेवा देना चाहते हैं। इस हफ्ते दोनों वापस मॉरिशस आए। न्यू आई अस्पताल मोका में उन्होंने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया जिन्हें आंखों की बीमारी है। उनमें कई ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। इस हफ्ते भी दोनों भाई बहन मरीजों का मुआयना करेंगे और लेजर से सर्जरी भी करेंगे। जरूरत पड़ने पर दोनों डॉक्टर

0: डॉक्टर मरीजों को मुफ्त में माइक्रो इम्प्लांट्स भी देंगे। काविंटा पेसो गीता सुनारान।
1: विवेकानंद चमन 61 साल के हैं और ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। ये आंखों की एक बीमारी है जिससे धीरे धीरे नज़र कमजोर हो सकती है। समय के साथ उनकी एक आंख की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अपनी नज़र को ज्यादा से ज्यादा बचाए रखने के लिए उन्हें सर्जरी करवानी होगी। आंखों की नसें कमजोर पड़ गई हैं। एक आंख में लेजर से इलाज करवाया था, दूसरी से कम दिखाई देता है। अब डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विवेकानंद चमन की जांच प्रोफेसर पैट्रिक यू वाई मान ने की। मॉरिशस में जन्मे न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर पैट्रिक यू वाई मान इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता और कंसल्टेंट हैं। अपनी बहन प्रोफेसर सिंचा यू वाईमान के साथ, जो लंदन के किंग्स कॉलेज में कंसल्टेंट आंखों की सर्जन और ग्लूकोमा विशेषज्ञ हैं, दोनों का एक ही उद्देश्य है मॉरिशस में ग्लूकोमा के मरीजों के इलाज और देखभाल को बेहतर बनाने में योगदान देना। दोनों डॉक्टर मॉरिशस के उन मरीजों के लिए माइक्रो इम्प्लांट लेकर आए हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। ये उपकरण मरीजों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर सिंचा यू वाईमान कहती है, हम 10 इम्प्लांट्स लाए हैं। एक की कीमत करीब 1,000 पाउंड स्टर्लिंग की है। मॉरिशनों को हम मुफ्त में दे रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए विदेश जाना पड़ता है। इम्प्लांट एक छोटा पाइप जैसा है। जिन लोगों की आंखों में तनाव है, आंखों में ज्यादा पानी है, ये पाइप उस पानी को बाहर निकालता है ताकि आंखों का तनाव कम हो। इस सप्ताह प्रोफेसर पैट्रिक और सिंचिया यू वाईमान ग्लूकोमा से पीड़ित कुछ मरीजों पर लेजर से इलाज भी करेंगे।
0: और अब विदेश की खबरें। यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से, जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की, तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया। अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो ये तादाद सन 2030 तक करीब 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यूनेस्को का कहना है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता मुल्क है जहाँ लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और आला तालीम पाने का हक नहीं है। जिम्बाब्वे में करीबा झील में एक नाव के उलट जाने से कम 15 लोगों की डूबकर मौत हुई। पुलिस के मुताबिक कश्ती पर 90 मुसाफिर थे और 5 क्रू मेंबरान जब ये घटना पेश आई। एक पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत टिकट बिक्री के मुकाबले ज्यादा लोग कश्ती पर सवार थे। आस्था गोमिंचतामन।
2: जिम्बाब्वे की करीबा झील में बड़ा नाव हादसा। यात्रियों से भरी नाव तेज लहरों की चपेट में आकर पलट गई। कम से 15 लोगों की मौत, 27 लोग अभी लापता बताए जाते हैं। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब नाव करीबा से आसपास के द्वीपों और मछली पकड़ने वाले इलाकों की ओर जा रही थी। नाव में 90 लोगों को ले जाने की क्षमता थी, लेकिन इसमें तय संख्या से काफी ज्यादा लोग सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक 114 वयस्क और चालक दल के 5 सदस्य नाव में थे। चालक दल के एक सदस्य का कहना है कि नाव में कुल 153 लोग सवार थे। नाव के रवाना होने के करीब 30 मिनट बाद उसमें पानी भरने लगा। तेज लहरों के बीच नाव पलट गई। हादसे के बाद कुछ लोग पलटी हुई नाव के ऊपर बैठकर मदद का इंतजार करते दिखाई दिए। उन्हें बचाने के लिए कई नावें भेजी गई। बुधवार को भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। लापता लोगों की तलाश के लिए पानी के अंदर खोज करने वाली विशेष टीमें भी भेज दी गई हैं।
0: आज यूरोपीय मुल्कों की आबादियां सूर्य ग्रहण देखेंगी। खासतौर पर उत्तरी स्पेन में दिन दहाड़े में रात का नजारा होगा। विस्तार गीता सुनारान के साथ।
1: आज यूरोप के कई इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप से 2006 के बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। ये खगोलीय घटना जीएमटी समय के अनुसार शाम करीब 5 बजे रूस के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र से शुरू होगी। इसके बाद चंद्रमा की छाया ग्रीनलैंड और आइसलैंड से होते हुए स्पेन पहुँचेगी। वहाँ सूरज 2 मिनट से भी कम समय के लिए पूरी तरह ढक जाएगा और कुछ समय के लिए पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं कनाडा अमेरिका के उत्तरी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ इलाकों में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए पूरे यूरोप में लाखों लोग जुटे हुए हैं। इसे सुरक्षित तरीके से देखने के लिए लोगों ने सूर्य ग्रहण

0: देखने के लिए विशेष रूप से सुरक्षा वाले चश्मे का इस्तेमाल किया।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो में रह रहकर हल्की बारिश होगी, बाद में मौसम अच्छा होगा, सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की वर्षाएं होंगी। कल सुबह आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा, बाद में दोपहर बाद को पश्चिम सेंट्रल प्लेटो में बादल घिर आएंगे और रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा। रात के दौरान हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा और 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से आज रात दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त की जा रही है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 18, अधिकतम 22 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण मुर्शिद से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। कल सुबह 6:33 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:56 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी आप तक की खबरें, आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार और सूचनाएं सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री रोड पुंफासले में 89 साल की 89 years old श्रीमती गायत्री बुदाई पैदाइशी नाम रामसरन, जो कुसमी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद सवा दो बजे इनके बेटे रामोतर बुदाई के घर लाल बहादुर शास्त्री रोड पुंफासले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:15 PM। नंबर टेन किंग्स वे लंदन यूके में 61 साल के 61 years old श्री जय कृष्ण सिंह भोकरिया जो धीरेनराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी शुक्रवार को एक बजे इनकी माँ वेदा वाइट के घर लंदन यूके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। कौसामी मोका में 62 साल के 62 years old श्री पेरुमाल पीले ईयारू जो राजन इंस्पेक्टर काजिनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी राइना इयारू के घर कौसामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। सीते लाग्रीमों सेंट पियर में 73 साल के 73 years old श्री एलाना आपादू जो दास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर सीते लाग्रीमों सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टों सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 87 साल के 87 years old श्री पोपाया कार्तिक जो आयावेदी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी शुक्रवार को 12 बजे इनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट नून। सीबी रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 years old श्रीमती नारायणी ओनाचेलम पैदाइशी नाम नारायण जो मामा राजीव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी बेटे राजीव ओनाचेलम के घर सीबी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। दानेश्वक स्यूराज रोड नवियनमील थ्रियोली में 32 साल के 32 years old श्री विवेक रामसरन, श्री विवेक रामसरन जो आवी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10:30 बजे इनकी माँ प्रीति रामसरन के घर दानेश्वक स्यूराज रोड नवियनमील थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तियामिनुस थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। कूटो स्ट्रीट प्लेनमानियों में 72 साल के 72 years old श्री त्रिलोक सिंह राम भरत, श्री त्रिलोक सिंह राम भरत जो राम भरत के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12:30 बजे कल दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी साबिता देवी राम भरत के घर कूटो स्ट्रीट प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। 50 Avenue Doyen Quatrebonne में 62 साल के 62 years old श्री सतीश तोमू जो सतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर नंबर 50 Avenue Doyen Quatrebonne से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। D1 Dattier Street Residence Chubel Bobassin में 53 साल के 53 years old श्री मोगाया कोपेन जो नंदा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे इनके घर D1 Dattier Street Residence Chubel Bobassin से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:01 PM। पेलग्रैन रोड सेबास्टोपोल में 61 साल के 61 years old श्री ऋषि कुमार गोपुल जो ऋषि के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके पिता हरिदत्त गोपुल के घर पेलग्रैन रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेबास्टोपोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बानू लेन नोत्रोदाम में 69 साल के 69 years old श्री लेखराज हरबंस जो रमेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी पत्नी विंती हरबंस के घर बानू लेन नोत्रोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोत्रोदाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

सीबी की तरफ से ये कम्युनिकेट सुन लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सूचित करता है कि जो लोग सैंत ख्वार आसपास के गलियों में रहते हैं, जैसे एमिल बसेत, सैंत मारी, लैपास सैंत मारी, रुत बासा नंबर 1 और नंबर 2, मौसलमा लावाले और सोफिया लेन, आपको सूचित करते हैं कि गुरुवार 13 अगस्त को सपहर के 3 बजे से 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। ग्राहकों को सूचित किया जाता है जो लोग कोस्टल रोड पॉइंट कानीनिया के रहने वाले हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। और सीबी जो है वो फॉरेस्ट साइड के रहने वाले इन ग्राहकों को सूचित करता है जो लोग गजीदांस लाबासरी और साथ में कुछ हिस्से जो लाबगासरी के रहने वाले हैं और साथ में जो लोग आसपास की गलियों में रहते हैं, शुक्रवार 14 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में गुरुवार 13 अगस्त को इन शाखाओं में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है। कोटेज वेदानंद भवन शाखा नंबर 7 शाम 5 बजे, चित्रकूट वालिदेव खैत शाखा नंबर 4 शाम 5 बजे और बोआदवाजो महिला समाज शाखा नंबर 5 दिन के 2 बजे।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। भजले प्रभु का नाम। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। आपको पता है भगवान गणेश जो हैं प्रथम पूजनीय देवता हैं, और चलिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये बहुत ही प्यारा सा भक्तिगान आप समस्त श्रोताओं के नाम हम कर रही हैं।

तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है श्रावण मास का महीना चल रहा है और दुनिया भर में, साथ में मॉरिशस भर में सब लोग महादेव के जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आप सभी सुनने वालों को। कहते हैं जहाँ दुनिया की उम्मीदें खप्त होती है वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो चलिए देवों के देव महादेव, उनके नाम जो है चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में।

तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महादेव का नाम लेते ही मन को वह सुकून मिलता है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। भोलेनाथ से रिश्ता शब्दों का नहीं, विश्वास का होना अनिवार्य है। तो चलिए उनकी कृपा हम प्राप्त करें। श्रावण मास का ये महीना जो है आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी यही कामना है।

तो चलिए श्रोताओ, कहते हैं सच्ची भक्ति में अगर हम मन में शिव का नाम लेते हैं, अगर हमारे जुबा पर शिव का नाम लेते हैं और हर सांस में शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए असीम कृपा जो है हम प्राप्त करते हैं। तो जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे मुश्किलों से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। श्रोताओं, जाने से पहले हम यही कहेंगे, शिव हमें सिखाते हैं शांत रहो, सत्य पर चलो और समय पर भरोसा रखो। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारी तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। मज़दूर की उजरत। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी कबल उसके उसका पसीना खुश्क हुआ अदा कर दो। बहवाला इब्ने माजा शरीफ।

मोहतरम सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रिस्क की तलाश और हलाल कमाई के लिए सुबह सवेरे ही चले जाया करो, क्योंकि इस वक्त कामों में बरकत और कुशादगी होती है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमने जो अहदीस समात फरमाई, हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सही

0: خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
1: ريديو موريشيوس
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का
4: भोजपुरी
5: तड़का
6: नमस्ते हमने के सब श्रोताओं के स्वागत करते हैं जहाँ हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में यह रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तोहर खातिर 9:02 होल बा 11 बजे लेख हमने के साथ रही और ई तोहर पसंद के गाना हमने ई कार्यक्रम में प्रस्तुत करब जा भोजपुरी गीत जोन तोहरा मन कर थो सुने के हमने के बोला जा हमने तोहर पसंद के गाना जरूर चलाओ अब जा बोले खातिर हमने के सकब जा चाहे SMS करे चाहे हम के टेलीफोनिक करे सक बजा SMS करे के नंबर है 5251700005 और जे टेलीफोनिक करे खोजबा तो 4028085 यही दुगो नंबर के प्रयोग कर और हमने के कार्यक्रम में भाग ल अभी तहलो के रात्रि बहुत प्यार से गुजरत हुई बहुत आराम से गुजरत हुई और तुहर होंठ पर तनी मुस्कुराहट जरूर हुई और हमेशा खुशी रहे खुश रहिए जा हमेशा मन प्रसन्न रही तोहर यही उम्मीद करते जा सेहत तोहर बढ़िया बढ़िया रही यही उम्मीद करते जा तो चला सबसे पहला हम सुमन सुमन राम तोहल जी संगे तनी गमट करी जा सुमन के गमट सुनी जा

सुदेश बैजू जी के गवाली गाना है और ये गाना मुर्गा मुर्गी के कहानी सुनावत है जहाँ हमने अमृता जी के पसंद पर अमृता जी पीतों से ये गाना सुने खोजत हो वन मांगे खोजत हो अपन लैका लो खातिर अपन बेटी पूनम का

मुर्गा के आंख में लो और मुर्गी के आंख में लो और तो सुन ली जा, अब चला हमनी माता पिता के मोल समझी जा। माता पिता के मोल हमनी गाना सुन अब जा गीता गजाधर जी के गावल, और ही गाना हमनी वाकवा के धनपत जी के नाम बजवावत हैं जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में तो बड़ी स्वाद होला तड़का लगेला तो हर फरमाइश से। और ये फरमाइश अबरी कुंजन हमने बजवाओ अब जा शांति जी के तेहुर से। शांति जी मंगले होवनी गाना गिरीश रूपचंद जी के गावल और ये गीत दागोचिया के पूरा मराठी परिवार खातिर मंगले होवन शांति जी और अप्पा दागोचिया के अपन भगीना ओम के नाम मंगले होवन। तो चलो सुनी जामनी गिरीश।

और चला सुनी जा हमने संभावती दुमन जी के गावल गाना। ये गाना हमने वीना जी के फरमाइश पर पजवावत है जा वाकवा से वीना जी गाना मंगला हुआ न पर पति राजीव के नाम।

चले सुने जा हमने मीरा मोहन जी के गावली गाना और ही गाना हमने गायत्री जी खातिर बजवावत है जा नोवेल फ्रांस से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर मंगले होनी गीत माई बुके मामी कल्याणी मोहन खातिर मोताइलोंग के बाबी शकुंतला खातिर और नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का लगावी जाओ ब्रिकुत हमने सोना नयन जी के आवाज़ संगे सोना नयन जी तो हमने के भोजपुरी दुनिया में भोजपुरी संगीत के दुनिया में राजा कहलावेलन। चलो सोना नयन जी के आवाज़ सुनी जा और ये आवाज़ हमने तोहल के सुनवाओ अब जा अब्बू जी के पसीन पर। अब्बू जी सुने खोजा था वन खाले पीले और ये सुनाई खोजा था वन आफेज जी के असलम अयाज जायान जाहिरा रईस काला चौथी के अपन दोस्त अपी के उनकर पत्नी खातिर और अपन भगिनी रकीबा खातिर।

और चला अभी बड़की मसाला पीसे ला और आगे के कहानी सुनब जा हमने कृष हृदय जी से और ये कहानी बड़ा दर्द देवेला ये गाना हमने से मंगले हवन शोभा जी पोंपले मुझसे अपन सब सखी सहेली रखा देर

श्वेती रामबरन के गावली गाना है मीठा मीठा बोली गाना हमनी माईबू के मापू के माफ करिए मापू के उत्तरा देवी जी के फरमाइश पर बजावत है जय उनका बेटा आतिश और बेटा आनंद खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चला भोजपुरी तड़का में तलक के सुनवाई ला जा हमनी मच्छी मरवा के गाना, मच्छी मरवा गाना हमनी बजवावत है जा विजय जय हरलाल की आवाज़ में। जय हरलाल जी गावत है वन मच्छी मरवा के जीवन के बारे में, और ही गाना हमनी बजावत है जब वाकवा के धनपत जी के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: सुनीता नन को हमने के सुनाई हन पिया परदेस, और पिया परदेस गाना हमने बजाया था जा उषा जी के फरमाइश पर। उषा जी पे चित्रकृत से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, खासतौर पर अपन माता जी खातिर। तो चलो सुनी जा सुनीता नन को के

और चला अब हमनी ललिता जी खातिर बजवाइला जा करेला झोजुम्बा बिस्वानी दीपुआ जी के गावल। और ललिता जी गाना बिस्वानी दीपुआ जी के गावल मंगले हवन सुदेवी जी खातिर उनकर बहिन सुदेवी उनकर बहिन देवी ना ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर शुक्लाल मौसी खातिर और माला राम जावन जी खातिर।

विनोद शिवदत्त जी के गावल हमने के भोजपुरी बोली, बाप दादा के ही भोजपुरी बोली। श्रीमती जी मंगले हवन सुयाग से और ये गाना अपन पूरा चंद्रमुनि परिवार और मोहेश परिवार खातिर मंगले हवन।

भोजपुरी गाना के स्वाद लेवत हवा जा, भोजपुरी तड़का के स्वाद लेवत हवा जा। तो चला देखी जा का पकता सन्नी बॉयज के कलाकार सन्नी संजय गोविंद जी के गावली गाना में कौन सी पकता। चला सुनी जाए गाना हमने लीलो जी खातिर बजाओ थे जा। लीलो जी बॉम्बूसी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, अपन बेटा दिनेश खातिर।

उषा सुदीला जी के गावली गाना चनन बरसे, चनन बरसे एल्बम के ही गाना है और उषा सुदीला जी एक बड़ी बड़ी मिठास के साथ गैले हवन चले ही गाना सुनी जा सीता जी के पसीन पर। सीता जी त्याहूर से ही गाना मंगले हवन अपन पति अरविंद खातिर और अपन बेटा राघव खातिर।

और चला जन्मदिन के बधाई दे ला जा हमने बेचू परिवार में जन्मदिन मनावत हवन जा पूरा परिवार के सदस्य लोग और अखिया जोपा के बेचू परिवार खातिर मोबाइल खोद के उनका पूरा परिवार खातिर। तो चला सुनी जा हमने बसंत सुपौल जी के गावाली जन्मदिन के गीत और ये जन्मदिन के गीत हमने बजावत है जा हमने के सब श्रोतालो के जे जन्मदिन मनावत हवन जा बनाज।

त्रिलोक गंगा जी के गवाली गाना। चले हमने के देश के बारे में सुने जा, हमने के देश के सौंदर्य के बारे में सुने जा, और ये गाना हमने बजवाए ला जा मिंता जी के पसंद पर, कथो बोन के मिंता जी के पसंद के गाना है।

विजय राव जी के गाँव वाली गाना ई भी गाना हमी के देश पर आधारित, हम के देश के हरी भरी खेतिया पर आधारित ई गाना हमने नीलमणि जी खातिर बजावत हैं जा। नीलमणि जी रहे गाँव फुको और ई गाना मंगले वन अपन भाई खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का हम 9 बजे से चलावत है, जहाँ चलते अभी 10:25 होगल, बल्कि 27 मिनट होगल, और ये हमने आगे बढ़ जा अयोध्या के राज संगे। अभिमन्यू हरपाल जी के गावली गाना सीता मांगे अयोध्या के राज, ये गाना हमें से कल्याणी जी बाशे से मंगले हवन।

और अभी कुछ चला हम निकरेशन उखज के गावल गाना सुनब जय राधा के सोभेला भर मांग सिंदुरवा और गाना हमने बजवा दे जय गौ गुप के सुनीता जी के पसंद पर उनकर बहिन अमृता खातिर।

और आजकल पूजा के वातावरण छाल बासगरो हमने से गाना मंगले हवन राजन लक्ष्मण जी अम्बे मैया पर अम्बे मैया के गाना सुनीतानंद कुज गैले हवन और राजन लक्ष्मण जी बोशेरी से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन पत्नी खातिर अपन पत्नी माला खातिर बेटी प्रगति खातिर प्रार्थना खातिर बहिन मानती और भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर और विशेष तौर पर दानंद तुलसी जी खातिर उनका जन्मदिन बा जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना दानंद तुलसी जी तोहरा तोहर पत्नी शर्मिला बगल से तोहर बेटी उर्मिला बेटा राकेश और बहू सृष्टि बगल से बहुत मंगल कामना जन्मदिन के।

नीरज गुप्त मधु की आवाज़ चला सुनी जाओ और ये कौनची बोले के बाद चला सुनी जाओ नीरज गुप्त मधु से ही। ये गाना हमने से मंगले हवन महेन भाई पालमा से और ये गाना दीदी मान के नाम करत हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का के गीतवन से ये लुत्फ उठावत हुई जा बड़ी अच्छा लगत हुई तो लोग के सुने के यही उम्मीद करे थे जा। अभी रेडियो पर हम तो लोग के गाना सुनाओ थे जा, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन दोनों पर सुनत हुआ जा हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। चलो तो लोग के सुनवाई ला जाओ। अभी कुछ हमने लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावल एगो गाना, लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी गैले हवन एगो शिव जी पर आधारित गाना। और अभी श्रावण मास के अवसर पर हमने से मंगले हवन अनीता जी फ्लिका फ्लैग से ये गाना और इस सब हमी के श्रोता लोग के बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन श्रावण मास के। और ये अपन पूरा परिवार और इस संगतिया लोग के नाम करत हवन।

और सुना था जा हमने बिस्वानी दीपा जी के गावली गीत ई गाना हमने से मंगले हवन सुनील जी कोंगो मां से अपन पूरा परिवार खातिर मंगले हवन सुनील जी गाना

मिसेस ओ इस गाना के बाद चला कुणाल बाबूलाल जी के गावल नया सिरे सुनी जाओ। और नया सिरे गाना सुनते सुनते हमने के कार्यक्रम हचा पर समाप्त हो जाए भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के गीतवन तो लोग पसंद कर ला चाहे यही उम्मीद करे थे जा। और यही उम्मीद के साथ तहर से विदा लेवा थे जा कि हमने के आगे के कार्यक्रम सुनते रहवा जा। हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए तो सुन बजा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम हमने के पुराना गीत के कार्यक्रम गिनीशा प्रस्तुत करियन आवत हला। फिर मिलब जा तब तक खातिर शुभ रात्रि नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का स्वागत करें। जी हाँ दोस्त, आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

हर शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे गिनिशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है, लेकिन एवरग्रीन गाने सबके दिलों को एक एक साथ जोड़ देते हैं। आज हम वही दिलों का रिश्ता लेकर आए हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये गीत सुनिए और समझ जाएंगे कि असली संगीत किसे कहते हैं। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, दिल से आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल के खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
2: क्या?
1: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
2: मैं क्यों लिखूंगी?
1: तो ये सारे कार्ड्स
2: वो तो
1: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
2: नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
1: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?

0: मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: आरएम फ्री रेडियो।

जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।